मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 18 मई साल 2026। प्रातः के 5:58 और 40 सेकंड हुए हैं। हमारी प्रथम सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर पर। प्रातः के 6 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों ने

0: ने व्यापार निवेश प्रौद्योगिकी नवाचार हरित बदलाव अंतरिक्ष उभरती प्रौद्योगिकियों रक्षा सुरक्षा एसएमई अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी जिक्र किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण ग्रीन हाइड्रोजन मिशन स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें तथा मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरका परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्ले ऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई 6ठे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। प्रातः के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। सुप्रभात श्रोताओं, भक्ति संगीत के दैनिक कार्यक्रम वंदना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, भोर की पहली किरण जब धरती को छूती है और मंदिर की घंटियां जब वातावरण में मधुरता घोलती हैं और मन श्रद्धा भाव से भर उठता है, तभी आरंभ होता है हमारा ये कार्यक्रम भक्ति संगीत का, सराबोर कर देने वाला कार्यक्रम वंदना। आइए प्रभु स्मरण के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं।

श्रोताओं, जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर थक जाते हैं, लेकिन प्रभु का नाम हमें फिर से संभालता है। उनकी भक्ति हमें विश्वास देती है, हिम्मत देती है और हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति देती है। आइए स्मरण करते हैं उस ईश्वर का जो सृष्टि के कण कण में विराजमान है, जो अंधकार में प्रकाश बनकर राह दिखाते हैं, जो निराश मन में उम्मीद जगाते हैं और जिनका स्मरण मात्र ही मन को शांति और आत्मा को सुकून दे जाता है।

श्रोताओं, इस खूबसूरत भजन के बाद आइए सुनते हैं ये गुरबानी, क्योंकि गुरबानी की पावन वाणी जब कानों में रस खोलती है तो मन को शांति, आत्मा को सुकून और जीवन को एक नई दिशा मिल जाती है।

श्रोताओं, अभी आपने सुनी वो पाक कलाम जिसमें मोहब्बत थी, सुकून था और रूहानियत की मिठास थी। कार्यक्रम वंदना अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं भगवान शिव का ये भजन।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस कान का आज का प्रसंग।

भरत को अयोध्या के राजपद के साथ श्री राम को 14 वर्षों का वनवास देने की कैकेयी की वरदान याचना से अयोध्यावासी स्तब्ध हैं। श्री राम के चरणों में भरत की प्रीति जग विदित है। चंद्रमा की शीतल किरणों से आग की चिंगारियां भले ही बरसने लगें, किंतु भरत स्वप्न में भी श्री राम का विरोध नहीं कर सकते। राज परिवार का हितैषी नारी समाज कैकेयी को तरह तरह से समझाने की चेष्टा कर रहा है। अनुनय विनय के साथ साथ कुछ लोग रानी कैकेयी की कठोरता की भर्त्सना कर रहे हैं, कुछ व्यक्ति कटु वचन भी बोल रहे हैं। सबके मन में आशंका है कि क्या राम की अनुपस्थिति में भरत अवध के राज्य का सुख भोगना स्वीकार करेंगे, क्या राजा दशरथ पुत्र का वियोग सहन कर सकेंगे, क्या राम लक्ष्मण सीता और स्वयं दशरथ जी के बिना सब कुछ उजड़ नहीं जाएगा।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 6:40 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: चिंतन करना मनुष्य की प्रकृति है। अपने जन्म के उपरांत सभी प्रकार के ज्ञान उत्पादन के साथ साथ ही मनुष्य चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। मस्तिष्क की सुषुप्तावस्था, अचेतावस्था

0: अवस्था या समाधि की अवस्था को छोड़कर सभी अवस्थाओं में मनुष्य चिंतन करता है। यह चिंतन दोनों प्रकार का होता है, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। जब नकारात्मक चिंतन बहुत अधिक होने लगता है तो व्यक्ति के विचार, कल्पनाएं और भाव किसी संभावित चुनौतियों का सामना करने की योजना में लग जाते हैं। इसी को चिंता कहते हैं। चिंता की मात्रा बढ़ने के साथ साथ ये चुनौतियां वास्तविक के बजाय काल्पनिक होने लगती हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं होती और व्यक्ति लगातार भयग्रस्त रहने लगता है और कभी कभी वह अवसाद की स्थिति में चला जाता है। उसके लिए अनिश्चितताओं से भरे वातावरण का सामना करना मुश्किल हो जाता है। जैसे यदि पिताजी को कभी कैंसर हो गया तो क्या होगा। आजकल पैसे और स्वास्थ्य की चिंता सर्वाधिक महसूस की जाती है। ये चिंताएं अपने आप में एक समस्या बनकर खड़ी हो जाती हैं, जिससे व्यक्तियों का चयन, कार्यशैली, नींद, खानपान, नित्यकर्म, स्वास्थ्य और व्यवहार प्रभावित होने लगते हैं। अनेक बार तो व्यक्ति को निरर्थक चिंतित रहने का अभ्यास हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के सामने यदि किसी समय कोई समस्या उपस्थित ना भी हो तो व्यक्ति आदतन यही सोचकर चिंतित हो जाता है कि फिलहाल कोई समस्या क्यों नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि निकट भविष्य में एक साथ बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। चिंतित रहने के इस अभ्यास पर नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक है। आज के परिवेश में ये संभव नहीं है कि व्यक्ति बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाए, किंतु चिंता से भय मुक्त होना बहुत जरूरी है। यह अभ्यास के माध्यम से ही किया जा सकता है। यद्यपि चिकित्सा विज्ञान में इस क्षेत्र में पर्याप्त कार्य हुआ है, किंतु अभी तक इसकी कोई एक सर्वमान्य परिष्कृत औषधि बनी हो ऐसा प्रकाश में नहीं आया है। कुछ समय के लिए चिंता मुक्त होने के लिए नींद की दवा ले लेना अथवा नशे का शिकार हो जाना कोई उपचार नहीं होता। अंततः चिंता को दूर करने के लिए अपने अभ्यास को ही ठीक करना आवश्यक है। इसका सर्वोत्तम उपचार निर्विवाद रूप से योग एवं प्राणायाम है। चिंता को हम सकारात्मक रूप में देखने और उसका उपयोग करने का प्रयास करें तो एक नियंत्रित मात्रा में चिंता व्यक्ति के लिए लाभकारी भी साबित होती है। इसके लिए कुछ विशेष प्रकार का आत्मानुशासन अपनाया जा सकता है, जो चिंतित रहने की प्रवृत्ति पर विराम लगा सकता है। इसका एक उपाय यह है कि व्यक्ति अपनी दिनचर्या में एक चिंतन समय का निर्धारण कर ले, जैसे प्रातः 6 बजे से 6:30 बजे तक। इस समय में व्यक्ति खाली बैठकर केवल चिंतन ही करे और किसी अन्य कार्य में संलिप्त न हो। इस चिंतन समय के अलावा किसी अन्य समय में यदि कोई समस्या उपस्थित हो तो उस पर तत्काल विचार करने के बजाय उसे चिंतन समय तक टाल दें और चिंतन समय में ही उस पर विचार करें। इससे व्यक्ति को हमेशा चिंतित रहने के अभ्यास से मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा किसी समस्या को लेकर यदि हम अपने आप से कुछ प्रश्न करें तो उससे भी निरर्थक चिंतित रहने के स्वभाव में सुधार हो सकता है। जैसे क्या समस्या ऐसी है जिसका वास्तव में सामना करना ही है अथवा ये एक कल्पना या शंका मात्र है। यदि ये एक कल्पना या शंका मात्र है तो क्या इसकी कोई पूर्व तैयारी करनी आवश्यक है, और यदि पूर्व तैयारी करनी आवश्यक है तो उस तैयारी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कभी कभी अपने से कुछ प्रश्न करना भी चिंता मुक्त करने में मदद करता है। जैसे मन में आई दुश्चिंता किस आधार पर है, क्या एक खास स्थिति पर अधिक सकारात्मक दृष्टि से विचार किया जा सकता है, जिसका डर है वही बात होने की संभावना कितनी है, यदि ऐसा होता है तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, कोई विचार मुझे किस प्रकार सहायता और किस प्रकार नुकसान पहुंचा सकता है, यदि मेरे किसी मित्र के सामने ऐसी कोई समस्या उपस्थित हो तो मैं उसे क्या सुझाव दूंगा आदि आदि। निष्कर्ष यह है कि चिंता को चिता मत बनने दीजिए, अपितु अपने आप को संवारने, सावधान रखने और दूरदृष्टि के लिए इसका उपयोग करें। दिनचर्या में योग, प्राणायाम व ध्यान को स्थान दें। जीवन को बोझ या समस्या न बनने दें, अपितु सार्थक बनाएं और आनंद से जिए।
1: चिंतन के बाद आइए अब सुनते हैं काव्यधारा के अंतर्गत विजेंद्र कुमार सैनी का काव्य पाठ।
2: अरे गोडे भिड़ गे, छाले पड़ गे, गोडे भिड़ गे,

अरे फुलाऊं इनको फूटते जावे, फुलाऊं इनको फूटते जावे, अरवा में अरमा बिखरे सारे, तड़के तले के सांझ होगी मारे बिके नहीं गुब्बारे, बड़ी उम्मीद।

गिरती। और अगला मेरा कौरवी बोली में गीत है, पाजेब जेब में। एक वर्द आदमी की व्यथा है सत्य घटना पर। लिए फिरूं पाजेब जेब में, अरे

0: काव्य धारा के अंतर्गत अभी हमारे श्रोताओं ने सुना विजेंद्र कुमार सैनी का काव्य पाठ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर पर। प्रातः के 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः सुरेश चंद शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी गतरात्रौ गोथेनबर्ग इत्यत्र स्वीय स्वीडिश समकक्षेण उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यमुना साकं संवादं विहितवान्। श्री मोदी द्विदिवसीय स्वीडन यात्रान्तर्गतं गतदिने गोथेनबर्ग इत्यत्र सम्प्राप्तवान्। भारत स्वीडन देशयोः सम्बन्धेषु मोदिनः असाधारण योगदानाय दूरदर्शी नेतृत्व सम्माने च प्रधानमंत्री श्री मोदी रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रेड क्रॉस इत्यनेन सम्मानेन सभाजितवान्। प्रधानमंत्री मोदी सह प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्तांतर्गतम उभौ नेतारो भारत स्वीडन संबंधानां समेषां पदक्षेपाणां समीक्षामपि कृतवन्तौ। उभौ नेतारो व्यापार निवेश प्रविधि नवाचार हरित परिवर्तनम अंतरिक्ष रक्षा अनुसंधानम समेत्य नैकेषु विषयेषु चर्चितवन्तौ। स्वीय संबोधने श्री मोदी आतंकवादम आलोचयन नैकेषु विषयेषु विस्तृतेन वक्तव्यं प्रकटितवान्। आतंकवादं विरुध्य संघर्षे स्वीडिश प्रधानमंत्रिणः समर्थनाय आभारमपि श्री मोदी प्रकाशितवान्।
2: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना स्वीडिश समवायाः आमन्त्रिताः। गोथेनबर्ग इत्यत्र प्रमुख स्वीडिश समवाय प्रमुखैः सह वार्तान्तर्गतं श्रीमोदी स्वीडिश समवायान् विनिर्माण हरित हाइड्रोजन अभियानं स्वच्छोर्जा अन्येषु क्षेत्रेषु च स्वीयोपस्थिति संवर्धनाय आग्रहमपि कृतवान्। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य स्वीय यात्रायाः चतुर्थे चरणे नॉर्वे इत्यत्र सम्प्राप्येत। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भाग ग्रहणाय अथ द्विपक्षीय वार्ताभ्यः श्री मोदी अद्य नॉर्वे इत्यत्र सम्प्राप्येत। प्रधानमंत्रिणः मोदिनः नॉर्वे इत्यत्र एषा प्रथमा यात्रा स्यात्। श्रीमोदी राजा हेराल्ड पंचम इत्यमुना अथ रानी सौम्या इत्यनया साकं च मेलनं कुर्यात्। श्रीमोदी तत्रत्य प्रधानमंत्रिणा जोनास गहरस्टोरे इत्यमुना साकं द्विपक्षीयां वार्तां कुर्यात्। कांग्रेस दलस्य नेतृत्वे केरलम शासनस्य शपथ ग्रहणम अद्य स्यात्। कांग्रेस दलस्य नेता वीडी सतीशन अद्य तिरुवनंतपुरम इत्यत्र शपथवचनं स्वीकुर्यात्। कांग्रेस दलेन सतीशन इत्यसौ केरल प्रदेशस्य अग्रिम मुख्यमंत्री रूपेण समुद्घोषितः। कांग्रेस दलस्य नेतृत्व युतेन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक ग्रंथि युतेन तत्र शासन विरचनं स्यात्। केन्द्रीयः गृह सहकारिता मंत्री अमित शाहः गुजरात प्रदेशस्य गांधीनगरे 700 कोटि मितानां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। स्वीय द्विदिवसीय यात्रावधौ गतदिने गांधीनगर नगर निगमस्य 100 कोटि मितानां विकास कार्याणां शुभारम्भमपि श्री शाहः विहितवान्। एतत्पूर्वं प्रथमे दिने श्री शाहः सूचना केन्द्रस्य उद्घाटनं च कृतवान्। श्री शाहः एआई तथा डीपटेक इत्येतौ भविष्यस्य अर्थव्यवस्थायाः मुख्य स्तंभौ इति वर्णितवान्।
2: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। एआई
3: और डीप टेक के जो भविष्य है इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
1: अन्ते च क्रीडा वार्तासु आईपीएल इत्येतस्यां क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायाम् अद्य चेन्नई सुपर किंग्स सनराइजर्स हैदराबाद इत्यनयोः दलयोः मध्ये द्वन्द्वं स्यात् इति वार्ताः।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोतेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा पर गोतेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी उल्लेख किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन

0: इंडिया नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें और मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरकाह परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का यह सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सरगेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए उन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा कि पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे जलपोत गुजरने की अनुमति दी गई थी, जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 7:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा, जिसके अंतर्गत आज आप जानकारी सुनेंगे एड्स कारण लक्षण और बचाव विषय पर।
2: जितने भी संक्रामक रोग होते हैं उनमें जो एड्स है एक मुख्य रोग है। विज्ञान के जितने भी आविष्कार हो रहे हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं मिली हैं, लेकिन अभी तक जो महामारी के रूप में जो फैलने वाली जितनी भी बीमारियां थी, जैसे प्लेग थी, चेचक थी, उनमें जो उनको तो अभी तक हम सारे रूप पूरे समाज से हम उसको नष्ट कर चुके हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारा विकास होता चला जा रहा है उसमें एड्स जो है सबसे भयावह बीमारी के रूप में हमारे सामने उपस्थित हुआ है। और आज हम ये देखते हैं कि पूरे संसार में ये एड्स की से जो स्वास्थ्य की स्थिति है बड़ी तेजी से बिगड़ रही है। और अफ्रीका, जो अमेरिका और यूरोप के देशों के बाद जो तीसरी दुनिया के देश हैं, जिसमें कि भारत हमारा देश है, उसमें भी ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। और खास करके विशेष रूप से जो बड़े शहर हमारे हैं उसमें इस रोग से ग्रस्त रोगियों का प्रतिशत काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसमें हम देखते हैं कि एक जो भी व्यक्ति है जो एड्स से ग्रस्त होता है उसमें कुछ बीमारियां विशेष रूप से होती हैं, कुछ लक्षण विशेष रूप से होते हैं, जैसे कि सारे शरीर में गांठों का हो जाना, बार बार बुखार आना, खांसी, जुकाम होना या पेट की बीमारी, डायरिया जैसे लक्षण ये बार बार होते हैं। और इनका कोई कारण

0: महसूस नहीं होता और इनको इलाज में भी काफी समय लगता है और धीरे धीरे रोगी जो होता है बहुत कमजोर हो जाता है। इसका जो कारण है वो हम ये मानते हैं कि जो हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो समाप्त हो जाती है और इसके लिए जो जो HIV वायरस है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। HIV वायरस क्या करता है इसको हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि जो HIV वायरस है जब शरीर में हमारे प्रविष्ट होता है और जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता में एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं उनको नष्ट कर देता है, जिनको लिम्फोसाइट्स कहते हैं उनको नष्ट कर देता है। इससे हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है और हम बार बार एक ऐसे अनचाहे संक्रमण से ग्रस्त हो सकते हैं जिसका कि कोई इलाज हमारे पास अभी तक उपलब्ध नहीं है। तो ये हम कैसे हम इससे अपने को बचाव करें, तो इसको पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये बीमारी होती कैसे है। इस बीमारी के होने के कुछ मुख्य कारण इस प्रकार हैं। सबसे पहले जो मुख्य कारण है वो है जो सेक्स सेक्सुअल कांटेक्ट है उनकी वजह से ये बीमारी होती है, चाहे वो होमोसेक्सुअलिटी हो या होमोसेक्सुअल लोगों में ये ज़्यादा पाया जाता है। और पहले सबसे पहले जो पता चला एड्स रोग का वो भी समलैंगिक व्यक्तियों में ही सबसे पहले इसका पता चला। दूसरा कारण ये है कि यदि हम जो लोग नशे के शिकार होते हैं वो एक सुई से मतलब एक सिरिंज और एक निडल से ही शेयर करते हैं, आपस में शेयर करते हैं, तो एक आदमी का संक्रमण दूसरे व्यक्ति में हो सकता है। तीसरा कारण है जो खून हम देते हैं जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, यदि संक्रमित व्यक्ति का खून किसी स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए तो जो जो स्वस्थ व्यक्ति है वो भी संक्रमित हो सकता है। चौथा कारण जो मुख्य कारण है वो ये है कि जो जो गर्भस्थ शिशु होता है उसको भी माता के रक्त में जो स्थित जो HIV वायरस है उससे वो प्रभावित हो सकता है। इन देखिए इन जो रोग है एड्स से अभी तक इसकी कोई हमारे पास कोई कोई इलाज नहीं है, तो जो बचाव में ही इलाज है। तो जो बचाव कैसे हमें किया जाए कि एक तो जो अनियंत्रित यौन संबंध है उससे हमें बचना चाहिए, नशे की आदत लत पे का शिकार नहीं होना चाहिए, जो सुइयां हैं उनका एक तरह की एक सुई से कई लोगों को इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए, खून लेने या देने से कम इसका पता होना चाहिए कि जो व्यक्ति जिसका खून दिया जा रहा है उसमें HIV पॉजिटिव तो नहीं है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे नैतिक मूल्य हैं समाज के, भारतीय समाज के जो नैतिक मूल्य हैं यदि हम उनका पालन करते हैं तो हम निश्चित रूप से हम इन चीज़ों से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। और कुछ हमारे समाज में एड्स के प्रति भ्रांतियां हैं, जो भ्रांति ऐसी है कि भाई हो सकता है कि ये बीमारी छूने से लगती है, आप पास बैठने से लगती है, तो एक मन में भय रहता है कि भाई यदि एड्स का कोई बीमार हमें हमें दिखता है तो आम आदमी ही नहीं चिकित्सक वर्ग और चिकित्सालय से संबंधित रोग भी उससे दूरी बनाए रखते हैं, जो कि ठीक नहीं है। आप ये जाने कि किसी व्यक्ति को छूने से, उसके साथ साथ खाना खाने से, उसके साथ उसके कपड़े शेयर करने से ये बीमारी नहीं होती, हाथ मिलाने से उससे ये बीमारी नहीं होती, यहाँ तक कि चुम्बन से भी ये बीमारी नहीं होती है। ये जब तक उसके साथ कोई यौन संबंध ना बने हों या उसकी जो खून का उसका कोई अंश हमारे शरीर में प्रवेश नहीं होता तब तक ये बीमारी नहीं होती। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि बचाव में ही हमारा जो है यदि हम इसका बचाव कर सकें तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात हो सकती है।
1: स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत आपने जानकारी सुनी एड्स कारण लक्षण और बचाव विषय पर। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 7:10 हुए हैं, आइए सुनते हैं खेती की बातें, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे पूर्व प्रसारित जानकारी, संतुलित उर्वरकों का प्रयोग और सावधानियां।
2: किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों खेती की बातें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों आज हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं संतुलित उर्वरकों का प्रयोग और सावधानियों के संबंध में। किसान भाइयों हम सभी खेती किसानी करते हैं और फसलों का उत्पादन भी करते हैं, तो भाई जब हम फसल उगाते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि हम जो है अपनी फसल की अच्छी बढ़वार अच्छे उत्पादन के लिए जरूरत होती है उसको सही से पोषण की। तो किसान भाइयों हमारे किसान भाई अपने खेतों में देसी खाद डालते हैं, चाहे गोबर की सड़ी खाद का प्रयोग करें या भैया आप जो है कंपोस्ट खाद का प्रयोग करें या भैया अन्य कोई जैविक खाद अपने खेतों में हमारे किसान भाई डालते हैं। तो भाई जब हम जैविक खाद डालते हैं उसके बाद फसल बोने के बाद भैया हमारे किसान भाई रासायनिक उर्वरकों को भी डालते हैं, तो भाई ये जो हमारी फसल होती है उसको लगभग 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें भैया मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, ये मुख्य पोषक तत्व होते हैं जिनको हमारे किसान भाई संतुलित मात्रा में यदि प्रयोग करते हैं तो भाई अपनी फसलों का अच्छा उत्पादन लेते हैं। और भाई दूसरे होते हैं हमारे जो गौण तत्व होते हैं।

0: हैं। और भैया कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं हमारे किसान भाई उनको जो है अपने खेतों में डालते हैं, या भैया अपने हमारे जो मिट्टी है उसमें उनके पोषकता पर्याप्त होती है तो वो हमारी फसल को प्राप्त हो जाते हैं। किसान भाइयों, संतुलित उर्वरक वे उर्वरक होते हैं जिनमें फसलों के लिए आवश्यक मुख्य पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश उचित अनुपात में पाए जाते हैं। संतुलित उर्वरकों का प्रयोग हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए, यानी कि हमें जो सावधानी बरतनी चाहिए वो ये बरतनी चाहिए कि हमें अपनी फसलों में एक ही उर्वरक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि हम यूरिया डाल रहे हैं तो बार बार यूरिया ही अपनी फसल को ना दें भाई। हम जो है यूरिया के बदले आप भैया अन्य डीएपी डाल सकते हैं या एनपीके डाल सकते हैं जिसमें भैया यूरिया की मात्रा होती है। किसान भाइयों, फसल की आवश्यकता के अनुसार उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि भाई अलग अलग फसल का अलग अलग पोषण मान होता है, यानी कि उसको अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसके लिए सबसे पहले आपको मिट्टी की जांच करा लेनी चाहिए, आपको उससे ये पता चल सके कि भैया हमारी मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी है, कौन से पोषक तत्व की पर्याप्त मात्रा हमारे खेत में उपलब्ध है। किसान भाइयों, मिट्टी परीक्षण के आधार पर उर्वरक देने से हमारे किसान भाइयों की जो लागत है वो भी भैया कम होती है, साथ ही साथ भैया फसल को पूरा पोषण मिलता है। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें कि भाई गन्ने की फसल को अधिक उर्वरकों की आवश्यकता होती है, यानी कि पोषण मान की आवश्यकता होती है, और सब्जियों की फसल को कम पोषण मान की आवश्यकता होती है, जैसे कि भैया गन्ना है, सब्जियां हैं, धान है आने वाली फसलों में, तो भाई इनको जो है अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो हर फसल की उर्वरकों की मात्रा अलग अलग हमें रखनी चाहिए। किसान भाइयों, संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करते समय कुछ सावधानियां रखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पौधों की जड़ें जल सकती हैं और मिट्टी की उर्वरता कम हो सकती है। किसान भाइयों, अधिक उर्वरक पर्यावरण प्रदूषण का कारण भी बनते हैं। साथ ही साथ किसान भाइयों, जो हम खाद डालते हैं तो फसल के साथ जब हम बोते हैं उसको या हम डालते हैं तो भैया सीधे हमारे बीज के संपर्क में वो नहीं आने चाहिए, नहीं तो जो हमारा बीज है वो उसको काफी तरह से क्षति पहुंचा देते हैं, उसका अंकुरण प्रभावित होता है। खेत में उर्वरकों का समान रूप से वितरण करना चाहिए ताकि सभी पौधों को बराबर पोषण मिल सके। किसान भाइयों, उर्वरकों को हमेशा सूखी और सुरक्षित जगह पर रखना चाहिए ताकि भैया उनमें नमी ना चढ़ सके, वे खराब ना हो। विभिन्न उर्वरकों को बिना जानकारी के आपस में नहीं मिलाना चाहिए। उर्वरक डालते समय अपने हाथों में दस्ताने या चेहरे पर कपड़ा या मास्क आवश्यक रूप से रखना चाहिए ताकि भैया शरीर पर किसी उर्वरक का दुष्प्रभाव ना पड़े। उर्वरक डालने के बाद उचित सिंचाई करना बहुत जरूरी होता है, जिससे भैया पौधों को पोषक तत्व आसानी से मिल सके। किसान भाइयों, संतुलित उर्वरकों का सही मात्रा और सही समय पर प्रयोग करने से फसल उत्पादन बढ़ता है, मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, साथ ही साथ किसान भाइयों को अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो किसान भाइयों, आज तो हम अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं, कल फिर अन्य विषयों के साथ अवश्य उपस्थित होंगे। किसान भाइयों, नमस्कार।
1: खेती की बातें के अंतर्गत आज हमारे श्रोताओं ने जानकारी सुनी संतुलित उर्वरकों का प्रयोग और सावधानियां। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 7:15 हुए हैं। श्रोताओं, आइए अब आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कुछ विशेष कार्यक्रमों के संदर्भ में। श्रोताओं, आज रात्रि 9:30 पर आप पब्लिक स्पीक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 7:31 पर आप सुनेंगे सूचना ज्ञान और मनोरंजन से सराबोर कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। श्रोताओं, फिल्म संगीत के कार्यक्रम गोल्डन हिट्स का समय रहेगा 8:45 पर। लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे लतिका चौहान के स्वर में रुहेलखंडी लोकगीत आज 9:25 पर।

शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आज हमारे श्रोता सुनेंगे पंडित रविशंकर का सितार पर बजाया राग मधुवंती, विलंबित व द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध होगी। और श्रोताओं, फिल्म संगीत के कार्यक्रम मिड डे मेलोडी का समय रहेगा दोपहर 12:30 पर।

लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा में आज आप सुनेंगे जसवंत सिंह और पूर्वी के स्वर में भोजपुरी लोकगीत।

0: श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:18 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
1: धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
2: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
2: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
2: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, ये सिर्फ उनका नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के नव नियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को किया विभागों का आवंटन। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बने एमएसएमई विभाग के मंत्री। प्रदेश में अनुदेशकों को 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा कवर देगी सरकार। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अनुदेशक सम्मान समारोह और चेक वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने की घोषणा। और प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुए अलग अलग हादसों में 11 लोगों की मौत, 5 घायल। अब समाचार विस्तार से। स्वीडन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। ये किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को स्वीडन द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वीडन का सर्वोच्च पुरस्कार मिलना सिर्फ उनका सम्मान नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है।
1: यह स्वीडन के हमारे उन सभी

0: साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया।
1: स्वीडन में मिला सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक मिला ये 31वां वैश्विक सम्मान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपने मंत्रिमंडल में नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिया। नवनियुक्त मंत्रिमंडल मंत्रियों में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम MSME विभाग सौंपा गया है। मनोज कुमार पांडे को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग आवंटित किया गया है। मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान राज्य मंत्री के तौर पर पदोन्नत किए गए अजीत पाल सिंह को खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के साथ साथ राजनीतिक पेंशन विभाग की भी जिम्मेदारी दी गई है, जबकि सोमेंद्र तोमर को सैनिक कल्याण और प्रांतीय रक्षा दल विभाग का प्रभार सौंपा गया है। नवनियुक्त 4 राज्य मंत्रियों को भी विभाग आवंटित कर दिए गए। कृष्णा पासवान को पशुपालन एवं दुग्ध विकास विभाग, सुरेंद्र दिलेर को राजस्व विभाग, हंसराज विश्वकर्मा को लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय और कैलाश राजपूत को ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग सौंपा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर दौरे के तीसरे दिन वहां के सहजनवा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण 2026 के तहत भाजपा के जिला प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश का ऐसा राजनीतिक दल है जो देश को सुरक्षा, संस्कृति, सुशासन और समृद्धि को जोड़ने का काम कर रही है। श्री योगी ने कहा कि केंद्र और भाजपा शासित राज्य सरकारों ने राष्ट्र प्रथम की भावना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की संकल्पना के अनुरूप अपने कार्यक्रमों को तैयार किया है। इससे देश के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है।
2: भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उन सपनों को भी साकार किया है जो उन्होंने अंत्योदय की बात, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को शासन की योजना का लाभ मिलना चाहिए। देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को एक एक आवास मिल जाना, 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा मिल जाना, 10 करोड़ किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ हो, ये समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को समृद्धि के शिखर तक पहुँचाने के अभियान का क्रम है।
1: कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान और सांसद रवि किशन शुक्ल सहित कई पार्टी पदाधिकारी और प्रमुख जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अनुदेशक सम्मान समारोह और चेक वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 में समग्र शिक्षा अभियान के तहत 24,717 अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 9,000 से बढ़ाकर 17,000 रुपये प्रतिमाह किए जाने के उपलक्ष्य में ये आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मानदेय बढ़ाने के साथ ही राज्य सरकार अनुदेशकों को 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा कवर का लाभ देने जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है हर बच्चा शिक्षा हासिल करे ताकि विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सके।
3: जब साफ नियत से कोई सरकार कार्य करती है, स्पष्ट नीति हो तो परिणाम आने में देर नहीं लगती। प्रदेश के अंदर जो ड्रॉप आउट रेट था लगभग 17-18% के आसपास था और आज हम इसको घटाते 3 तक पहुंचाने में सफल हुए हैं और हमारा मानना है इसको 0 तक पहुंचाना है। हर बच्चा पढ़ेगा तब विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार हम कर पाएंगे।
1: केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद और प्रदेश के राज्य मंत्री संजय गंगवार ने कल पीलीभीत में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को स्मार्टफोन वितरित किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री प्रसाद ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के कामों में हमेशा पारदर्शिता रही है और सरकार ने जो कहा उसे करके दिखाया। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने कल से CNG की कीमतों में 1 रुपये की बढ़ोतरी कर दी। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 80.09 रुपये, जबकि गाजियाबाद और नोएडा में ये 88.70 रुपये हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नंबर

0: 800 11 7800 पर इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। मथुरा सहित समूचे ब्रजमंडल में एक माह तक चलने वाला पुरुषोत्तम मास मेला कल से शुरू हो गया। एक रिपोर्ट।
1: मथुरा समेत समूचे ब्रजमंडल में एक माह तक चलने वाला अधिक मास मेला शुरू हो गया है। चहु और 84 कोस परिक्रमा का उत्साह और राधे राधे की गूंज सुनाई दे रही है। आस्था और भक्ति में डूबे लाखों श्रद्धालु मथुरा वृंदावन गोकुल बरसाना नंदगांव और गोवर्धन में 84 कोसी परिक्रमा कर रहे हैं। SP ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए परिक्रमा मार्ग गोवर्धन द्वारकाधीश और श्री कृष्ण जन्म स्थली समेत प्रमुख मंदिरों को सुपर जोन और सेक्टरों में कर भारी पुलिस बलों की तैनाती की गई है और पूरे क्षेत्र की CCTV कैमरों और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। मोहम्मद उमर कुरैशी, आकाशवाणी समाचार, मथुरा।
0: प्रदेश के विभिन्न जिलों में कल हुए 3 अलग अलग हादसों में 11 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 अन्य घायल हैं। हमीरपुर के मौदहा क्षेत्र के छिरका गांव के पास हाईवे पर खड़े ट्रक और कार की टक्कर में हुई दुर्घटना में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। ये सभी बागेश्वर से दर्शन कर घर वापस जा रहे थे। हमारे फतेहपुर प्रतिनिधि ने बताया कि वहां के रिंद नदी में नहाने गए 4 युवकों की डूबने से मौत हो गई जबकि अन्य 2 को गोताखोरों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं शाहजहांपुर जिले के कांट इलाके में कल सुबह डंपर और ऑटो की टक्कर में दंपत्ति सहित 3 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में 20 मई से कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। साथ ही विभाग द्वारा कल और 20 मई को प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में दिन के समय कुछ स्थानों पर तेज लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच प्रदेश में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और लू को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि संवेदनशील जिलों में विशेष निगरानी रखी जाए। सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित किए जाए। मुख्यमंत्री द्वारा अस्पतालों में दवाओं बेड और डॉक्टरों की उपलब्धता बनाए रखने के साथ एम्बुलेंस सेवाओं को भी सक्रिय करने का निर्देश दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, ये सिर्फ उनका नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को किया विभागों का आवंटन। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बने MSME विभाग के मंत्री। प्रदेश में अनुदेशकों को 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा कवर देगी सरकार। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अनुदेशक सम्मान समारोह और चेक वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने की घोषणा। और प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुए अलग अलग हादसों में 11 लोगों की मौत, 5 घायल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ, यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्स पर, ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 7:31:40 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है सूचना, ज्ञान और मनोरंजन से सराबोर कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

0: साथ साथ।
1: धीरे धीरे आकाश में फैलती सूरज की सुनहरी किरणें, ठंडी हवाओं का मधुर स्पर्श और एक नई सुबह की नई उम्मीदें। नमस्कार श्रोताओं, सूचना ज्ञान और मनोरंजन से भरे इस कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में मैं नेहा शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, हर रोज की तरह आज भी हम बात करेंगे उन विषयों की जो देश, समाज, विज्ञान और संस्कृति से जुड़े हुए हैं। श्रोताओं, आज ही के दिन यानी 18 मई को हम मना रहे हैं पोखरण परमाणु विस्फोट दिवस। ये दिवस राजस्थान के पोखरण में हुए दो प्रमुख परमाणु परीक्षणों 18 मई 1974 और 11 मई 1998 की उपलब्धियों के उपलक्ष में इस विशेष दिन को याद करके मनाया जाता है। 18 मई 1974 में हुआ ये भारत का पहला परमाणु परीक्षण था श्रोताओं, जिसको नाम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा यानी लाफिंग बुद्धा। श्रोताओं, यही वो सफल परीक्षण था जिसके बाद भारत आधिकारिक तौर पर परमाणु क्लब में शामिल होने वाला दुनिया का छठवां देश बन गया था। उस समय देश की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
4: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
5: तो इंतजार किस बात का,
4: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
5: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
4: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
5: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
4: और हमारा ईमेल आईडी है
5: akashwaninajibabad@gmail.com।
4: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
5: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: श्रोताओं, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में। आइए श्रोताओं, बात करते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी एक जानकारी की। श्रोताओं, HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस आज भी दुनिया के सामने एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती बना हुआ है। ये वायरस शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है। हालांकि चिकित्सा विज्ञान ने HIV के इलाज और नियंत्रण में काफ़ी प्रगति की है, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए प्रभावी वैक्सीन की आवश्यकता आज भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार HIV की वैक्सीन लाखों लोगों में संक्रमण से बचने में मददगार साबित होती है। तो साथियों, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना ही सुरक्षित भविष्य की सबसे बड़ी कुंजी है। इसके साथ ही जागरूकता, सुरक्षित व्यवहार और समय समय पर जांच भी उतनी ही जरूरी है, ताकि हम इस गंभीर बीमारी की चपेट में आने से काफी हद तक बच जाएं। कार्यक्रम में बातचीत और भी करेंगे, लेकिन आइए सुनते हैं ये एक और जरूरी संदेश।
6: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस

0: शहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सूरज के साथ साथ आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। साथियों, आज है 18 मई। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को संग्रहालयों के महत्व और हमारी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ता है। आज तकनीक के माध्यम से संग्रहालय और भी आधुनिक और आकर्षक बन रहे हैं, जिससे युवा पीढ़ी भी इतिहास और संस्कृति को करीब से समझ पा रही है। हमारी विरासत को जानना और सहेजना आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अनमोल उपहार है। श्रोताओं, समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका और योगदान को सम्मान देने के लिए भी हर वर्ष 18 मई यानी आज ही के दिन को समुद्री क्षेत्र में महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। आज महिलाएं जहाज संचालन, समुद्री अनुसंधान, नौवहन और बंदरगाह सेवाओं जैसे क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा और नेतृत्व का परिचय दे रही हैं। ये दिवस महिलाओं को सम्मान के समान अवसर देने और उन्हें इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने का संदेश देता है। साथियों, महिलाओं की बढ़ती भागीदारी न केवल समुद्री क्षेत्र को मजबूत बना रही है, बल्कि समाज में समानता, सशक्तिकरण की नई मिसाल भी पेश कर रही है।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं सूचना, ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम सूरज के साथ साथ, और ये कार्यक्रम आप लाइव सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। आज का अंक प्रस्तुत कर रही हूं मैं, आप सभी की रेडियो साथी नेहा शर्मा। श्रोताओ, हर दिन की कुछ घटनाएं इतिहास के पन्नों में सदा सदा के लिए दर्ज हो जाती हैं। आज यानी 18 मई की विशेष घटनाओं की अगर हम बात करें, तो आज ही के दिन राजस्थान में पंजीकृत निजी क्षेत्र में भारत के पुराने बैंकों में से एक बैंक ऑफ राजस्थान का ICICI बैंक में विलय होना तय हुआ था। पार्श्व गायक नितिन मुकेश को 18 मई 2008 को मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकरण से सम्मानित भी आज ही के दिन यानी 18 मई 2008 को किया था। श्रोताओं, माउंट सेंट हेलेंस ज्वालामुखी में एक विनाशकारी विस्फोट हुआ था 18 मई सन 1980 में। आज ही के दिन अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य में स्थित माउंट सेंट हेलेंस ज्वालामुखी में एक विनाशकारी विस्फोट हुआ, जिसमें आपदा में लगभग 57 लोगों की जान चली गई। सैकड़ों वर्ग मील का हरा भरा जंगल तबाह हो गया था और मीलों तक राख का गुबार फैल गया था। 2009 की अगर हम बात करें, तो 18 मई को आज ही श्रीलंकाई सेना ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के प्रमुख वेल्लू पिल्लई प्रभाकर को मार गिराया था। उनकी मौत के साथ ही लगभग 26 वर्षों से चला आ रहा हिंसक गृह युद्ध आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया था। इस संघर्ष में लाखों लोगों की तबाही हुई थी। बात करें आज के दिन जन्मे ख्याति प्राप्त व्यक्तियों की, तो पहला नाम आता है भारत के 12वें प्रधानमंत्री हुए HD देवगौड़ा का, जिनका जन्म 18 मई को ही हुआ था। S जगन्नाथन, भारतीय रिजर्व बैंक के 10वें गवर्नर, जिनका पूरा नाम था सरकाई जगन्नाथन, उनका भी आज ही के दिन जन्म दिवस है। श्रोताओं, जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु को हम नहीं नकार सकते। आज ही के दिन यानी 18 मई को भारत की दिग्गज अभिनेत्री और आदर्श माँ के रूप में पहचान बनाने वाली रीमा लागू इस दिन इस दुनिया को अलविदा कह गई थी। आपने हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया, आशिकी, साजन, वास्तव, हम साथ साथ हैं, कल हो ना हो जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। आप अपने माँ के रोल को निभाने वाली एक मशहूर अभिनेत्री रही हैं। श्रोताओं, आइए रीमा लागू को श्रद्धांजलि देते हुए सुनते हैं उन्हीं के ऊपर फिल्माया गया

श्रोताओं, हम आपके हैं कौन। इस फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। कार्यक्रम में अब रुक करते हैं आज के समाचार पत्रों की कुछ खास सुर्खियों पर। शुरुआत अमर उजाला से करते हैं। पहली खबर है, मानसून की अंडमान निकोबार में दस्तक, उत्तर पश्चिम भारत भीषण लू की चपेट में। यूपी में सबसे अधिक 46.4 डिग्री तापमान यूपी के बांदा जिले में दर्ज किया गया। एक अन्य खबर है, हॉर्मुज से 20,000 टन रसोई गैस लेकर गुजरात पहुंचा टैंकर। पश्चिम एशिया संकट के बीच कतर से 20,000 टन घरेलू रसोई गैस लेकर चला जहाज एमवी सिमी हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार कर गुजरात के कांडला पहुंच गया है। अगली खबर है, प्रदेश में 11,500 शिक्षकों और 10,000 अनुदेशकों की होगी भर्ती। सीएम ने की घोषणा, कहा शिक्षक भर्ती का प्रस्ताव भेजा गया है और अनुदेशकों की नियुक्ति भी जल्द ही की जाएगी। श्रोताओं,

करते हैं दैनिक जागरण की। पहली खबर है, दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस बनी बर्निंग ट्रेन, बनी बड़ी दुर्घटना टली। तिरुवनंतपुरम से हजरत निजामुद्दीन राजधानी में रतलाम के पास हुआ हादसा। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में रविवार सुबह दिल्ली मुंबई रेलवे मार्ग पर रविवार हजरत निजामुद्दीन दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस के B1 AC कोच में आग लग गई। राहत की बात यह रही कि कोई जानहानि नहीं हुई। घटना के लगभग 15 मिनट के अंदर ही सभी 68 यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया। अगली खबर है, रक्षा दुर्लभ खनिज समेत भारत व नीदरलैंड में 17 करार। भारत और नीदरलैंड में बनाया भविष्य का रोडमैप। मोदी व डच PM जेनेट ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान पर जताई चिंता। वैश्विक भू राजधानी के बदलावों के बीच भारत और नीदरलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर बढ़ाने का निर्णय लिया है। अगली खबर है कि कामी रीता शेरपा ने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर की चढ़ाई। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने रविवार को माउंट एवरेस्ट पर 32वीं बार चढ़ाई करके इतिहास रच दिया है। श्रोताओं, अब रुख हिंदुस्तान की ओर करते हैं। पहली खबर है, भारत नीदरलैंड के बीच 17 अहम समझौते। इस खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से स्थान दिया है। भारत और नीदरलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड के PM रॉब जेटेन के बीच हुई वार्ता में रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों व अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एक अन्य खबर में हिंदुस्तान कहता है कि YouTube में पकड़े जाएंगे नए नकली वीडियो। YouTube ने अपना AI डीप फेक टूल अब सभी 18 साल के ऊपर के यूजर्स के लिए उपलब्ध कर दिया है। अब इससे नए नकली वीडियोस को पकड़ने में बेहद आसानी होगी। अगली खबर, न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जाएगी। शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि के निर्णय को राष्ट्रपति की मंजूरी पर कानूनी बिरादरी ने खुशी की लहर जताई है। अधिवक्ताओं ने इससे लंबित मामलों में के निस्तारण में तेजी आने की उम्मीद जताई। हालांकि मुकदमों की बड़ी संख्या को देखते हुए उन्होंने भविष्य में जजों की संख्या 50 तक बढ़ाए जाने की भी जरूरत जताई है। VIP ट्रेन के लिए साधारण गाड़ियां अब नहीं रोकी जाएंगी। भारतीय रेल में दशकों से VIP और आम जनता की ट्रेनों के बीच का भेदभाव समाप्त होने जा रहा है। अभी VIP ट्रेनों को रास्ता देने के लिए आम ट्रेनों को लूप लाइनों पर रोक दिया जाता था। आगे से ये कार्रवाई नहीं की जाएगी। और श्रोताओं, ये तो थी जानकारी आज के समाचार पत्रों में छपी सुर्खियों की। कार्यक्रम अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं एक और खूबसूरत सा गीत।

दूर गगन की छाओं में। इस फिल्म का गीत हमारे श्रोताओं ने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज का कार्यक्रम सूरज के साथ साथ अब यहीं पर संपन्न करने की अपनी साथी नेहा शर्मा को दीजिए अनुमति। आपके उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना के साथ मैं नेहा शर्मा आप सभी को नमस्कार करती हूँ।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे सूचना ज्ञान और मनोरंजन से सराबोर कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47

0: ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेता भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की भावना और हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप जनहित के नए अवसरों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की तात्कालिकता पर जोर दिया गया और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।
1: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक की संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रॉन्गर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए स्वीडन का विशेष आभार भी व्यक्त किया।
2: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: इस यात्रा में साझा बौद्धिक विरासत और व्यापक क्षेत्रीय सहयोग को भी नहीं पहचान दी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के 4थे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं।
3: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन 165 से अधिक देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, गणमान्य जनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स एट

0: AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर आज सुबह 10 बजे तिरुवनंतपुरम में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल शाम शपथ ग्रहण समारोह से पहले 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की।
3: कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार आज केरलम में 10 साल के अंतराल के बाद शपथ ले रही है। मुख्यमंत्री और 20 अन्य मंत्री तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित समारोह में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए यूडीएफ कार्यकर्ता कल दोपहर से ही बड़ी संख्या में राजधानी पहुंच रहे हैं। इस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई जयन और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। 10 मई को हुए उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का आवंटन किया गया है। इस फेरबदल में 2 कैबिनेट मंत्रियों और 4 राज्य मंत्रियों को सरकार में शामिल किया गया, जबकि 2 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह रायपुर और बस्तर में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
4: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह रायपुर में आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वे बस्तर जाएंगे और जिले के नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इस केंद्र से दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को शासकीय और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इसके बाद श्री शाह जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शाम को वे बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का यह राज्य का पहला दौरा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर में अगले 2 से 3 दिन तक मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं।
5: मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश हो सकती है। वहीं विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में भीषण लू चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी लू चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना के पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल V.A. वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं 0112331 0481 और 0112371 71। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नीट यूजी प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच अब महाराष्ट्र के लातूर से नांदेड़ तक पहुंच गई है। एक अभिभावक पर अपनी बेटी के लिए प्रश्न पत्र 5 लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने कल उस व्यक्ति से पूछताछ कर जांच के लिए

0: पुणे कार्यालय में बुलाया है। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पुणे की आरोपी मनीषा मंधारे को 14 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। एजेंसी के अनुसार मंधारे नीट जीव विज्ञान परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी हैं। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। मध्य प्रदेश के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी के एक यात्री डिब्बे, सामान रखने वाले डिब्बे और जनरेटर वाले डिब्बे में आग लग गई थी। समिति घटना के कारणों, तकनीकी पहलुओं और सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच करेगी, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने एचडी देवेगौड़ा को सही मायने में धरती का सपूत बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद विशाल। भारत और नीदरलैंड्स का द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का निर्णय आज के सभी अखबारों की पहली खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, रक्षा, खनिज और एआई में मिलकर काम करेंगे भारत नीदरलैंड्स, 17 समझौते हुए, 5 साल का रोड मैप तैयार। होर्मुज जलमार्ग में जहाजों पर हमले और आवागमन को रोकना मंजूर नहीं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का बयान जनसत्ता में है। सुरक्षित आवागमन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। भारत को मिलने लगा निर्यात विविधता का लाभ, नए बाजार तलाशने की कवायद का दिखा नतीजा, अप्रैल में भी निर्यात 13% बढ़ा। दैनिक जागरण के अनुसार वैश्विक व्यापार में रुकावटों के बावजूद एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को निर्यात में हुई मजबूत वृद्धि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं के नतीजों पर छात्रों के विरोध के बाद बोर्ड के पुनर्मूल्यांकन फीस में बड़ी कटौती के फैसले को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता दी है। बोर्ड ने कहा, दोबारा कॉपी जंचवाने में एक नंबर भी बढ़ा तो पूरी फीस लौटाई जाएगी। एनडीए सरकारों पर लोगों का भरोसा, गृहमंत्री का ये बयान हिंदुस्तान में है। गुजरात के दौरे पर गए गृहमंत्री ने हाल के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत पर कहा, भाजपा और एनडीए की सरकारें आज देश के 80% भूभाग पर शासन कर रही हैं। दिल्ली में महिलाओं को मिलेगा 10 करोड़ का कर्ज, नहीं देनी होगी कोई गारंटी। पंजाब केसरी के अनुसार दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूहों को बिना गारंटी देगी ऋण। तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन देने की आंध्र प्रदेश सरकार की घोषणा पर नवभारत टाइम्स संपादकीय में लिखा है, ऐसे प्रयोग दूसरी जगहों पर भी हुए लेकिन खास सफल नहीं रहे। दक्षिण भारत के राज्यों ने बहुत मेहनत से जनसंख्या नीति लागू की थी, शिक्षा और जागरूकता पर बाकी राज्यों के मुकाबले अधिक खर्च किया गया, यही कारण है कि आज दक्षिण के राज्य आगे खड़े दिखते हैं। पत्र लिखता है, आबादी को बढ़ाने की नाकाम कोशिशों के बजाय मौजूदा कार्य बल के बेहतर इस्तेमाल पर ध्यान देने होंगे।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra

वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वीडन के अपने हम मनसब उल्फ क्रिस्टर्सन कोटनबर्ग से दोतरफा बातचीत की। भारत और स्वीडन ने अपनी दोतरफा ताल्लुकात को दिफाई शराकत दारी तक ले जाने का फैसला किया। वजीर आजम ने स्वीडन की कंपनियों को मदऊ किया है कि वो मेक इन इंडिया, माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन के कौमी मिशन और अहम मादनियात के कौमी मिशन इकदाम के तहत भारत में अपनी सरमायाकारी में इजाफा करें। कांग्रेस रहनुमा वी डी सतीशन को आज केरलम के वजीर आला के ओहदे का हलफ दिलाया जाएगा। इम्कान है कि जुनूब मगरबी मानसून इस महीने की 26 तारीख को केरलम के साहिल पर पहुंच जाएगा, जो मामूल की तारीख से 6 दिन पहले है। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल रात गोटनबर्ग में स्वीडन के अपने हम मनसब उल्फ क्रिस्टर्सन से बातचीत की। वो इस मुल्क के दो रोजा दौरे पर कल गोटनबर्ग पहुंचे थे। जनाब मोदी को स्वीडन के आला तरीन एजाज रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से नवाजा गया। उन्हें ये एजाज दो तरफा ताल्लुकात में उनके गैर मामूली तआवुन और उनकी दूरंदेश क्यादत को तस्लीम करते हुए दिया गया है। ये अवार्ड आला तरीन इम्तियाज है जो किसी सरबराह हुकूमत को दिया जाता है। ये वजीर आजम मोदी का 31वां बैन अलावामी एजाज है। वफ्द की सतह की बातचीत में दोनों रहनुमाओं ने भारत स्वीडन ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे का जायजा लिया और दोतरफा ताल्लुकात को दिफाई शराकत दारी तक ले जाने से इत्तेफाक किया, जो

0: वजीराजम मोदी अपने दौरे के चौथे मरहले में तीसरी भारत नॉर्डिक समिट और दोतरफा सरगर्मियों के लिए आज नॉर्वे पहुंचेंगे। ये वजीराजम मोदी का नॉर्वे का पहला दौरा तो है ही, अलबत्ता पिछले 43 साल में भारत के किसी वजीराजम का नॉर्वे का पहला दौरा भी है। जनाब किंग हेराल्ड फाइव और जनाब मोदी किंग हेराल्ड फाइव और क्वीन सोंजा से मुलाकात करेंगे और वजीराजम जोनास गहर स्टोर के साथ दोतरफा बातचीत करेंगे। जनाब मोदी नॉर्वे के वजीर आजम के साथ साथ भारत नॉर्वे तिजारत और तहकीक की सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। कांग्रेस रहनुमा वी डी सतीशन को आज केरलम के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। केरलम के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर उन्हें तिरुवनंतपुरम में एक तकरीब में आज सुबह 10 बजे ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। नामजद वजीर आला ने कल शाम UDF की 21 रुकनी काबीना का ऐलान किया था। तफसील हमारे नमा निगार से।
1: कांग्रेस की क्यादत वाली UDF वजारती काबीना को आज केरलम में 10 साल के वक्फे के बाद हलफ दिलाया जा रहा है। वजीर आला और 20 वजीर तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में मुनद एक तकरीब में हलफ लेंगे। वजीर आला VD सतीशन समेत नई वजारती काबीना के 16 अरकान पहली बार वजीर का अहदा संभालेंगे। UDF कारकुन हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत के लिए बड़ी तादाद में कल दोपहर से ही रियासत की राजधानी पहुंच रहे हैं। उम्मीद है कि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के वज़राए आला, सुबुकदोश वज़ीर आला पिनराई विजयन और BJP के रियासती सदर राजीव चंद्रशेखर इस तकरीब में शिरकत करेंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह छत्तीसगढ़ के दो रोजा दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। रियासत के अपने दौरे में जनाब शाह रायपुर और बस्तर में कई प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मरकजी वजीर दाखला अमित शाह अपने छत्तीसगढ़ दौरे के पहले दिन आज सुबह रायपुर में हंगामी खिदमात डायल 112 के तहत नई गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वो बस्तर के लिए रवाना होंगे, जहां जिले के नेतानार गांव में अवामी सहूलत मरकज के इफ्तिताह करेंगे। इस मरकज का मकसद दूर दराज के इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों की हुकूमत और डिजिटल खिदमात तक रसाई को आसान बनाना है। इसके बाद जनाब शाह जगदलपुर पहुंचेंगे और अमर वाटिका पर शहीदों को खराज अकीदत पेश करेंगे। जनाब शाह का जगदलपुर की बादल एकेडमी में दोपहर में शहीदों के अफराद खानदान, हिफाजती अहलकारों, माओनवाजों के तशद्दुद से मुतासर अफराद और मुख्तलिफ मकामी बिरादरियों के नुमाइंदों से मुलाकात का भी प्रोग्राम है। वजीर दाखला शाम को लोक सकाफती प्रोग्राम बस्तर के संग में मौजूद रहेंगे। मरकजी वजीर दाखला कल 19 मई को जगदलपुर में वस्ती जोनल काउंसिल की 26वीं मीटिंग की सदारत करेंगे। इस मीटिंग में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के वज़राए आला शिरकत करेंगे। छत्तीसगढ़ को माओनवाजों से पाक करार दिए जाने के बाद जनाब शाह का रियासत का यह पहला दौरा है। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 25 तारीख को साल 2026 के लिए पद्म अवार्ड अदा करेंगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजारत दाखिला ने कहा कि सदर जमहूरिया राष्ट्रपति भवन में मुनक़द होने वाली पहली शहरी एजाज से मुतालिक तकरीब के दौरान सिविल इन्वेस्टिचर तकरीब में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड अदा करेंगी। इस साल भारत सरकार ने मजमूई तौर पर 131 पद्म अवार्ड का ऐलान किया है। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा 79वीं आलमी सेहत असेंबली में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए। ये 6 रोजा तकरीब आज से जिनेवा में शुरू होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब नड्डा ने कहा कि यह असेंबली 165 मुल्कों के वज़राए सेहत, मुअज़्ज़ज़ अफराद और अवामी सेहत माहिरीन को यकजा करेगी, जहां मुस्तहकम ज्यादा शमूलियाती और लचकदार सेहत देखभाल निज़ाम के तहत मुश्तरका आलमी अज़्म की यकीन दहानी कराई जाएगी। मगरिब वस्ती रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में कल आग लगने के वाकये की जांच के लिए आला इंतजामी ग्रेड सतह की इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी है। आग लगने का वाकया ट्रेन के एक मुसाफिर कोच और एक लगेज ब्रेक और जनरेटर कार में उस वक्त पेश आया जब ट्रेन मध्य प्रदेश के लूनी, रिचा और विक्रमगढ़ अलौत स्टेशनों के दरमियान थी। भारत ने मुत्तहिदा अरब अमारात के बारख न्यूक्लियाई मरकज को निशाना बनाकर किए गए हमले पर गहरी

0: 20 मिनट हुए श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। कार्यक्रम गोल्डन हिट्स सुन रहे हमारे सभी श्रोताओं को आपकी साथी नेहा शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दीवार से। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में ये गीत है। साहिल लुधियानवी के बोल हैं और आर डी बर्मन का संगीत है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।
1: दिल में मेरे आज क्या है?
2: क्या है?

श्रोताओं, कुछ बातें लफ्जों से कही जाती हैं और कुछ सिर्फ निगाहों से समझी जाती हैं। प्यार जब दिल में गहराई से उतर जाए तो खामोशी भी एक खूबसूरत गीत का इजहार बन जाती है।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, वक्त है एक बेहद मस्ती भरे और सदाबहार गीत का, जिसकी चुलबुली अदाएं आज भी दिलों को गुदगुदा देती हैं। गीत हमने लिया है फिल्म जॉनी मेरा नाम से। किशोर कुमार और उषा खन्ना की आवाज में ये गीत है। इंदिवर ने इस गीत के बोल लिखे हैं और धुन है कल्याण जी आनंद जी की।

0: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: श्रोताओं आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। कार्यक्रम की अगली पेशकश है फिल्म सौतन से। सावन कुमार का लिखा ये गीत है, उषा खन्ना का संगीत और आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सागर का ये गीत। किशोर कुमार की आवाज में ये गीत है। शब्द रचना जावेद अली की है और धुन तैयार की है आरडी बर्मन ने।

सागर फिल्म का एक गीत हमारे श्रोताओं ने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। श्रोताओं, ये अब आपको सुनवाते हैं साथी फिल्म का एक गीत। अनुराधा पौडवाल और साथियों के स्वर में ये गीत लिखा है नवाब आरजू ने और संगीत है नदीम श्रवण का।

0: श्रोताओं, आप कार्यक्रम के अंत में आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म आन मिलो सजना का ये गीत। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत है। आनंद बख्शी ने शब्द रचना की है और धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: जब तुम कहोगे
2: जुमेरात को,
1: हाँ हाँ आधी रात को,
2: कहाँ

0: अच्छा तो हम चलते हैं,
1: अच्छा तो हम चलते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं।
2: श्रोताओ आन मिलो सजना फिल्म के इसी गीत के साथ आज का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 9:15 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप जिले की हलचल सुनेंगे। आज आप सुनेंगे बरेली और सीतापुर जिले की हलचल।
3: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए बरेली और सीतापुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बरेली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नाजिया अंजुम का।
4: बरेली में अब कोई भी फरियादी अपनी समस्या का समाधान पाए बिना वापस नहीं लौटेगा। ये संभव हुआ है ऑनलाइन मॉनिटरिंग के माध्यम से। बरेली जिले में सभी तहसीलों की 10 से 12 के बीच जनता दर्शन की लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसमें सभी तहसीलदारों BDO SDM को 10 से 12 के बीच अपने दफ्तर में बैठना है, जिसकी मॉनिटरिंग जिला अधिकारी बरेली अपने ऑफिस से करते हैं। यही नहीं, अगर जिला अधिकारी कार्यालय में किसी तहसील का कोई मामला आता है तो जिला अधिकारी बरेली संबंध अधिकारी से सीधे जुड़कर उस व्यक्ति की समस्या का समाधान करते हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से जनता दर्शन की लाइव मॉनिटरिंग के आदेश को बरेली जिले में बखूबी पूरा किया जा रहा है। जिलाधिकारी कार्यालय की भी मॉनिटरिंग लखनऊ से की जाती है। इसके साथ ही बरेली जिले की सभी तहसीलें बरेली जिला मुख्यालय से जुड़ती हैं, जिसमें हर फरियादी को अपनी समस्या का समाधान मिलता है। जनता दर्शन के दौरान 10 से 12 के बीच जिलाधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी जनसुनवाई में मौजूद रहते हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्या अधिकारियों के सामने रखते हैं। जिलाधिकारी बरेली का कहना है कि जनता दर्शन का उद्देश्य आम आदमी की समस्याओं का समयबद्ध और निष्पक्ष समाधान करना है, ताकि लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। लाइव मॉनिटरिंग के चलते अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा रही है और हर शिकायत की प्रगति पर नजर रखी जा रही है।
5: मुख्यमंत्री कार्यालय से यूपी के 75 जिलों के जो जिलाधिकारी के कार्यालय में जो जनता दर्शन कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, उसकी लाइव मॉनिटरिंग की जाती है, जिसमें सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी ये देखते रहते हैं कि जनता दर्शन में आने वाले जो हमारे फरियादी हैं, शिकायतकर्ता हैं, उनकी शिकायतों का किस प्रकार से सुनवाई हो रही है, किस प्रकार से आम जनमानस के प्रति व्यवहार है और किस प्रकार से उनकी उचित गुणवत्ता के साथ उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए और उससे जो रिजल्ट प्राप्त हो रहे थे उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जिला प्रशासन कह सकते हैं कि एक नया नवाचार किया है। हम लोगों ने अपने यहाँ भी एक बड़ी स्कीम के माध्यम से जितने भी हमारे 6 तहसीलों के SDM हैं, उनके कार्यालय, जो हमारे पास 15 विकास खंड हैं, उनके विकास खंड अधिकारी के कार्यालय और 19 हमारे पास जो है वो नगर पालिका और नगर निगम के EO के कार्यालय हैं, उन सभी को हमने अपने यहाँ जोड़ते हुए उनकी भी लाइव मॉनिटरिंग प्रारंभ किया है। तो लाइव मॉनिटरिंग के दौरान कार्य के जो आम जनमानस के प्रति उनकी किस प्रकार का व्यवहार है, किस प्रकार से शिकायतों को सुन रहे हैं, किस प्रकार से समस्या का समाधान कर रहे हैं, इस पे लगातार हम लोग नजर रख रहे हैं और यही वजह है कि कार्य की जो गुणवत्ता है लगातार उच्चतर होती जा रही है।
4: बरेली में धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाई मिलने जा रही है। गत दिनों उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह ने नाथ कॉरिडोर में कराए जा रहे कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। जिले में 98 करोड़ की लागत से सभी नाथ मंदिरों का कायाकल्प कराया जा रहा है, जिसमें त्रिवटी नाथ, धुपेश्वर नाथ, अलकनाथ विशेष रूप से शामिल है। इन मंदिरों में सरकार द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है, ताकि धार्मिक पर्यटन को एक नई दिशा मिल सके। एक कार्यक्रम में पहुंचे पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि पर्यटन को प्रदेश में नई ऊर्जा मिल रही है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री और

0: प्रधानमंत्री द्वारा ईंधन बचाने की अपील पर बोलते हुए कहा कि ये राष्ट्र हित का काम है। बरेली जिले में जल्द ही इको फ्रेंडली नगर वन बनने वाला है, जिसका शिलान्यास गत दिनों वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने किया। ये नगर वन शहरवासियों के लिए एक प्राकृतिक रमणीय स्थल बनने जा रहा है, जिसमें प्रकृति का खास ध्यान रखा जाएगा। इस नगर वन में बच्चों के लिए किड जोन भी विकसित किया जाएगा, जिससे बच्चे यहां आकर प्रकृति को समझ सकें। सबसे बड़ी बात यह है कि इस इको फ्रेंडली नगर वन में सब कुछ प्राकृतिक ही प्रयोग किया जाएगा, कॉन्क्रीट और ईंट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। रोहिलखंड विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गए दिव्यांग विद्यालय दिशा पब्लिक स्कूल में गत दिनों गुजरात दिवस का आयोजन धूमधाम से किया गया। स्कूली बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुति देकर कार्यक्रम को और भी शानदार बनाया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बड़े बड़े विश्वविद्यालय बनाना आसान है, लेकिन बच्चों को सही दिशा देना, हुनर सिखाना और आत्मनिर्भर बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने विश्वविद्यालयों को समाज से जोड़ते हुए कम से कम 5 गांव गोद लेकर उन्हें विकसित करने का आह्वान किया। राज्यपाल ने कहा कि यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी केवल किताबों तक सीमित नहीं है, उन्हें गांव में जाकर महिलाओं, बच्चों और किसानों की समस्याएं सुननी चाहिए, उनके समाधान में भागीदारी निभानी चाहिए। टीबी मुक्त भारत अभियान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब तक 4 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राज्यपाल ने कहा कि हर विश्वविद्यालय को राज्यों की स्थापना दिवस मनाने चाहिए, जिससे छात्रों को देश की विविधता और विकास मॉडल की जानकारी मिले। उन्होंने अपने गुजरात कार्यकाल का अनुभव साझा करते हुए बताया कि ग्रामीण महिलाओं बड़े स्तर पर परीक्षण अभियान चलाया गया, जिसमें 1.5 करोड़ महिलाओं की स्क्रीनिंग हुई और हजारों को समय से इलाज मिला।
1: बरेली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सीतापुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है दीपक श्रीवास्तव का।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में सीतापुर स्थित पवित्र तीर्थ स्थल नैमिषारण्य को भव्यतम स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। इसी क्रम में पौराणिकता और नवाचार को समाहित करते हुए नैमिष स्थित पुरानी धर्मशाला को आधुनिक शिल्प ग्राम इंटीग्रेटेशन सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। खास बात यह है कि विरासत भवन की मूल संरचना को सुरक्षित रखते हुए उसे आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। प्रदेश सरकार ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 372 करोड़ रुपए की मंजूरी देते हुए पहली किस्त के रूप में 2.98 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि नैमिषारण्य के इस इंटरप्रिटेशन सेंटर में श्रद्धालुओं को स्थानीय इतिहास, धार्मिक महत्व और सांस्कृतिक विरासत की विस्तृत जानकारी मिलेगी। इसके लिए भवन के भीतर अलग अलग थीम पर आधारित गैलरियां बनाई जाएंगी, जिनमें कॉस्मिक ऑर्डर, जीवन का विकास, सभ्यता का उदय, महाकाव्य और ज्ञानोदय जैसे विषयों को रोचक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। परियोजना के तहत पूरे परिसर का समग्र विकास किया जाएगा, जिससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। योजना अंतर्गत आधुनिक प्रवेश लॉबी, आकर्षक एम्फी थिएटर, मूर्ति कला मार्ग और स्वच्छ शौचालय ब्लॉक विकसित किए जाएंगे। इसके साथ ही मौजूदा भवन का नवीनीकरण और नई इमारत का निर्माण किया जाएगा, जिससे इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि पूरे क्षेत्र का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वातावरण और अधिक सजीव व आकर्षक बन सके। अपर मुख्य सचिव पर्यटन, संस्कृत एवं धर्मार्थ कार्य विभाग अमृत अभिजात ने बताया कि नैमिषारण्य जैसे पवित्र तीर्थ स्थल का समग्र विकास प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने बताया यहाँ श्रद्धालुओं आधुनिक और समग्र सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ इसकी समृद्ध ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रस्तावित इंटरप्रिटेशन सेंटर के जरिए श्रद्धालुओं और पर्यटकों को एक ही स्थान पर इस पावन स्थल के धार्मिक महत्व, परंपराओं और इतिहास की व्यापक जानकारी मिल सकेगी। इससे न केवल धार्मिक पर्यटन को नई गति मिलेगी, बल्कि क्षेत्र में सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्राप्त होगी। सीतापुर के अपर जिलाधिकारी नीतीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में स्वगणना 2027 के तहत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर सेल्फ सर्वे कराया गया। साथ ही सभी विभागों और विकास खंडों में विशेष अभियान चलाकर आधिकारिक सेल्फ इन्यूमिनेशन सुनिश्चित कराने तथा अधीनस्थों को प्रेरित करने के निर्देश दिए गए। नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु एवं विधायक मिश्रित रामकृष्ण भार्गव ने आम जनमानस से अपील की कि स्वगणना 2027 में अपनी जनगणना संबंधी सूचनाएं डिजिटल माध्यम से निःशुल्क दे सकते हैं, जिससे जनगणना का कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सकता है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन बहुत ही हर्ष उल्लास और उत्साह के साथ बाबा जंगली नाथ मंदिर के प्रांगण में आयोजित किया गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुजरात के सोमनाथ मंदिर में रुद्र अभिषेक किया गया, जिसका सजीव प्रसारण सभी आगंतुकों ने देखा। महामहिम राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर इस पर्व को समारोह पूर्वक मनाया। जनपद सीतापुर में पुलिस लाइन परिसर से कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा बाबा जंडलीनाथ मंदिर में समाप्त हुई, जहां सभी गणमान्य जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को बाबा जंडलीनाथ का अभिषेक एवं पूजन अर्चन संपन्न कराया गया। सभी अतिथियों ने श्रद्धालुओं को संबोधित करने के साथ सजीव प्रसारण का अनुसरण किया। अंत में जिलाधिकारी द्वारा सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। संचालन राज शर्मा जिला व्यायाम शिक्षक ने किया। इस अवसर पर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद सीतापुर वैभव त्रिपाठी एवं बड़े संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। दिन के 9:25 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम धरती गाती है, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे लतिका चौहान के स्वर में रुहेल खंडी लोकगीत।

0: आकाशवाणी नजीबाबाद से प्रत्येक मंगलवार को
1: शाम 6:05 पर कृषि जगत कार्यक्रम में सुनिए
0: गुणवत्ता युक्त बासमती धान उत्पादन हेतु
1: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा
0: साप्ताहिक आयोजित कार्यक्रम

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है, जिसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं लतिका चौहान के स्वर में रुहेल खंडी लोकगीत।

श्रोताओं, इसी लोकगीत के साथ आज का कार्यक्रम धरती गाती है अब यहीं पर संपन्न होता है। लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है में आज हमारे श्रोताओं ने सुने लतिका चौहान के स्वर में रुहेल खंडी लोकगीत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। दिन के 10 बजे हैं श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है बात आसपास की। वाचन स्वर एवं संकलन है धीरेन्द्र धारीवाल का।

0: श्रोताओं नमस्कार। बात आसपास की इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपका दोस्त धीरेन्द्र धारीवाल। आज फिर एक नए कार्यक्रम के साथ हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, शिक्षा वो चीज है जिससे हम अपने जीवन को संवार सकते हैं और शिक्षा के माध्यम से ही हम तमाम उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। अभी हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। इस परीक्षा में हर वर्ष की तरह इस बार भी लाखों विद्यार्थियों ने मेहनत और लगन से परीक्षा दी और अच्छे अंक प्राप्त किए। कई विद्यार्थियों ने अपने परिवार, विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन किया। तो आज के कार्यक्रम में सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अर्थात CBSE इंटरमीडिएट परीक्षा में जनपद बिजनौर में तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली होनहार छात्रा सिमरन कौर से।
1: मेरा नाम सिमरन कौर है। मैंने कक्षा 12वीं में 96.2 अंक प्राप्त किए हैं। मैंने अपने पूरे जिले में तीसरा स्थान प्राप्त किया है और अपने सिटी में मेरा पहला स्थान रहा है।
2: तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई है इस चीज के लिए।
1: जी धन्यवाद।
2: 12th क्लास का एक अलग प्रेशर होता है, तो आपने साल की शुरुआत से ही अपनी पढ़ाई का क्या शेड्यूल बनाया था?
1: मेरे स्कूल में मेरे को ह्यूमैनिटीज के सारे सब्जेक्ट दिलाए और क्योंकि उन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी बहुत था और मैं अप्रैल 1 से मैंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ाई करी है। मेरे को टीचर्स ने मोटिवेट किया है, मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया है।
2: CBSE बोर्ड में अच्छे नंबर लाने के लिए क्या आपने सिर्फ NCERT बुक्स पर ही फोकस किया या अलग से कोई नोट्स या ऑनलाइन रिसोर्सेज की मदद ली थी आपने?
1: सर मैंने प्राइमरी फोकस मेन अपना NCERT की बुक्स पर ही रखा क्योंकि वो मेन प्रेस्क्राइब बुक्स रहती है CBSE की तरफ से, उन्हीं के टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। मेरे स्कूल में बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन दिए जाते हैं CBSE के, वो ही मैं किए हैं।
2: तो पढ़ाई के दौरान जब कभी मन थक जाता था तो खुद को रिफ्रेश करने के लिए आप क्या करते थे?
1: सर मेरा इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा पब्लिक स्पीकिंग में, मैं मुझको बोलना बहुत पसंद है, तो मैं शीशे के सामने खड़ी हो जाती थी और कुछ भी बोलती रहती थी और इससे मैं बहुत ज्यादा मुझे बहुत मजा आता था, गाने सुनती थी मैं।
2: तो आपका नाम डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स की लिस्ट में है, तो इस सफलता की जर्नी में आप सबसे बड़ा योगदान किसका मानती हैं?
1: मैं सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान मानती हूँ तो वो है मेरा स्कूल, जिसने मेरे को इतनी सारी चीजें दी, सारा एनवायरनमेंट जो उन्होंने दिया, वो आई डोंट थिंक कि कभी भी कोई भी स्कूल इतना किसी भी इंसान के लिए कर सकता है। आपको लाइफ टाइम कोई गाइड करने वाला होना चाहिए, आपको बताने वाला होना चाहिए कि अभी आप गलत जा रहे हो, ये मत करो वो मत करो, तो ये सब कुछ मेरे स्कूल ने किया है। और दूसरी मेरी मम्मी, जब भी मैं कुछ उल्टा सीधा कर रही होती तो वो मेरे को बोल रही होती थी कि नहीं ये नहीं करना, मेरे दादाजी, मेरे पापा, तो यही सब।
2: जो आपके जूनियर्स हैं जिन्हें अगले साल 12th की परीक्षा देनी है, तो आप उन सबको क्या गोल्डन टिप देना चाहेंगे जिससे वो आगे जाकर उन्हें हेल्प मिले और वो भी अच्छे नंबर ला पाए?
1: मैं उनसे यही बोलूंगी कि पूरे साल बहुत मेहनत करनी है, NCERT की बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस दोनों का मिक्सचर लेके पढ़ाई करनी है और मेन फोकस हमारा सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए और साथ साथ में अलग अलग एग्जाम्स की भी तैयारी करनी चाहिए जिससे आपका फ्यूचर

0: बनता रहे।
1: दोस्तों, किसी भी परीक्षा में बच्चे अपनी मेहनत और लगन से अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, वहीं उनकी इस सफलता में उनके अभिभावकों, शिक्षकों और विद्यालय परिवार की भी अहम भूमिका होती है। हमने बातचीत की मूलचंद एकेडमी नजीबाबाद के प्रबंधक श्री अनिल चौहान जी से।
2: सर, आपके स्कूल के छात्रों ने पूरे नगर और डिस्ट्रिक्ट में अपना नाम रोशन करा है, एक मैनेजर के तौर पर इस बड़ी उपलब्धि पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है?
3: हम सब लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि एक प्लानिंग पर वर्क किया गया, उसका रिजल्ट हमें क्लास 10th में सिटी टॉपर में बच्चा मिला, जिसका नाम अल्फिना नाज है, वो 97% पर है। और क्लास 12th में 10 टॉपर्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक बच्ची हमारे स्कूल की आई है, सिमरन कौर, 96.2% पर है। इन्होंने ये लेवल अचीव किया है।
2: आप किस तरह के विजन और प्लानिंग के साथ काम करते हैं?
3: विजन हमारा ये रहता है कि हमारा बच्चा डिस्ट्रिक्ट टॉपर पर रहे और CBSE टॉपर आए। प्लानिंग हमारी ये रहती है कि हम अपनी पूरी टीम को बच्चों के साथ लेके चलते हैं। हमारे बच्चे भी हमारा साथ देते हैं, पेरेंट्स भी हमारा साथ देते हैं, और ये एक टीम वर्क है। इस टीम वर्क की वजह से भी और मैनेजमेंट की गाइडेंस की वजह से भी ये लेवल बच्चे अचीव कर लेते हैं।
2: फैकल्टी को अपडेट रखने और उन्हें बेस्ट माहौल देने के लिए मैनेजमेंट क्या कदम उठाता है?
3: CBSE बोर्ड की साइड से नए नए सर्कुलर्स आते रहते हैं, उन सर्कुलर्स को लेके हम टीचर के साथ शेयर करते हैं, उनको अपडेट करते रहते हैं।
1: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा में भी छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर अच्छे अंक प्राप्त किए और अपना और अपने विद्यालय का नाम रोशन किया। इसी कड़ी में MDS इंटर कॉलेज नजीबाबाद में छात्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। छात्र सम्मान समारोह में हमारी मुलाकात हुई विद्यालय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्रों से।
4: आपका नाम?
5: मेरा नाम दीपक कुमार प्रजापति है। मेरे 12th क्लास में साइंस स्ट्रीम में 85.6% आई है।
4: तो 12वीं का जो बोर्ड है वो करियर का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है, इस सफलता के बाद आपको कैसा लग रहा है?
5: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है रिजल्ट देख के, और जिस फील्ड में मैं जाता हूँ उसके लिए नंबर काफी अच्छा है मेरे।
4: 10वीं के मुकाबले 12वीं का सिलेबस काफी बड़ा होता है, तो आपने टाइम मैनेज कैसे किया?
5: मैं दिन में लगभग 6 से 7 घंटे पढ़ता था, और इसमें मैथ, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को ज्यादा ध्यान देता था। इन पे 10th क्लास की अपेक्षा इसमें ज्यादा मेहनत किया है।
4: जी, आपने मेहनत की है तभी आपको ये सफलता मिली है। पढ़ाई के दौरान कंसिस्टेंसी बनाए रखना कितना मुश्किल था आपके लिए?
5: मैं इसमें डेली पढ़ता था, 6 से 7 घंटे रोज पढ़ता था इसमें। मैं जो मेरे डेली के गोल थे वो मैंने पूरे किए हैं।
4: तो बोर्ड एग्जाम के दौरान क्या आपने खेल कूद और आपकी जो हॉबीज हैं उनको छोड़ दिया था, या आपने इन दोनों में बैलेंस बनाए रखा, पढ़ाई और हॉबीज में?
5: नहीं, मैंने दोनों में बैलेंस बनाए रखा था।
4: तो अब आपकी स्कूल लाइफ खत्म हो रही है और कॉलेज लाइफ शुरू होगी, तो इस बदलाव को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं?
5: जी, मैं अपनी स्कूल लाइफ को मिस करूंगा, लेकिन अपने करियर के लिए थोड़ी सी टेंशन होगी और उसके लिए अपना बेस्ट करने की कोशिश करूंगा।
4: थैंक यू। क्या नाम है आपका?
6: मेरा नाम आशु राजपूत। मेरी 10th के बोर्ड में 87.83% आई थी।
4: तो ये बताइए हमें कि घर में और रिश्तेदारों में इस समय कैसा माहौल है?
6: खुशी का ही माहौल है, रिजल्ट अच्छा आया है।
4: इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपने साल की शुरुआत से ही कोई खास प्लानिंग की थी?
6: जुलाई के माह से पढ़ना स्टार्ट किया था।
4: तो क्या आप एग्जाम के लिए खुद के नोट्स बनाते थे या कोई कोचिंग, मतलब आपने कोई ऑनलाइन वगैरह से मदद ली?
6: नहीं, मैंने ऑफलाइन ही अपनी पढ़ाई की और स्कूल के टीचर्स से जो प्रॉब्लम आती थी उसके बारे में पूछ लेता था ऑनलाइन।
4: तो इस सफलता का श्रेय आप सबसे ज्यादा किसे देना चाहेंगे?
6: अपने टीचर्स।
4: भविष्य को लेकर आपकी क्या प्लानिंग है? आगे चलकर आप किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं?
6: इंजीनियरिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता हूँ।
1: इस अवसर पर MDS इंटर कॉलेज नजीबाबाद के प्रधानाचार्य श्री अनुपम माहेश्वरी ने बताया,
7: वर्तमान समय में मेरे विद्यालय का हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों ही वर्गों में 100% रिजल्ट रहा है, और ये रिजल्ट जब से विद्यालय की स्थापना हुई है तब से लगातार बना हुआ है।
4: तो इस सफलता के पीछे आपके स्कूल के टीचर्स और स्टाफ की क्या रणनीति रही है?
7: हमें इस साल अपने जो टॉपर्स बच्चे थे उनको पहले अलग छांटा, और उन बच्चों को स्कूल टाइम से अलावा सुबह और शाम उनकी एक्स्ट्रा कोचिंग जो मेरे टीचर्स थे उनके द्वारा कराई गई, और उसका एक सुखद परिणाम ये प्राप्त हुआ कि जो टॉपर्स बच्चों की विद्यालय की 10 की लिस्ट मेरे द्वारा बनाई गई उसमें से 8 बच्चे वे हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा क्लास ज्वाइन की थी।
4: परीक्षा के तनाव से बच्चों को दूर रखने के लिए स्कूल ने साल भर किस तरह के प्रयास किए?
7: साल भर तक बच्चों के साथ हमने एक अच्छे माता पिता के तरह से एक अच्छे मित्र के रूप में उससे व्यवहार किया।
4: तो आज के दौर में पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कितनी जरूरी है?
7: निश्चित रूप से मात्र केवल एक पढ़ाई से ही बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता, यह तो उसके साथ वो खेल कूद और जो नई नई टेक्नोलॉजी इस समय डेवलप हो रही है, यदि उसका ज्ञान नहीं करेगा तो केवल पढ़ाई से ही वो किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाएगा। छात्र के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि वो पढ़ाई के साथ साथ अपनी जो और एक्टिविटीज हैं उनमें भी योगदान करे, और यही कारण है कि हमारे यहाँ से खेल कूद में बच्चे इस वर्ष राज्य स्तर तक पुरस्कार प्राप्त करके आए हैं।
4: आपके स्कूल के जो बच्चे आज सम्मानित हुए हैं उनके लिए आपकी तरफ से कोई खास संदेश?
7: निश्चित रूप से जो बच्चे

0: हुए, ये एक टोकन गिफ्ट है। हम एक अच्छे बच्चे को केवल प्रोत्साहन के लिए ये उनको पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं ताकि वो अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ सकें।
1: और अब मिलते हैं विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर अतुल बहादुर सक्सेना से।
2: आज इन होनहार बच्चों को सम्मानित होता देख के आपको कैसा लग रहा है?
3: बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोगों को कोशिश है हमारी कि जो हमारे बच्चे अच्छा करें, वो प्रोत्साहित हों और आगे उनको बढ़ने का जज्बा बने, और जो और बच्चे जो पीछे रह जाते हैं उनमें ये कॉम्पिटिशन का वो रहे कि हमको भी ऐसे करना है।
2: तो आकाशवाणी के माध्यम से आप इन बच्चों को इस शानदार सफलता पर क्या कहना चाहें?
3: मैं यह चाहता हूँ कि सारे मेरे बच्चे जो स्कूल के हैं सब इसी तरह से अच्छा करें, जिससे कि आगे चल के उन लोगों को अच्छे करियर में अच्छी लाइफ बनाने का मौका मिले।
1: दोस्तों, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो अपेक्षित अंक प्राप्त नहीं कर सके होंगे। ऐसे विद्यार्थियों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। असफलता हमें आगे अच्छा करने की प्रेरणा देती है। आवश्यक है कि विद्यार्थी अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार ही आगे की पढ़ाई और करियर का चयन करें। याद रखिए, मेहनत, सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास ही सफलता की असली कुंजी है। इसी के साथ आज का बात आसपास की कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। मुझे अर्थात धीरेन्द्र धारीवाल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे बात आसपास की। संकलन और वाचन स्वर था धीरेंद्र धारीवाल का। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 10 बजे हैं श्रोताओं। लीजिए प्रस्तुत है भारत में रेडियो प्रसारण के सफल 90 वर्षों के उपलक्ष्य में हमारा विशेष कार्यक्रम सुहाना सफर।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम सुहाना सफर लेकर हाजिर हूँ मैं फैजुर रहमान, और कार्यक्रम में आज मेरे साथ हैं हमारी रेडियो साथी
1: नेहा शर्मा। श्रोताओं, आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोताओं, आज के सुहाना सफर के इस अंक में हम आपसे करेंगे वर्ष 2019 के रेडियो सफर के बारे में और जानकारियां साझा करेंगे आपसे कुछ ऐसी प्रमुख घटनाएं जो उस वक्त छाई रही रेडियो प्रसारण से, उन पर भी चर्चा होगी।
1: जी बिल्कुल फैजुर रहमान जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आकाशवाणी के माध्यम से हमारे श्रोता हमसे जुड़ते हैं अपने ज्ञानवर्धन के लिए, अपने मनोरंजन के लिए और अपनी सुनहरी यादों को सहेजने के लिए।
0: जी नेहा जी, आपने हमारे जो श्रोता हैं वो आकाशवाणी से जुड़ते हैं और अक्सर देखते ही हैं कि चाहे वो पत्रों का सिलसिला हो या व्हाट्सएप मैसेज की बात हो या फोन कॉल की बात हो, सब में हमारे श्रोता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं।
1: वाकई ये बहुत ही सुखद अनुभव है हमारे लिए फैजुर रहमान जी, क्योंकि शुरुआत हमने इस कार्यक्रम की थी साल 1951 से
0: जी,
1: और देखिए चलते चलते चलते चलते
0: आज हम आ पहुंचे हैं 2019
1: तक
0: आ पहुंचा। जी तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं नेहा जी, और वर्ष 2019 के रेडियो सफर की जब बात चलेगी तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो उस वक्त छाई रही रेडियो प्रसारण से, तो उन घटनाओं को, उन राजनीतिक बातों को, उन इतिहास की बातों को हम जो है याद करेंगे। तो सबसे पहले नेहा जी, मैं आपको बता दूं कि 2019 में भारतीय राजनीति के इतिहास में सबसे परिवर्तनकारी वर्षों में से एक था, जिसमें लोकसभा में प्रचंड राष्ट्रीय जो है लोकसभा में जो प्रचंड बहुमत आया था, एक बड़ी बात थी, और राष्ट्रीय सुरक्षा से जो जुड़े हुए मुद्दे थे उन पर भी बहुत सारे जो है विचार किए जा रहे थे, ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे थे और अदालती फैसलों का भी ये साल था।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल श्रोताओं, 2019 के अप्रैल मई में हुए 17वें आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन ने 353 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिसमें अकेले बीजेपी ने 303 सीटें हासिल

0: की थी।
1: जी श्रोताओ, 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान अनुच्छेद 370 और 35A को निष्प्रभावी कर दिया। इसके साथ ही राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इसे विभाजित किया गया।
0: बिल्कुल। और श्रोताओं, 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। इसके जवाब में 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना आईएएफ ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी।
1: बिल्कुल नेहा जी, कार्यक्रम में बहुत सारी ये जानकारियां हमने अपने श्रोताओं से साझा कर ली हैं, और वक्त हो चला है कि हम एक जो है म्यूजिकल ब्रेक ले लें।
0: जी हाँ बिल्कुल, हमारे वीर सैनिकों की शौर्य गाथा की हमने बात ही की, तो चलिए देशभक्ति से ओतप्रोत ही एक गीत अपने श्रोताओं को सुनवा देते हैं, फिल्म मणिकर्णिका से। और श्रोताओं, इस गीत को आवाज दी है शंकर महादेवन ने।
2: देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए।

सौगंध भारत, भूलू ना एक क्षण तुझे। है मुझे सौगंध भारत, भूलू ना एक क्षण तुझे। रक्त की हर बूंद तेरी है, तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए।

0: श्रोताओं, गीत के बाद आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है श्रोताओं आपका कार्यक्रम सुहाना सफर में, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं साल 2019 की। श्रोताओं, 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दशकों पुराने अयोध्या श्री राम जन्मभूमि वर्सेस बाबरी मस्जिद विवाद पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। कोर्ट ने विवादित स्थल को श्री रामलला को सौंपने और मस्जिद निर्माण के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था।
0: श्रोताओं, अगस्त 2019 में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक पारित हुआ, जिसने एक बार फिर से जो है 3 तलाक के जो मुद्दे को उठाया और इसे गैर कानूनी बताया और दंडनीय अपराध घोषित कर दिया।
1: जी हाँ, बात जनवरी की करें श्रोताओं, जनवरी में सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सरकारी नौकरियां और उच्च शिक्षण संस्थानों में 10% का आरक्षण देने का प्रावधान भी लागू किया था।
0: श्रोताओं, लोकसभा चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद सोनिया गांधी को पार्टी का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया।
1: और साथियों, इन सभी घटनाओं को आकाशवाणी के सभी केंद्रों से जन जन तक पहुंचाया गया।
0: नेहा जी, बिल्कुल, रेडियो अपने श्रोताओं तक पहुंचाता है हर खबर सबसे पहले। और अब हम श्रोताओं तक पहुंचाते हैं एक और गीत, साल 2019 में प्रदर्शित फिल्म कलंक का ये गीत है और आवाजें हैं शिल्पा राव और अरिजीत की। प्रीतम का संगीत है, गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य।
1: आइए श्रोताओं, सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत और गीत के बाद एक बार फिर आपसे रूबरू होंगे साल 2019 की अन्य घटनाओं के साथ।

0: श्रोताओं, कलंक फिल्म का एक गीत आपने सुना अरिजीत और शिल्पा राव की आवाज़ में। और गीत के बाद चलिए रुक करते हैं 2019 साल की खेल की घटनाओं की ओर। श्रोताओं, 2019 में क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया गया था और ये विश्व कप का आयोजन इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित हुआ। विश्व कप राउंड रोबिन तकनीक से हुआ जिसमें सभी टीमों ने आपस में मैच खेले।
1: श्रोताओं, विश्व कप 2019 का आगाज 30 मई सन 2019 से शुरू होकर 14 जुलाई 2019 तक रहा। फाइनल मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया और क्रिकेट जगत का ये मैच यादगार मैच रहा। दोनों टीमें समान स्कोर पर ऑल आउट हुई जिससे कोई विजेता न बनता देख दोनों टीमों को सुपर ओवर दिया गया।
0: और श्रोताओं, सुपर ओवर में भी दोनों टीम समान रन बना पाई जिससे पुनः मैच विजेता का ऐलान नहीं हो सका। अंत में ये फैसला रहा कि जिस टीम ने सबसे ज्यादा बाउंड्रीज लगाई हैं वो विजेता बनेगा, अतः इंग्लैंड को विजेता बनाया गया।
1: श्रोताओं, 2019 के अर्जुन पुरस्कारों की बात करें तो रविंद्र जडेजा और पूनम यादव को क्रिकेट के लिए ये पुरस्कार दिया गया।
0: और 2019 में पहलवान बजरंग पुनिया को और पैरा एथलीट दीपा मलिक को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया था।
1: श्रोताओं, 2019 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जो उत्कृष्ट कोच को दिया जाता है विमल कुमार को बैडमिंटन के लिए, संदीप गुप्ता को टेबल टेनिस के लिए और मोहिंदर सिंह ढिल्लो को एथलेटिक्स के लिए दिया गया।
0: और श्रोताओं, रेडियो ने इन सभी जानकारियों को जन जन तक पहुंचाया। तो फैजुर रहमान जी, आइए अब एक बार फिर अपने श्रोताओं तक पहुंचा देते हैं एक खूबसूरत सा गीत और सुनवाते हैं फिल्म साहो से ये गीत। गुरु रंधावा की आवाज में है और इनका साथ दे रही हैं तुलसी कुमार।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे 2019 में आई फिल्म साहो का ये गीत गुरु रंधावा और तुलसी कुमार की आवाज़ों में। और बहुत बहुत फिर से एक बार आपका स्वागत है श्रोताओ गीत के बाद। और अब वक्त है थोड़ा साहित्य जगत के क्षेत्र के बारे में जानने का, तो चलिए साहित्य के क्षेत्र की ओर। और श्रोताओ, साहित्य अकादमी पुरस्कार साल 1955 से दिए जा रहे हैं, जिसमें एक ताम्रपत्र के साथ साथ नगद राशि भी दी जाती है। साल 2019 का ये साहित्य अकादमी पुरस्कार नंद किशोर आचार्य जी को उनकी कविता छीलते हुए अपनों को, इस शीर्षक से इन्होंने जो है कविता लिखी थी, इस कविता को ये पुरस्कार दिया गया।
1: जी हाँ, और फैजुर रहमान जी, विज्ञान जगत में भी साल 2019 का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। आपको बता दें कि अप्रैल 2019 में इवेंट होरिजन टेलीस्कोप की मदद से वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में पहली बार ब्लैक होल की परछाई और उसकी अद्भुत छवि दुनिया के सामने रखी थी।
0: जी, और नेहा जी, श्रोताओं को बता दें कि गूगल ने क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में इतिहास रचते हुए साइकोमोर प्रोसेसर बनाया। ये साल 2019 की घटना है।
1: जी जी।
0: इसने दुनिया के सबसे उन्नत सुपर कंप्यूटरों

0: द्वारा जो सालों में की जाने वाली गणनाएं थी वो कुछ ही मिनटों में पूरी कर दी। तो ये बड़ी बात रही क्योंकि वैज्ञानिक गतिविधियां रही हैं।
1: ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि जो है वो 2019 में।
0: नेहा जी, वर्ष बीतते जा रहे हैं तो नए नए ऐसे आविष्कार हम लोगों के सामने आ रहे हैं,
1: आते जा
0: चाहे
1: रहे हैं।
0: वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो,
1: विज्ञान
0: तो
1: के क्षेत्र में,
0: बाकी दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है। और खास तौर से हम देखते हैं जैसे अब हमारा रेडियो भी लोगों के मोबाइल तक पहुंच गया है और लोग अब न्यूज ऑन एयर से, क्योंकि मुझे कई बार जब श्रोताओं की कॉल आती है बोलते हैं कि बहुत साफ आवाज में अब हम सुन पाते हैं।
1: जी हाँ, बिल्कुल
0: तो
1: क्लियर
0: है ना, तो रेडियो का जो प्रसारण है वो न्यूज ऑन एयर पे आ चुका है, सभी जितने भी केंद्र हैं वो सब हमारे श्रोता सुन पाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है ना।
1: जी हाँ, और रेडियो का जो महत्व है वो इसीलिए कम भी नहीं हुआ आज तक फैजुर रहमान जी, क्योंकि चाहे वो सूचना की बात हो, चाहे वो ज्ञान विज्ञान की बात हो, चाहे वो मनोरंजन की बात हो, गीत संगीत हो या लोकगीत हो, रागिनी हो या कृषि से जुड़ी कोई जानकारी हो, हमारा आकाशवाणी, हमारा रेडियो हमेशा की तरह 90 वर्षों से अनवरत अपनी ये जानकारियां अपने
0: श्रोताओं तक
1: पहुंचा रहा है।
0: जो है ना नेहा जी, वो यही है कि बीच बीच में ज्ञानवर्धक कार्यक्रम होते रहते हैं और फिर मनोरंजन भी होता
1: बीच बीच में
0: है ना,
1: मनोरंजन भी, तो देखिए जैसे
0: कि जानकारी भी मिल रही है और मनोरंजन भी हो रहा है ना।
1: जी हाँ,
0: तो
1: जैसे अभी हम बात कर रहे हैं जानकारियों की और बीच बीच में सुनवा रहे हैं कोई गीत, तो क्या कहते हैं,
0: बहुत बहुत बिल्कुल। अब क्योंकि वक्त भी हमारा ऐसा हो रहा है कि आने वाले जो हमारे 5 मिनट है कार्यक्रम के, तो वो श्रोताओं को एक और गीत हम सुनवा दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा।
1: जी हाँ बिल्कुल, आइए श्रोताओं सुनते हैं फिल्म वॉर का ये गीत।
0: जी
1: अरिजीत सिंह की आवाज में ये गीत है और संगीत है विशाल शेखर का और गीत के बोल लिखे हैं कुमार ने।

0: गीत के बाद श्रोताओं, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। हमें उम्मीद है आपको आज का सुहाना सफर पसंद आया होगा।
1: बिल्कुल, तो श्रोताओं कल के सुहाने सफर के अंक में आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी नजीबाबाद। तो श्रोताओं, मुझे यानी नेहा शर्मा और
0: मुझे यानी फैजुर रहमान को दीजिए इजाजत। श्रोताओं
1: नमस्कार।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे भारत में रेडियो प्रसारण के सफल 90 वर्षों के उपलक्ष्य में हमारा विशेष कार्यक्रम सुहाना सफर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। दिन के 10:30 हुए हैं श्रोताओं। लीजिए प्रस्तुत है आप ही के व्हाट्सएप मैसेज और पत्रों पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे।
1: कार्यक्रम गीत तुम्हारे सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। और कार्यक्रम में आज हम लोग हैं आपके साथ फैजुर रहमान और
0: मैं हूं नेहा शर्मा।
1: श्रोताओं, आपके मैसेज हमें लगातार प्राप्त हो रहे हैं और ये पहला मैसेज हमें मिला है।
0: फैजुर रहमान जी, पहला मैसेज पढ़ने से पहले एक बार अपने नए श्रोताओं को बता दें हमारा नंबर, अगर आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं अपनी फरमाइश के गीत, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हमें व्हाट्सएप करने के लिए हमारा नंबर आपको पता ही है, चलिए फिर एक बार फिर बता देते हैं
1: जी।
0: हमारा नंबर है 9457078288। नंबर श्रोताओं एक बार और बता देते हैं, 9457078288। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और जैसा फैजुर रहमान सर ने बताया कि हमारे जो श्रोता हैं, जो रेगुलर लिसनर हैं, उन्होंने अपना प्यार अपने मैसेज के माध्यम से भेज दिया है।
1: स्क्रीन एकदम स्क्रॉल होती है।
0: हाँ जी। और कितनी जल्दी कितनी तेजी के साथ ये मैसेज हमारे पास आ रहे हैं, तो शुरुआत करते हैं,
1: जल्दी से पढ़ते हैं। सेक्टर 18 जगह धरी, जिला यमुनानगर, हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हैं विनय मोहन खार, मीनाक्षी पलोमा और डॉक्टर ईशानी। ये मैसेज हमारे पास आया है नेहा जी।
0: जी जी, ये मैसेज हमें मिला है चक्कू छुरिया तेज करा ले गीत के लिए। ये गीत भी हम अपने श्रोताओं को कोशिश करेंगे सुनवाने की। यह है ग्राम पजौनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से लिख रहे हैं सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसोलिया
1: जी। और राजेश वर्मा, वंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा हमें मैसेज भेज रहे हैं लाल कुर्ती रुड़की कैंट से। ये मैसेज हमें मिला है दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणान मेहरा का। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत, लाल माता, सुदामानगर, रटलाई, जिला झालावाड़ राजस्थान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हर्षिता, रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी, कान्हा और श्रीमती मनोहर बाई बागरी।
0: और अगला मैसेज हमें मिला है भोपालगढ़ राजस्थान से, लिखने वाले हैं धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार। इन्होंने जो है खलनायक फिल्म के गीत की फरमाइश हमारे पास लिखकर भेजी है। और एक और मैसेज हमें इसी गीत की फरमाइश के साथ मिला है, ये लिखने वाले हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदरानी और हिना कौसर
1: जी। तो आइए सुनते हैं इन सब की पसंद पर फिल्म खलनायक का ये गीत, मनर उदास और अलका याग्निक की आवाज़ें हैं।

0: श्रोताओं, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आप ही के कार्यक्रम गीत तुम्हारे में।
1: और नेहा जी, ये स्क्रीन पर मैसेज आया है, आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अराफात अदीब और कादिर चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं शाही मार्केट सिवहारा जिला बिजनौर से।
0: जी हाँ, और ये अगला मैसेज हमें मिला है
1: ये मैसेज है हमारे पास जी।
0: जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से। मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना और सुदामा नगर खंडवा से हैं लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप।
1: मेन रोड तेलहारा से हैं प्रकाश पोहारकर, नर्मदा पोहारकर और कुमारी सुजाता पोहारकर।
0: एक और मैसेज हमें मिला है, ये है अडार नांद घाट छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले हैं माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश, दीपेश और इनका पूरा परिवार। वडिंगखेड़ा पंजाब से हैं मिंटू थॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा। दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा।
1: ये मैसेज हमारे पास आया है नेहरू चौक पैठण से हैं डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती, पूजा, प्रसाद जाधव, सोनल जाधव और बेबी सिया जाधव।
0: एक और मैसेज हमें मिला है करूला मुरादाबाद से। लिख रहे हैं अयूब खान, ईरम गुड़िया, शोएब खान और सिंधोली मीरगंज बरेली से हैं जीशान वारसी। सहारनपुर से हैं सुरेश नारंग, आशा नारंग और सोनाली नारंग।
1: जी, ये मैसेज हमारे पास आया है शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से हैं आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी।
0: योगेंद्र नायक, श्रीमती गीता नायक, निहारिका नायक, सुशांत नायक और इनके दोस्त हैं सुरेश चौरसिया, हमें मैसेज लिख रहे हैं जिला कासगंज यूपी से।
1: संगमित्रा श्रोता संघ वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला यवतमाल से हैं जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार सिंगड़कर और अर्पिता जी।
0: तो चलिए श्रोताओं, आप सभी की फरमाइश पर आपको सुनवा देते हैं जंजीर फिल्म का एक गीत आशा भोसले की आवाज में। और इस गीत की फरमाइश हमारे जो शुरुआत वाले लिसनर
1: जी
0: थे
1: श्रोता
0: उन्होंने
1: जी,
0: भी की थी।
1: जी
0: आइए
1: तो
0: श्रोताओं, एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सा गीत।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम है गीत तुम्हारे और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से।
1: और श्रोताओं, आपके ढेर सारे मैसेजेस हमें लगातार मिल रहे हैं। ये मैसेज है आकोट से विनायक बेंडे।

0: अगला मैसेज हमें मिला है उत्तम नगर दिल्ली से, कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश का। एक और मैसेज हमें मिला है, ये
1: जी, ये मैसेज है
0: मैसेज,
1: हमारे पास
0: जी हाँ
1: जी नेहा जी, ये मैसेज आया है निज़ामाबाद तेलंगाना से, M.A. वहीद रोमानी, डॉक्टर मोहम्मद ज़मीर, मोहम्मद फ़सी, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद ज़ुबैर, मुकर्रम, नोमान, फुरकान और ज़ाकिर फ़ाज़िल, ये सब हमारे साथ जुड़े हैं तेलंगाना से। एक और मैसेज हमारे पास है नेहा जी।
0: खेल बाजार पानीपत से हैं नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी, नाना चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुगू भावी सिक्का।
1: जी, और नेहा जी ये एक और मैसेज है।
0: जी हाँ, ये हमारे लिसनर हैं नगीना से, अनिल विनोचा, शम्मी विनोचा, अक्षय विनोचा, कनिका सहेज और गीता गीत अरोड़ा,
1: जी
0: जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया, रेनू, दिव्यांश, आराधना, रोनिका भी हमारे साथ मैसेज के माध्यम से जुड़े हैं।
1: जी लछनपुर छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं विश्वनाथ, पंकज और तिरुपति।
0: अगला मैसेज हमें मिला है देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डोली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर का कीकीर मेटा, बेलहाटी पाटन दुर्ग से।
1: संतोष शर्मा और रुक्मणी शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। तो
0: तो
1: इन सब श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं नेहा जी।
0: जी हाँ, आइए सुनते हैं फिल्म राजा हिंदुस्तानी का ये गीत अलका याग्निक की आवाज में।

0: राजा हिंदुस्तानी का ये गीत हमारे श्रोताओं ने सुना और अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म फना का ये गीत। सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज़ में ये गीत है श्रोताओं, और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है धनोरी तेलीवाला से, निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू की।
1: जी, संबलपुर कांकेर से हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
0: और इसी गीत की फरमाइश के साथ हमारे पास मैसेज आया है दारा पंडित संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा का, चौटाला हरियाणा से।
1: जी, डिस्ट्रिक्ट रामपुर विलेज सूरजपुर से जो है ये हमें मैसेज कर रहे हैं नाजिया और फैसल रजा।
0: एक और मैसेज हमारे पास आया है सोनू निगम की आवाज़ में, इन्होंने किसी गीत की फरमाइश हमारे पास भेजी है। ये लिखने वाले हैं, इन्होंने अपना नाम मेंशन नहीं किया है, बस हमारा ही नाम लिखकर भेज दिया है और गीत अपना।
1: रजाक मोहम्मद, शमीमा बेगम और इमरान खान, इरफान खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजस्थान से।
0: और अगला मैसेज हमें मिला है, ये मैसेज हमारे पास आया है ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से, रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांश विश्वकर्मा का। तो आइए श्रोताओं, आप सभी को सुनवाते हैं आप ही की पसंद पर फना फिल्म का एक गीत, जिसको आवाज़ दी है सोनू निगम और सुनिधि चौहान ने।

0: रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।
1: श्रोताओं, फना फिल्म के इसी गीत के साथ आज का कार्यक्रम गीत तुम्हारे अब यहीं पर संपन्न होता है।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: अभी आप श्रोताओं के व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत तुम्हारे सुन रहे थे। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का ये पहला गीत हमने लिया है फिल्म प्रेम गीत से। जगजीत सिंह की आवाज़ है और संगीत है। गीत लिखा है इंदीवर ने।

0: चित्रपट संगीत में अभी आपने सुना फिल्म प्रेम गीत का ये नगमा, जगजीत सिंह की आवाज़ थी। इंदीवर के गीत को संगीत से सजाया था जगजीत सिंह ने।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं एक और गीत, फिल्म मासूम से। लता मंगेशकर की आवाज़ है, आरडी बर्मन का संगीत है, गीत के बोल लिखे हैं गुलजार ने।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम चित्रपट संगीत में श्रोताओं अभी आपने सुना फिल्म मासूम का ये गीत। लता मंगेशकर की आवाज़ थी, आर डी बर्मन का संगीत था, गीतकार थे गुलजार। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में फिल्म उमराव जान का ये गीत। आशा भोसले की आवाज़ है, खय्याम का संगीत है। इस गीत को लिखा है सहर यार ने।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत जारी है आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। कार्यक्रम का ये गीत हमने लिया है फिल्म कयामत से कयामत तक से। अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजें हैं, आनंद मिलन का संगीत है, गीत के बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और उदित नारायण को। फिल्म थी कयामत से कयामत तक। इस गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया था आनंद मिलिंद ने। कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, आइए अब सुनते हैं फिल्म रामलखन से। मोहम्मद अजीज, अनुराधा पौडवाल,

फिल्म राम लखन के इसी गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं संपन्न होता है।

अभी आप फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत सुन रहे थे। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं NCERT और श्रोताओं कार्यक्रम का आज आप सुनेंगे एपिसोड 1286।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
1: और आपके मित्र अजीत का भी नमस्कार और जोहार।
2: बिना संघर्ष के सफलता बिना नमक के भोजन की तरह होती है। इससे हमारी भूख तो मिट जाएगी लेकिन ये स्वादिष्ट नहीं लगेगी।
1: श्रोताओं, ये सुंदर विचार हमें भेजा था बिहार से वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने। बिल्कुल सच कहा है, बिना श्रम के सफलता का सच्चा आनंद नहीं मिलता
2: जी।
1: आप दोनों का धन्यवाद। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
1: और भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का संदेश हमें मिला है। लिखते हैं,
2: गुरुवार 23 अप्रैल को सुविचार को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए आपने जानकारी देते हुए एक दोहा का उदाहरण दिया। इस दोहे में कबीरदास जी विश्वास को न तोड़ने की सीख देते हैं। दोहा इस तरह से था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुरे, जुरे गांठ परे जाए।
1: आपने आगे लिखा है, आपके द्वारा इस दोहे के रचनाकार कवि का नाम कबीरदास बताया गया। वास्तव में इस दोहे को रहीम ने लिखा है, न कि कबीरदास जी ने। धन्यवाद और आभार।
2: आपका भी बहुत बहुत आभार। कृष्ण कुमार जी, आपको भी हमारा विशेष धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रमों को बड़ी बारीकी से सुनते हैं और उन पर प्रतिक्रिया भी देते हैं।
1: तो हम कहना चाहते हैं कि आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है हमेशा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया संदेश भेजते रहिए। अगला संदेश सुनते हैं जो हमें मिला है।
2: गाँव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
1: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी।
1: और बेगूसराय बिहार से हमें संदेश मिला है इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा का। लिखते हैं,
2: आज की प्रस्तुति कल्पना चावला जो सितारों में खो गई हमें बहुत अच्छी लगी। आपको साधुवाद।
1: और आप सबको हमारा हार्दिक आभार। आइए बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
2: इस प्रश्न का उत्तर है, नीली वेल को आकार में समुद्र का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। इसका वजन लगभग 100 से 150 टन का होता है, यानी किलोग्राम के अनुसार ये 1 लाख से 1.5 लाख किलोग्राम की होती है
1: जी। और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, थर्मल लैग किसे कहते हैं।
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। गर्मियों में सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है। सुबह से सूर्य के ताप के कारण धरती गर्म होती रहती है और 12 बजे सूर्य की किरणें धरातल पर सीधी पड़ती हैं
1: जी।
2: बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसीलिए उनका ताप कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान यानी 12 बजे के बाद भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है, जिसे थर्मल लैग कहते हैं।
1: और हमारा तीसरा प्रश्न था कि प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है।
2: इसका उत्तर है साथियों, प्रकृति जलवायु के अनुसार हर मौसम में वही उपज देती है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इसके अनेक उदाहरण हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि गर्मी के मौसम में जो फल आते हैं उनमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है ताकि हमें गर्मी के मौसम में इसका लाभ मिले।
1: और हमारा अगला प्रश्न श्रोताओं प्राथमिक उपचार से संबंधित था। हमारा प्रश्न था कि लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीले करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
2: तो साथियों इसका उत्तर भी जान लेते हैं। लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से सांस लेने में आसानी होती है और शरीर का रक्त संचार आसानी से हो पाता है।
1: और अब हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमारा प्रश्न था, बच्चे अपनी गर्मियों की छुट्टी में और क्या क्या कर सकते हैं।
2: इसके बहुत से उत्तर हो सकते हैं लेकिन हम कहेंगे, विद्यार्थी कोई भी शास्त्रीय नृत्य या वाद्य यंत्र सीख सकते हैं, जैसे हारमोनियम, तबला या बांसुरी।
1: जी विमरेश जी, ये सचमुच एक बड़ी अच्छी सलाह है। तो श्रोताओं अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है।
1: 8800440559 हमारा IVRS नंबर है और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमें भेज सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स।
2: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित ये कार्यक्रम बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे प्रकृति का ध्यान से अवलोकन करें और उसकी सुंदरता का अनुभव करें। कार्यक्रम एक सुंदर गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें एक बच्ची आकाश में बादलों को ध्यान से देखकर उनके विभिन्न आकारों में पशु पक्षियों की छवि की कल्पना करती है।
3: Hello children, how are you?
4: We are fine, sir.
5: I am fine.
6: I am good, sir.
3: Fine, good. Okay, so tell me, what do you like most?
5: I like playing, sir.
7: I like painting, sir.
3: Very good. Anyone else?
8: Sir, I like singing.
9: I like playing with my pets.
3: Oh, that's great. Now tell me, do you like looking at the beautiful flowers in the garden?
4: Yes, sir.
7: We like.
3: Lovely butterflies?
4: Yes, sir.
3: And lovely colorful chirping birds?
4: Yes, sir. We like it.
3: That's very nice, children.
7: Sir, I go to the park with my parents on holidays.
3: Okay. It's always wonderful to see the beautiful nature, isn't it?
4: Yes, sir.
3: The rivers, the mountains, and the green trees.
4: Yes, sir.
3: Okay, so let me tell you the story of a sweet child like you.
4: Like us?
3: Would you like to listen?
4: Yes, sir.
7: We love to listen the story.
3: To know what the child did, you have to listen to a beautiful poem. After listening to the poem, you will know what the child did. Okay?
4: Okay, sir.
3: Very good. Now I am going to read this poem. You have to repeat after me. Okay?
4: Okay, sir.
10: We love to recite it.
3: As I lie on my back, looking up at the sky,
4: looking up at the sky,
3: I see a big white bear.
4: I see a big white bear
3: looking down at me.
4: Looking down at me.
3: As I lie on my back,
4: as I lie on my back,
3: looking up at the sky,
4: looking up at the sky,
3: I see a ship sailing.

0: was brought to you by CIET NCERT, New Delhi, India. Kusum Lata, directed and produced by Ajit Horo. This program was brought to you by CIET NCERT, New Delhi, India.
1: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି
2: ଇନ୍ସାଇକ୍ଲୋପିଡିଆ ଅଫ୍ ଦ ଫରେଷ୍ଟ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଇନ୍ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ତୁଲସୀ ଗୌଡ଼ା
3: ଜଙ୍ଗଲ କି ଇନ୍ସାଇକ୍ଲୋପିଡିଆ କହି ଜାନେ ବାଲି ତୁଲସୀ ଗୌଡ଼ା
4: କୁ ଦେଶ କେ ଚୌଥେ ସବସେ ବଡେ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସେ ନଭାଜା ଗୟା ହୈ
5: ଯେ ଆକାଶବାଣୀ ହୈ प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। आज राष्ट्रपति भवन के एक भव्य समारोह में श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा सन 2020 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
6: श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण।
5: ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। देश भर में प्रसन्नता की लहर।
7: नवंबर 2020 को भारत सरकार ने श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है। राष्ट्रपति भवन के रेड कार्पेट पर नंगे पांव चलते हुए श्रीमती तुलसी गौड़ा पद्मश्री सम्मान लेने जब महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंची, तो सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति इस आदिवासी महिला को देखकर सभागार देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा।

0: उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र पर्वतों और सघन जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। पहाड़ों से उछलती कूदती नदियां जब घाटियों और समतल मैदानों से कल कल करती हुई गुजरती हैं, तो एक अनोखा नजारा पेश करती हैं।
1: इस सुरम्य वातावरण को और भी संगीतमय बना देता है पक्षियों का कलरव। इस क्षेत्र में अनेक जनजातियां रहती हैं। उनके जनजातीय संगीत और नृत्य तो मानो संपूर्ण सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। ये जनजातियां मुख्य रूप से खेतीबाड़ी और पशुपालन पर निर्भर हैं। यहाँ के आदिवासी विशेष रूप से नर्सरियों में बागबानी करके औषधीय पौधों को उगाने का कार्य करते हैं।
0: समृद्ध आदिवासी संस्कृति और प्रचुर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच तुलसी गौड़ा का जन्म 1944 में होनाली गांव के हलक्की आदिवासी परिवार में हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से नर्सरी में काम करना शुरू किया। निर्धनता के कारण कभी वो स्कूल नहीं जा पाई।
1: बड़ी हो जाने पर तुलसी ने अपनी माँ और बहनों के साथ गांव की ही एक सरकारी नर्सरी में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करना शुरू किया। पौधों से उनका बहुत लगाव था। तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
0: एक बार की बात है, उनके गांव की नर्सरी में वन विभाग द्वारा कुछ पौधे लाए गए। वो औषधीय पौधे थे और बहुत महंगे भी। वन विभाग की योजना थी बड़े पैमाने पर इन औषधीय पौधों की खेती करने की। पौधे रोप दिए गए लेकिन एक दो दिनों के बाद वो मुरझाने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें उन पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
1: कुछ ही दिनों में उन पौधों में जान सी आ गई और वो खूब हरे भरे होकर पनपने लगे। इस घटना से तुलसी का नाम स्थानीय वन विभाग में फैल गया और सबने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा

0: फैसला की। इस घटना को याद करते हुए वो बताती हैं,
1: उन दिनों मैं करीब 20 वर्ष की थी। पौधों के बारे में मेरा अनुभव बहुत नहीं था। मुझे उस नर्सरी में बुलाया गया था। वहां जाकर मैंने देखा कि सब कुछ ठीक था। रोज उन्हें पानी 2 बार दिया जाता था और खाद की भी।

0: कितना पानी दिया जाए
1: और कितना नहीं दिया जाए। हाँ तुलसी जी, ये तो हुई पानी की बात। क्या आपने उन पौधों के बारे में कुछ और भी अनुभव किया था?
0: हाँ हाँ, मैंने एक और बात पर गौर किया था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें साथ साथ रखा जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं।
1: अरे वाह, ये तो बहुत ही सचमुच गौर करने वाली बात है।
0: हाँ, और अगर अलग अलग रखा जाए तो वो उस तरह से नहीं बढ़ पाते। कुछ पौधे तो अकेले लगाए जाने से बढ़ते ही नहीं हैं, और फिर धीरे धीरे कमजोर होकर सूख जाते हैं।
1: अच्छा,
0: मुझे लगा कि क्यों ना इन्हें एक दूसरे के आसपास रोप कर देखा जाए। फिर हमने ऐसा ही किया तो पाया कि आश्चर्यजनक रूप से ये पौधे बढ़ने लगे थे। हाँ,
1: अरे ये तो बड़ी ही अद्भुत बात बताई आपने तुलसी जी। हाँ, लेकिन इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं?
0: देखो, पहली बात तो ये कि पौधों में भी जीवन होता है।
1: बिल्कुल होता है।
0: और मुझे लगता है कि वे भी दुख सुख अकेलापन का अनुभव कर सकते हैं, इसीलिए यदि उन्हें उचित दूरी पर आसपास रखा जाए तो वे बेहतर ढंग से बढ़ते हैं।
1: ये तो बड़ी ही दिलचस्प बात है तुलसी जी,
0: है ना
1: जी।
0: और उचित दूरी पर आसपास लगाए जाने से वे एक दूसरे के साथ नमी और पोषण को साझा कर सकते हैं।
1: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे?
0: हाँ, बिल्कुल देना चाहूंगी। मेरा कहना है कि देश को बचाने के लिए वन को बचाना होगा। वन बचाओ, देश बचाओ।
2: उन्होंने पेड़ पौधों और जंगल को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल कर लिया था। उनके अंदर पेड़ पौधों की सेवा करने का जज्बा आ गया था। एक बार उन्होंने कहा था,
0: मुझे नहीं मालूम कि जंगल के बारे में मैंने इतना ज्ञान कैसे एकत्रित किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं पौधों से, जंगल से बातें कर सकती हूं। मैं जंगल की भाषा बोल सकती हूं।
2: कहते हैं कि वो जहां भी जाती थी वहां के सभी पेड़ पौधों के बारे में भली भांति बता सकती थी। वो विस्तार से चर्चा कर सकती थी कि किस पौधे को कितना पानी देना है, उन्हें खाद किस मात्रा में देना है, और बीजों का संग्रह व भंडारण किस तरह से करना चाहिए।
3: श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को जंगल और उसके पौधों के बारे में उनके ज्ञान के कारण पर्यावरणविदों द्वारा जंगल के विश्वकोश और उनकी जनजाति द्वारा वृक्ष देवी और जंगल अम्मा के रूप में जाना जाता है। वो जंगल में हर प्रजाति के पेड़ की माँ या मातृ वृक्ष की पहचान करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं, चाहे वो कहीं भी हो। किसी भी पेड़ का मात्र एक सूख

0: नाम से ही विदित होता है कि एक बच्चे को पालने में माता की जो भूमिका होती है वही भूमिका इन पेड़ों की भी होती है। तो आइए सुने कैसे।
1: तुलसी जी, अक्सर माता पेड़ों या मातृ वृक्षों के बारे में बात की जाती है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि माता पेड़ों या मातृ वृक्षों को आखिर पहचानते कैसे हैं?
2: बड़ा अच्छा सवाल है। माता पेड़ या मातृ वृक्ष अपने आकारों से पहचाने जाते हैं।
1: अच्छा।
2: ये जंगल के सबसे पुराने, बड़े, लंबे और घने पेड़ होते हैं। और हाँ, पुराने होने की वजह से इनकी जड़ें बहुत गहरी और दूर दूर तक फैली होती हैं।
1: अच्छा।
2: इनकी जड़ों से आसपास के बहुत से छोटे और समान वृक्ष भूमि के अंदर जड़ों से जुड़े होते हैं और मातृ वृक्ष से भोजन लेते हैं।
1: अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात बताई आपने। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि मातृ वृक्ष मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है?
2: बिल्कुल सही सुना है आपने। मातृ वृक्ष गोंद की तरह मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं।
1: अच्छा।
2: और आंधी तूफान के समय दूसरे पेड़ों को गिरने या उखड़ने से बचाते हैं।
1: अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात बताई आपने।
2: इतना ही नहीं, यदि कई मातृ वृक्ष आसपास हों, तो छोटे पेड़ों के लिए आसपास की नमी को बनाए रखकर प्राकृतिक ग्रीन हाउस बनाते हैं। वे छोटे और युवा पेड़ों को नाइट्रोजन और कार्बन प्रदान करके उन्हें पालते हैं। समझे
1: जी? ये तो बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी हैं। और अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और बताइए ना मातृ वृक्षों के बारे में।
2: हाँ हाँ, बिल्कुल। देखिए, जड़ें गहरी होने के कारण ये अपनी जड़ों द्वारा आसानी से भूमिगत जल और फास्फोरस जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों को खींच लेते हैं और उन पेड़ों को देते हैं जिनकी जड़ें अभी बहुत गहरी नहीं है। ठीक है ना?
1: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी दिलचस्प और उपयोगी जानकारियां दी हैं आज। एक बार फिर से बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत धन्यवाद।
0: तुलसी गौड़ा जी को 300 औषधीय पौधे और 1,00,000 से भी अधिक पेड़ लगाने का गौरव प्राप्त है। कहते हैं कि उनके द्वारा लगाया गया एक भी पेड़ सूखा नहीं है। उनके द्वारा लगाए गए औषधीय पौधों के इस्तेमाल से उस क्षेत्र की जनजातियों का बड़ा कल्याण हुआ है।
3: 78 वर्षीय श्रीमती तुलसी गौड़ा ने 60 वर्षों तक कर्नाटक वानिकी विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं और अब वो अवकाश प्राप्त जीवन बिता रही हैं। लेकिन आज भी उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई है। इन दिनों भी वो अपने गांव की नर्सरी और वानिकी विभाग के दफ्तर में बीजों का संग्रह लेकर पैदल चलती हुई दिखाई देती हैं। किसी ने कहा है, महानतम चीजें हमेशा अति साधारण होती हैं, यानी ग्रेटेस्ट थिंग्स आर ऑलवेज सिंपलेस्ट। तुलसी गौड़ा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जंगल इंसाइक्लोपीडिया तुलसी गौड़ा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटीलैंग लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, पूनम एस कुदेसिया और अंजलि, आलेख अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है

0: audio@ciet.nic.in. यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया. अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तुलसी गौड़ा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है. तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए. नमस्कार.

अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुन रहे थे। कार्यक्रम के प्रायोजक थे NCERT। कार्यक्रम का आज आपने सुना भाग 1286। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजने को हैं। आइए अब आपको हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें।

अब से कुछ देर बाद यानी 12:05 पर हमारे केंद्र से प्रसारित होगा शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में पंडित रवि शंकर का सितार पर बजाया राग मधुमति सुनवाया जाएगा। विलंबित और द्रुत तीन ताल में निबद्ध होगी। कार्यक्रम परिवार जगत का समय रहेगा आज दिन में 1:15 पर। कार्यक्रम में चर्चा होगी, विषय होगा विश्व एड्स वैक्सीन दिवस। साथ ही जानकारी होगी अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के बारे में। भेंटवार्ता सुनवाई जाएगी, शीर्षक होगा शहरीकरण का पर्यावरण पर प्रभाव। लोक संगीत का कार्यक्रम लोकधारा का समय रहेगा आज दिन में 1:45 पर। कार्यक्रम में होंगे भोजपुरी लोकगीत, कलाकार होंगे जसबंत और पूर्वी। हमारी संध्याकालीन सभा में शाम 5:00 कार्यक्रम होगा रिश्ता ये खास है। आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष में आकाशवाणी नजीब बाबा से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित ये कार्यक्रम हमारे श्रोता सुन सकेंगे। 5:15 पर आज शाम युववाणी कार्यक्रम में क्रम रहेगा बूझो तो जाने, कुछ खास है आज, गपशप अड्डा, क्रैश कोर्स, पैसा वसूल और साथ ही फिल्म संगीत और बूस्टर्स। किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत का समय रहेगा आज शाम 6:05 पर। कार्यक्रम में चर्चा होगी, विषय होगा बीज शोधन का महत्व। साथ ही भेंटवार्ता सुनवाई जाएगी, शीर्षक होगा बीज वितरण एवं अनुदान योजनाएं। इस संदर्भ में श्री जसवीर सिंह तेवतिया जिला कृषि अधिकारी से बातचीत करेंगे हमारे किसान साथी हिमांशु रंजन।

कार्यक्रम विविधा का समय रहेगा आज शाम 6:45 पर। कार्यक्रम में सुनवाई जाएगी भेंट वार्ता, शीर्षक होगा एड्स कारण लक्षण और बचाव। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह राजपूत से इस संदर्भ में बातचीत करेंगे हमारे रेडियो साथी जसवंत सिंह। सुगम संगीत का समय रहेगा आज शाम 7:32 पर। कार्यक्रम में सुनवाए जाएंगे भजन, कलाकार होंगी अमिता अग्रवाल। हमारे दिल्ली केंद्र से आज रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम होगा पब्लिक स्पीक, और रात्रि 10 बजे संगीत फिल्म संगीत में होंगे भूले बिसरे गीत, और श्रोताओं के पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा आपकी फरमाइश। समय रहेगा आज रात्रि 10:30 पर। ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। मीडियम वेव 314.47 अर्थात 954 kHz पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:05 होने को हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। श्रोताओ, शास्त्रीय संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित रवि शंकर का सितार पर बजाया राग मधुवंती, विलंबित व द्रुत 3 ताल में निबद्ध है।

अभी आप शास्त्रीय संगीत में पंडित रविशंकर का सितार पर बजाया राग मधुवंती सुन रहे थे। विलंबित व द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध थी। आपके साथ जी शास्त्रीय संगीत अभी आपने सुना। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, आज हमारे केंद्र से 1:15 पर कार्यक्रम होगा परिवार जगत। कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा विश्व एड्स वैक्सीन दिवस। साथ ही जानकारी दी जाएगी अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के बारे में। भेंटवार्ता सुनवाई जाएगी, विषय होगा शहरीकरण का पर्यावरण पर प्रभाव। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदर लाल बहुगुणा जी के सहयोगी से सुबोध कुमार वर्मा जी से बातचीत करेंगी हमारी रेडियो साथी ज्योति पाल। लोक संगीत का कार्यक्रम लोकधारा हमारे केंद्र से आज प्रसारित होगा दिन में 1:45 पर। कार्यक्रम में होंगे भोजपुरी लोकगीत और कलाकार होंगे जसबंत और पूर्वी। हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें, हमारी नई श्रृंखला रिश्ता ये खास है। ये कार्यक्रम हमारे केंद्र से संध्याकालीन सभा में 5 प्रसारित होगा। आकाशवाणी के 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी नजीब आवाज से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित ये कार्यक्रम हमारे श्रोता सुन सकेंगे। 5:15 पर होगा कार्यक्रम युववाणी, जिसमें क्रम रहेगा बूझो तो जाने, कुछ खास है आज, गपशप अड्डा, क्रैश कोर्स, पैसा वसूल, कहानी के उस पार और फिल्म संगीत के साथ साथ बूस्टर्स। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिडडे मेलोडी। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को फैजुर रहमान का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का ये पहला गीत हमने लिया है फिल्म क्या दिल ने कहा से। आवाज दी है अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण ने। निखिल विजय का संगीत है। गीतकार हैं आनंद बख्शी।

श्रोता, अभी आपने सुना फिल्म कुछ दिल ने कहा का ये गीत। इस गीत को आवाज़ें दी थी अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण ने। निखिल विजय का संगीत था, गीतकार थे आनंद बख्शी। फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी जारी है आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं फिल्म फूल और कांटे का ये गीत अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ों में। नदीम श्रवण का संगीत है, गीत के बोल लिखे हैं समीर ने।

0: श्रोताओ, अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू को फिल्म फूल और कांटे में। नदीम श्रवण का संगीत था, गीतकार थे समीर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
0: श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं फिल्म अनाड़ी का ये गीत। उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ें हैं, आनंद मिलिंद का संगीत है, गीत के बोल लिखे हैं समीर ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म मन का ये गीत। आवाज़ें थीं उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की। संजीव दर्शन का संगीत था, गीत के बोल लिखे थे समीर ने। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, फिल्म बरसात से। कुमार सानू और अलका याग्निक की युगल आवाज़ें हैं, नदीम श्रवण का संगीत है, गीतकार हैं समीर।

फिल्म बरसात के इसी गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी अब यहीं संपन्न होता है। अभी आप फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी सुन रहे थे। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1 बजने को हैं, कुछ ही क्षणों में समाचार होंगे।

0: मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। इस दौरे में भारत और नॉर्वे के बीच द्विपक्षीय वार्ता और तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन शामिल है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
1: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य 19 अरब डॉलर है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोड़बोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश में सभी कंपनियों के लिए अवसर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्षों से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की सुधार एक्सप्रेस पूरी गति से चल रही है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को द्विपक्षीय संबंधों में उनके असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पी के कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के बाद गृहमंत्री बस्तर के लिए रवाना हो गए, जहां वे नेतानार गांव में सीआरपीएफ कैंप परिसर में स्थापित जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि वे द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए इन दोनों एशियाई देशों का दौरा करने को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग, रक्षा औद्योगिक साझेदारी और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को प्रोत्साहित करना है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर होने से एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। ये हादसा पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। प्रधानमंत्री ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 133 अंक की गिरावट के साथ 75,105, निफ्टी 60 अंक लुढ़क कर 23,584 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज।

0: हम आकाशवाणी के
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम परिवार जगत।

परिवार जगत कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा यानी दीप्ति माहेश्वरी का प्यार भरा नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम परिवार जगत में। आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया में स्वास्थ्य और मानव जीवन की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। आज का विषय है विश्व एड्स वैक्सीन दिवस। हर वर्ष 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य HIV और एड्स जैसी गंभीर बीमारी के खिलाफ वैक्सीन विकसित करने के प्रयासों को सम्मान देना और लोगों में जागरूकता फैलाना है। ये दिन उन सभी वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और स्वयंसेवकों को समर्पित है जो वर्षों से इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई में जुटे हैं। श्रोताओं, एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एक ऐसी बीमारी है जो मानव शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर कर देती है। इसका मुख्य कारण HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। जब ये वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो धीरे धीरे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचाता है, जिससे व्यक्ति कई अन्य बीमारियों का शिकार हो सकता है। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 1998 में हुई थी। इसकी प्रेरणा अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के एक भाषण से मिली थी, जिसमें उन्होंने एड्स की वैक्सीन विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। तब से हर साल 18 मई को ये दिन मनाया जाता है ताकि दुनिया भर के लोग इस दिशा में हो रहे अनुसंधानों और प्रयासों के महत्व को समझ सकें। श्रोताओं, कार्यक्रम में विश्व एड्स दिवस वैक्सीन दिवस के बारे में अभी और भी चर्चा करेंगे, परंतु पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं ये जरूरी संदेश।

ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम परिवार जगत में। दोस्तों, आज विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, कई बीमारियों की वैक्सीन बन चुकी है और लाखों लोगों की जान बचाई जा चुकी है। लेकिन HIV वायरस बहुत तेजी से अपना रूप बदलता है, इसलिए एड्स की वैक्सीन बनाना वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसके बावजूद दुनिया भर के वैज्ञानिक लगातार शोध कर रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में इसका प्रभावी टीका जरूर विकसित होगा। श्रोताओं, अब सवाल उठता है कि आखिर इस दिवस को मनाने की जरूरत क्यों है? तो श्रोताओं, इसका सबसे बड़ा कारण है जागरूकता। आज भी समाज में एड्स को लेकर

0: कई भ्रांतियां और डर मौजूद हैं। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि एड्स कैसे फैलता है और कैसे नहीं फैलता। जानकारी की कमी के कारण एचआईवी संक्रमित लोगों को सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि एचआईवी किन कारणों से फैल सकता है। एचआईवी असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, संक्रमित सुई या सिरिंज के उपयोग से, संक्रमित रक्त चढ़ाने से और गर्भावस्था, प्रसव या स्तनपान के दौरान मां से बच्चे में फैलता है। लेकिन ये जानना भी बहुत जरूरी है कि एचआईवी हाथ मिलाने, साथ बैठने, खाना खाने, गले मिलने या एक ही बर्तन का उपयोग करने से नहीं फैलता। इसलिए हमें संक्रमित व्यक्तियों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें सहयोग और सम्मान देना चाहिए। श्रोताओं, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस हमें ये संदेश देता है कि बीमारी से लड़ने के लिए केवल दवा ही नहीं, बल्कि जागरूकता और मानवता भी जरूरी है। यदि हम सही जानकारी रखें और दूसरों तक पहुंचाएं, तो इस बीमारी को काफी हद तक रोका जा सकता है। आज दुनिया भर में कई संगठन एचआईवी और एड्स के खिलाफ काम कर रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूएनएआईडीएस जैसी संस्थाएं लगातार जागरूकता अभियान चला रही हैं। इनके प्रयासों से लाखों लोगों को समय पर इलाज और सही जानकारी मिल पा रही है। दोस्तों, भारत में भी सरकार और कई सामाजिक संस्थाएं एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने का काम कर रही हैं। स्कूलों, कॉलेजों और स्वास्थ्य केंद्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लोगों को सुरक्षित जीवन शैली अपनाने, नियमित जांच करवाने और सही जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है। आज के समय में एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी यानी एआरटी के माध्यम से एचआईवी संक्रमित व्यक्ति लंबे समय तक सामान्य जीवन जी सकता है। हालांकि एचआईवी का अभी तक स्थायी इलाज या वैक्सीन पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, लेकिन सही इलाज और सावधानी से इस बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है। श्रोताओं, हमें ये समझना चाहिए कि एड्स केवल एक स्वास्थ्य समस्या नहीं, बल्कि एक सामाजिक चुनौती भी है। जब कोई व्यक्ति एचआईवी से संक्रमित होता है, तो उसे शारीरिक परेशानी के साथ साथ मानसिक तनाव और सामाजिक उपेक्षा का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस प्रकार के मरीजों के प्रति संवेदनशील रहें और उन्हें समाज में बराबर का हिस्सा मानें। विश्व एड्स दिवस पर हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम एड्स के प्रति जागरूकता फैलाएंगे, किसी भी संक्रमित व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, सुरक्षित और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे, समय समय पर स्वास्थ्य जांच कराएंगे और समाज में सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। श्रोताओं, विज्ञान और मानवता जब साथ साथ चलते हैं, तो बड़ी से बड़ी चुनौती का समाधान संभव हो जाता है। जिस तरह दुनिया ने कई खतरनाक बीमारियों पर विजय प्राप्त की है, उसी तरह एक दिन एचआईवी और एड्स पर भी पूरी तरह से जीत हासिल कर ली जाएगी। जरूरत है निरंतर प्रयास, जागरूकता और सहयोग की। तो आइए इस विश्व एड्स वैक्सीन दिवस पर हम सब मिलकर ये संदेश फैलाएं कि जागरूकता ही बचाव है और मानवता ही सबसे बड़ी ताकत। इसलिए आप सभी स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और दूसरों को भी जागरूक बनाइए। ये तो थी कुछ संक्षिप्त जानकारी विश्व एड्स दिवस के बारे में। आशा करते हैं आपको ये पसंद आई होगी। दोस्तों, आज हम तेजी से विकास कर रहे हैं, किंतु विकास की इस दौड़ में शहरीकरण भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। बढ़ते बढ़ते बड़े बड़े भवन, फैक्ट्रियां, चौड़ी सड़कें और आधुनिक सुविधाएं जहां जीवन को आसान बना रही हैं, वहीं दूसरी ओर इसका पर्यावरण पर भी गहरा प्रभाव पड़ रहा है। लगातार पेड़ों की कटाई, बढ़ता प्रदूषण, जल और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ता दबाव तथा हर क्षेत्रों की कमी, जैसी अनेक समस्याएं हमारे सामने खड़ी हैं। इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए आज हम आपको एक विशेष भेंटवार्ता सुनवाने जा रहे हैं, जिसका विषय है शहरीकरण पर पर्यावरण का प्रभाव। शहरीकरण का पर्यावरण पर प्रभाव, जिसके अंतर्गत सुबोध कुमार वर्मा से बातचीत कर रही हैं ज्योति पाल।
1: नमस्कार श्रोताओं, तेजी से बढ़ते शहर, ऊंची इमारतें, बढ़ती जनसंख्या और

0: हरियाली की कमी, बढ़ता कचरा और बदलता मौसम, ये सभी अनियंत्रित शहरीकरण के परिणाम हैं। आज शहरीकरण का पर्यावरण पर प्रभाव, इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन किस तरह से बनाया जा सकता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री सुबोध कुमार वर्मा जी, जो कि प्रख्यात पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता, सहयोगी विश्वविख्यात पर्यावरणविद और छिपको आंदोलन के प्रणेता पद्म विभूषण पूज्य श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी के साथ रहे। सुबोध कुमार वर्मा जी, आज हमारे स्टूडियो में आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार ज्योति जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने चुना है, जिस पर चर्चा होना आज समाज के लिए बहुत आवश्यक है।
0: सुबोध वर्मा जी, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि शहरीकरण का क्या अर्थ है और ये इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है?
1: शहरीकरण का जो वास्तव में मतलब है, अगर हम गहराई में जाकर देखना चाहेंगे, मेन चीज है मनुष्य की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाएं। मुख्य रूप से जो उसके अंदर हमारी शिक्षा पद्धति है, उसने जो एक जागृत की है महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाना, तो इसी के तहत मनुष्य जो है वो अपने गांव देहात और उन सब से पलायन करता चला गया शहरों की तरफ। शहरों में दबाव ज्यादा आबादी का हो गया और चूंकि साधन संसाधन वहां सीमित हैं, जनसंख्या का इतना दबाव झेलने के शहरों में उतना अभ्यस्त नहीं है, तो इसी के क्रम में शहर को विकास की तरफ को चले गए। विकास का मतलब हमने केवल कंक्रीट के जो जंगल हैं वहां पैदा किए हैं, प्राकृतिक जंगल, प्राकृतिक संपदाएं शहरों में थीं, उनको हमने दोहन किया। उधर हमारे गांव खाली हो गए, तो गांव खाली होने के बाद वहां की जो संस्कृति थी, सभ्यता थी, वो भी हमारी एक तरह से नष्ट हो गई। धीमे धीमे उसमें बहुत तेजी के साथ में गिरावट आई है और शहरों पे जो है वो दबाव बढ़ा है।
0: और शहरों के विकास से हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है?
1: जो हमारे शहरी इलाकों में जितने हमारे जंगल थे वो सब कट चुके हैं, प्राकृतिक जंगल, प्राकृतिक संपदाएं तो समाप्त हो गई। उसके साथ साथ जो है वहाँ कंक्रीट के जंगल पैदा हो गए हैं। इंसान की मानसिकता भी उसी तरह की हो गई है। मुख्य रूप से विकास उसी को सत्ता ने माना है जो हमारे जल, जंगल और जमीन, इसको जितना ज्यादा से ज्यादा दोहन करते हुए, इसको पर जितनी ज्यादा से ज्यादा लूट मचाते हुए जो महत्वाकांक्षाएं की पूर्ति है उनके लिए उसमें बढ़ोतरी की जाए।
0: वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सीधे शहरीकरण से जुड़ी हुई है, क्या आप इसको मानते हैं?
1: हाँ, ये देखिए, मैंने बोला कि जनसंख्या का जो दबाव है उसमें क्या है कि आने जाने के साधन, आवागमन के साधन, उनमें संख्या में इजाफा हुआ है बहुत तेजी के साथ में। समय कम है तो हर व्यक्ति जो है वो जल्दी से जल्दी अपनी जो यात्रा है उसको पूरा करने के जद में लगा रहता है। तो एक तरफ तो उससे ध्वनि प्रदूषण भी है और वायु प्रदूषण भी है, दोनों में तेजी के साथ इजाफा हुआ है।
0: अच्छा, पेड़ों की कटाई और हरित क्षेत्रों की कमी का लोगों के स्वास्थ्य पर असर दिखाई दे रहा है?
1: हाँ बिल्कुल, ये देखिए जल, जंगल और जमीन, ये तीनों चीजें ऐसी हैं कि इनका सीधा प्रभाव मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ। छिपको का एक पहला जो नारा था, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। तो ये जो नारा है ये वास्तव में जब इतने साधन और संसाधन नहीं थे हमारे पास
0: जी,
1: लेकिन तब भी मनुष्य की भावनाओं से जुड़ा हुआ था। आज तो इसके बारे में सोचने की भी किसी के पास समय नहीं है। प्रकृति के अनुकूल जीवन शैली को अपनाना होगा और उसी तरफ जाना होगा अगर हमको सुखद, समृद्ध और खुशहाल भविष्य चाहिए।
0: कि शहरों में भी सामान्य जीवन लोग जीने लगे हैं, जहाँ इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं, जहाँ इतनी परेशानियां हो रही हैं, वहाँ थोड़ा सा सामान्य जीवन लोगों ने जीना शुरू कर दिया है और इसे और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी। अच्छा, महानगरों में बढ़ते तापमान यानी हीट आइलैंड इफेक्ट कैसे समझ सकते, क्या प्रभाव है इसका?
1: नहीं, इसका प्रभाव तो देखिए जनसंख्या के साथ में जुड़ा हुआ है सीधा सीधा। जितना जनसंख्या का दबाव जहाँ बढ़ेगा, और जहाँ जहाँ ये मानिए सीधे तौर पर कि मनुष्य का प्रकृति के बीच जितना हस्तक्षेप बढ़ेगा, वहाँ आपका तापमान, जलवायु परिवर्तन, इतनी भी जल संकट, जल समस्याएं, वायु प्रदूषण, ये सारी समस्याएं जितनी भी हैं वो सब पैदा होंगी। तो हमको सबसे पहले तो एक इस तरह का समाज बनाना होगा जो संवेदनशील हो जल, जंगल, जमीन के लिए, उनका सम्मान करे,

0: प्रकृति का सम्मान करें। जब तक ऐसा कुछ नहीं होगा तो ये तो प्राकृतिक चीजें हैं, ये सब समस्याएं और संकट आते रहेंगे। केवल चर्चा में इन चीजों से कुछ इतना ज्यादा कुछ नहीं नतीजे निकल सकते हैं। इसके लिए हर आदमी को अपनी ये समझना होगा कि ये सब चीजें प्रकृति के लिए जितना भी है ये अब कोई एहसान उसके ऊपर नहीं है प्रकृति, ये अपने जीवन बचाने के लिए आपको स्वयं अपने आसपास का वातावरण सुरक्षित करना होगा और उसी के क्रम में आगे बढ़ना होगा।
1: प्लास्टिक और ठोस कचरे की समस्या शहरों में इतनी गंभीर क्यों होती जा रही है?
0: इसका देखिए मुख्य, फिर हम वहीं लौट कर आते हैं जनसंख्या,
1: जनसंख्या पर,
0: जनसंख्या का दबाव
1: जी,
0: और उनकी जो प्रकृति के जो अनुकूल जीवन शैली थी
1: जी,
0: उसमें बदलाव। वजह इसकी क्या है कि आधुनिक शिक्षा मनुष्य की पूरे सोचने समझने की जो ताकत है उस पर एक तरह से ताला लगा दिया है। अगर प्रकृति के अनुकूल रहेंगे, अनुशासित जीवन जिएंगे तो ये सारी समस्याएं पैदा ही नहीं होंगी।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन अब हो चुकी हैं।
1: हम्म,
0: आप जितना अधिक से अधिक पौधारोपण करते हुए हरियाली फैलाएंगे और उतना ही वायु प्रदूषण भी कम होगा, जल संकट भी खत्म होगा।
1: आज की सबसे बड़ी समस्या हो रही है पेट्रोल और गैस की समस्या। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो चल रहे हैं और सार्वजनिक जो परिवहन है, शहरों में कितनी भूमिका है?
0: हाँ देखिए, आजकल जो ईवी का प्रचलन है
1: जी,
0: वो बहुत तेजी के साथ में बढ़ रहा है।
1: Hmm.
0: एक भ्रम ये भ्रांति है कि ईवी से कोई प्रदूषण नहीं होता। ईवी को बनाने तक, आपके रोड पे आने तक जितना अधिक प्रदूषण उस पे फैल जाता है उतना तो किसी दूसरी चीज से भी नहीं फैलता
1: जी।
0: तो हमको ये जो कुछ मिथ है इनके प्रति भी जागरूक करना है और प्रयास ये करें कि जितना कम से कम हो इनका उपयोग करें, अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनको सीमित कर लें, बजाय इसके कि हम इन सब चीज़ों में अपना एनर्जी भी लगाएं, प्रयास करें कि इसमें और इजाफा हो जाए।
1: कोशिश ही करनी चाहिए कि हम कम संसाधनों का प्रयोग करें।
0: आप सुखी भी तभी रहोगे
1: जी। आम नागरिक किस तरह से छोटे छोटे कदम उठाकर ये जो पर्यावरण प्रदूषण है, ये शहरीकरण है, इसको रोक सकता है?
0: हाँ, इसके लिए सबसे पहले तो इंसान को ये सोचना होगा कि जीवन उसका अपना है, इसको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, ना कोई सत्ता इसको बचा सकती है और ना ही कोई बाहरी ऐसी ताकत है, शक्ति है कि इसको बचाएगी। इसके लिए प्रयास आपको खुद करना होगा।
1: बिल्कुल,
0: आप अगर प्रकृति के लिए काम कर रहे हैं, पौधारोपण के करते हुए वृक्षों को पाल रहे हैं, उनको जल जंगल जमीन में इजाफा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप ये ना माने कि हाँ हमने, आपने प्रकृति पर कोई एहसान किया है।
1: बिल्कुल,
0: ये तो केवल एक भावनाओं का खेल है। कुल मिला के अगर कहा जाए कि मनुष्य के जीवन से अगर पानी और हवा, इन दो चीजों को निकाल दिया जाए तो उसको खुद सोच के देखना होगा कि उसके पास बचेगा क्या।
1: बिल्कुल,
0: आपके पास कितनी भी ज्यादा दौलत हो, कितने भी ज्यादा संसाधन हो, और अगर ये दो चीजें उसके जीवन में ना हो तो बाकी सब जितनी भी उसकी की भी चीजें सब रखी रह जाएंगी।
1: बिल्कुल,
0: तो ये समझना होगा कि जीवन आपका अपना है, आपको अपने आप ही बचाना है उसको, और जितना प्रकृति के अनुकूल जीवन शैली को सीमित संसाधनों के साथ जीने की कला सीख लेंगे उतना आप सुखी होंगे। गांव की ये जो लोग हैं जो आज शहरीकरण की चकाचौंध में वहां पहुंच गए हैं, तो उनसे एक यही अपील है कि अपने अपने गांव में वापस आके वहाँ अपनी योग्यता का प्रदर्शन करें, ताकि आपकी जो योग्यता है, आपकी क्षमता जो है, उससे वहाँ के स्थानीय लोगों को कुछ लाभ मिले।
1: मतलब देश के हर नागरिक को ये सोचना होगा कि ये मेरा अपना कर्तव्य है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल,
1: तभी सुधार होगा, अन्यथा कोई भी सुधार नहीं कर पाएगा।
0: बिल्कुल
1: जी।
0: ज्योति जी, हमें ये कहें कि अधिकारों की बात आज हर व्यक्ति करता है,
1: हाँ,
0: लेकिन जो उसकी ड्यूटी है,
1: हाँ,
0: अपने प्रति, अपने समाज के प्रति, परिवार और राष्ट्र के प्रति, उसमें वो पीछे हट जाता है,
1: पीछे हट रहा है।
0: तो वो भावना जगानी होगी कि कर्तव्य पहले, अधिकार बाद में।
1: जी जी। यदि शहरीकरण इसी गति से बढ़ता रहा तो भविष्य में कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिसका सामना हम सबको करना पड़ेगा?
0: देखिए कि सबसे बड़ी चुनौतियां सभी को झेलनी होंगी
1: जी,
0: और इसमें जलवायु परिवर्तन मुख्य समस्या है, जल संकट मुख्य समस्या है
1: जी,
0: और ये प्रकृति

0: के जितने भी संसाधन हैं वो धीमे धीमे समाप्त होने की कगार पर जा रहे हैं, तो हमें इन सबको बचाने के लिए प्रयास करना है। ऐसा समाज बनाना, संवेदनशील समाज बनाने का प्रयास करना होगा सामूहिक रूप से, क्योंकि जल, जंगल, जमीन ये किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है। मतलब हवा और पानी तो सभी की आवश्यकता है।
1: बिल्कुल.
0: हम इंसान कौन होते हैं कि जो भेदभाव करें प्रकृति के साथ। सबको मिलकर ऐसा प्रयास करना है कि ये समस्याएं पैदा ना हो।
1: पैदा ना हो जी,
0: हमको समस्याओं की बजाय समाधान पे ज्यादा जोर देना है।
1: ज्यादा जोर देना है जी. हमें ये भी सोचना है कि आने वाली पीढ़ी को हम क्या देकर जाएंगे.
0: बिल्कुल
1: कम से कम स्वच्छ जल और साफ वायु, ये चीजें तो कम से कम देके जाएं, और कुछ नहीं तो.
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो पर्यावरण संरक्षण के लिए आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए, मेरी सभी से अपील ये है कि आप जहां भी हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वही सब करते हुए भी पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान कर सकते हैं।
1: जी
0: सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है वो हमारे नए बच्चे, युवा पीढ़ी और शिक्षक समाज, ये अगर दोनों जागरूक समाज को करने के लिए सड़क पर आ जाते हैं, तो फिर कोई समाज ऐसा नहीं है कि जो विकास के रास्ते पर, वास्तविक विकास के रास्ते पर ना चले और जल, जंगल, जमीन को बचाने में पीछे हटे। तो
1: बिल्कुल.
0: हमको इन भावनाओं की फैलाने के लिए शिक्षकों को भी एक अपील ये है, बच्चों से भी अपील ये है कि आप अपनी लिखावट का, अगर कागज का प्रयोग, एक बच्चा एक स्कूल में एक दिन में एक कागज भी अगर बचा लेता है,
1: जी.
0: तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा योगदान होगा। शिक्षक इसके लिए बच्चों को प्रेरित करें कि कम से कम साफ लिखाई में और सीमित फॉन्ट के साथ में उसको लिखें, और लेख भी सही होगा, सुधार होगा उसमें बच्चे का, और कागज का उपयोग भी कम होगा।
1: बिल्कुल
0: परिवार जो हैं उन पर आर्थिक बोझ भी कम होगा।
1: बिल्कुल.
0: मान लीजिए किसी स्कूल में 2,000 बच्चा है, तो कम से कम 2,000 पेपर एक दिन में आपने बचाया है।
1: बचाया है
0: साठ
1: जी.
0: हजार पेपर आपका एक महीना में, इस तरह से एक साल में लगाइए। और ये
1: जी,
0: केवल एक स्कूल की बात बताइए,
1: एक स्कूल
0: जब
1: की. बिल्कुल.
0: पूरे, अगर मान लीजिए सभी स्कूल ये संकल्प लें, बच्चे संकल्प लें,
1: वो
0: जब
1: संख्या
0: उत्पादन,
1: लाखों.
0: हाँ,
1: हाँ,
0: जब उपयोगी सीमित हो जाएगा तो
1: उत्पादन
0: उत्पादन
1: भी
0: पेड़ों
1: कम.
0: की कटाई पर खुद रोक लगेगी।
1: बिल्कुल.
0: तो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान यही है बच्चों का, शिक्षकों का, कि वो इस काम पर ध्यान दें, फोकस करें।
1: जी.
0: जो भी काम कर रहे हैं वो करते रहें, इसके लिए कोई अलग सा आपको नहीं करना है। आप अगर पहाड़ों पर घूमने जा रहे हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ वहाँ के अनुशासन के साथ चलें, और कम से कम कुछ बीज इस तरह के ले जाएं जो वहाँ अपने हाथ से आप डाल दें। आप देखेंगे कुछ टाइम बाद वो पौधे बन जाएंगे,
1: पौधे
0: वृक्ष
1: बन.
0: बन जाएंगे, घने जंगल बन जाएंगे। और जल संचयन की बात होती है, इसके लिए बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं, लेकिन जो हमारे घने जंगल हैं वो तो जल संचयन का प्राकृतिक स्रोत है। उससे क्या है कि भूमि के अंदर नमी भी बनी रहती है, और जो हमारी मिट्टी है, जो हमारी पैदावार की क्षमता है, उसमें भी इजाफा होता है। तो ये चीजें हमको, छोटी छोटी चीजें हैं वो ध्यान रखनी है, और जीवन अपना है, इसको खुद ही बचाना है, कोई नहीं
1: बिल्कुल
0: आएगा इसको
1: बिल्कुल.
0: बचाने। तो ये जागरूक करके हमको प्रकृति के साथ उसके अनुकूल जीवन शैली को अपनाना है।
1: जी, सुबोध वर्मा जी, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी. मैं आशा करती हूँ कि सभी श्रोताओं ने सुना होगा जानकारी को और उन्हें बहुत पसंद आई होगी, और वो जैसे आपने छोटे छोटे उपाय बताए हैं उनको अपने जीवन में अमल लाएंगे, ताकि हम देश के विकास में, देश की उन्नति में, पर्यावरण में, सब में संरक्षण दे पाएं. तो श्रोताओं, आज की चर्चा से स्पष्ट है कि शहरीकरण विकास का प्रतीक जरूर है, लेकिन यदि यह संतुलित और पर्यावरण के अनुकूल ना हो तो भविष्य के लिए गंभीर संकट पैदा कर सकता है. हमें विकास के साथ साथ प्रकृति की सुरक्षा को भी समान महत्व देना होगा. पेड़ लगाना, जल संरक्षण करना, प्रदूषण कम करना और स्वच्छता बनाए रखना, ये छोटे कदम मिलकर बड़े बदलाव ला सकते हैं. सुबोध वर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
0: बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी।
2: अभी हम सुन रहे थे एक भेंट वार्ता, जिसके अंतर्गत सुबोध कुमार वर्मा से बातचीत कर रही थी ज्योति पाल. आशा करते हैं आपको ये भेंट वार्ता पसंद आई होगी. दोस्तों, समय समय पर हम आपको भिन्न भिन्न जानकारियां देते रहते हैं, और आज इसी श्रृंखला में आपको जानकारी दे रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के बारे में। ये दिन हर साल 18 मई को पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को संग्रहालयों के महत्व के प्रति जागरूक करना तथा इतिहास, संस्कृति और विरासत के संरक्षण के लिए प्रेरित करना है। संग्रहालय किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति के संरक्षक होते हैं। यहाँ प्राचीन वस्तुएं, ऐतिहासिक दस्तावेज, मूर्तियां, चित्र, हथियार, सिक्के, पांडुलिपियां और अनेक दुर्लभ वस्तुएं सुरक्षित रखी जाती हैं। ये वस्तुएं हमें हमारे अतीत की जानकारी देती हैं और इतिहास को समझने में सहायता करती हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 1977 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद द्वारा की गई थी। तब से हर वर्ष ये दिन एक विशेष थीम के साथ मनाया जाता है। संग्रहालय केवल पुरानी वस्तुओं का भंडार नहीं होता, बल्कि शिक्षा और ज्ञान का महत्वपूर्ण केंद्र भी होता है। विद्यार्थी जब संग्रहालयों का भ्रमण करते हैं तो उन्हें इतिहास और संस्कृति को नजदीक से समझने का अवसर मिलता है। पुस्तक में पढ़ी गई बातें संग्रहालय में देखकर अधिक स्पष्ट और रोचक लगती हैं। भारत जैसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश में अनेक प्रसिद्ध संग्रहालय हैं। दिल्ली का राष्ट्रीय संग्रहालय, कोलकाता का भारतीय संग्रहालय, लखनऊ संग्रहालय और सालार जंग संग्रहालय जैसे संस्थान हमारी गौरवशाली विरासत को सुरक्षित रखे हुए हैं। इन संग्रहालयों में रखी गई वस्तुएं हमें प्राचीन भारत की कला, संस्कृति और विज्ञान की महानता का परिचय कराती हैं। आज आधुनिक तकनीक के माध्यम से संग्रहालय और अधिक आकर्षक बनते जा रहे हैं। डिजिटल प्रदर्शन, ऑडियो गाइड तथा वर्चुअल टूर जैसी सुविधाओं ने लोगों की रुचि बढ़ाई है। अब लोग घर बैठे भी ऑनलाइन संग्रहालयों का भ्रमण कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हमें ये संदेश देता है कि हम अपनी संस्कृति और इतिहास को सुरक्षित रखें, और इसको सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। यदि हम अपनी विरासत को नहीं बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां अपने अतीत से अनजान रह जाएंगी। श्रोताओं, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि संग्रहालय हमारे इतिहास के साक्षी हैं। हमें इनके संरक्षण और विकास में सहयोग देना चाहिए। इसी जानकारी के साथ समय हो गया है आपसे विदा लेने का, परंतु जाने से पहले जानना चाहेंगे कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा। अपनी शिकायतें और सुझाव देने के लिए हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम परिवार जगत द्वारा के निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन नंबर 246763। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। इसी के साथ मुझे यानी अपनी दोस्त दीप्ति माहेश्वरी को दीजिए अनुमति कार्यक्रम परिवार जगत संपन्न करने की। नमस्कार।

अभी आप कार्यक्रम परिवार जगत सुन रहे थे। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोकधारा। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीत। कलाकार हैं जसबंत और पूर्वी।

लोक संगीत का कार्यक्रम लोकधारा आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। कार्यक्रम में जारी हैं भोजपुरी लोकगीत, कलाकार हैं जसवंत और पूर्वी।

शोधौल लोक संगीत का कार्यक्रम लोकधारा जारी है आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं भोजपुरी लोकगीत। कलाकार हैं जसबंद और पूर्वी। आइए

तो के मिलवा

जसबंद और पूर्वी के गाए इसी लोकगीत के साथ ही आज का लोक संगीत का कार्यक्रम लोकधारा अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2 बजने को हैं, कुछ ही क्षणों में अंग्रेजी में समाचार होंगे।

0: ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ओस्लो में पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
1: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये यात्रा महत्वपूर्ण रही। संयुक्त नवाचार साझेदारी के दूसरे चरण और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी तथा एआई गलियारे की शुरुआत से लेकर अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तक ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। उन्होंने स्वीडन की जनता, सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन का उनके स्नेह और मित्रता के लिए आभार व्यक्त किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने का ये कदम भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना द्वारा निर्देशित है। इस यात्रा के दौरान 6 प्रमुख उपलब्धियां सामने आईं। पहली उपलब्धि रही भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026-2030 को अपनाना, जो व्यापार, नवाचार, जलवायु कार्रवाई, रक्षा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करती है। दूसरी बड़ी उपलब्धि रही तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाई तक पहुंचाना। इसके तहत ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत की गई और स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी एआई कॉरिडोर यानी सीटैक का विस्तार किया गया। तीसरी उपलब्धि रही एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने पर सहमति। ये केंद्र एआई, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर कार्य करेगा। चौथी बड़ी उपलब्धि अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय करना रही। पांचवी उपलब्धि रही भारत स्वीडन एसएमई और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का विकास। छठी महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को नई पहचान देना रही। इसके तहत टैगोर स्वीडन लेक्चर सीरीज की शुरुआत की गई, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वर्ष 1926 की ऐतिहासिक स्वीडन यात्रा की शताब्दी को समर्पित है। इन पहलों के अलावा दोनों देशों ने लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिट यानी लीडिट के तीसरे चरण की घोषणा करी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्ष से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
2: नियम स्थापित ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തയും
0: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के 20 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई कैबिनेट में शामिल 16 सदस्य पहली बार मंत्री बन रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के 11 प्रतिनिधि हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चिनिथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पीके कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं।

0: शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नई बनी सरकार ने अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वी डी सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में केरलम की नई सरकार को हर संभव सहयोग का आश्वासन देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी बोर्ड, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत 1 जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को रोकने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी। इन विभागों के तहत छात्रवृत्ति योजनाएं जारी रहेंगी। राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृत किया है। राज्य की महिलाओं के लिए 1 जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 3,000 रूपये हस्तांतरित किए जाएंगे। एक ऐतिहासिक फैसले में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। ग्रुप बी पदों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है। ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने 2 प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जिसमें आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है। केंद्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से वसंत कुंज तक के पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में हौसला इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती।
1: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है, पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएं पूरे देश और दुनिया भर में और भी तेजी से फैलें। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक परिवहन और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज मेरा भारत मेरा योगदान में मेट्रो मंडे अभियान के तहत मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने सभी दिल्ली वासियों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की।
2: हम सरकार की ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और हर व्यक्ति जब थोड़ा थोड़ा भी सहयोग इसमें करेगा तो दिल्ली शहर के लिए ये बेहतरीन होगा। हमारे शहर में पॉल्यूशन से लेकर के हर

0: समस्या का इसका समाधान मिलेगा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। 400 नए अत्याधुनिक आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन तथा 60 नए राजमार्ग गश्ती वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किए गए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।
2: आपातकालीन सेवा डायल 112 अभी तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में उपलब्ध थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में कर दिया है। सुरक्षा मानकों और सहायता क्षमता को और मजबूत करने के लिए डायल 112 सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्थान पहचान तकनीक को जोड़ा गया है, जिससे संकट में फंसे व्यक्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का सटीक पता लगाया जा सके। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस व्यवस्था में पैनिक बटन और विशेष निगरानी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले एजेंसी ने इस मामले में आज सुबह दीपक सिंगला के दिल्ली और गोवा में छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से हुए सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। यह हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सड़क दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि इस सप्ताह उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शनिवार तक उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3-5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को

रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्रोताओं। कार्यक्रम का ये पहला गीत हमने लिया है फिल्म सैयारा से। फहीम अब्दुल्ला की आवाज़ है, तनिष्क बागची का संगीत है, गीत के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने।

शादा कार्यक्रम का ये पहला गीत आप सुन रहे थे फहीम अब्दुल्ला की आवाज़ में। फिल्म थी सैयारा। फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से जारी है आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं फिल्म धड़क 2 का ये गीत। दर्शन रावल, जॉनिता गांधी की आवाज़ों में, रोचक कोहली का संगीत है और गीत के बोल लिखे हैं गुरप्रीत सैनी ने।

0: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी रागम आनंद की अटूट रसधार।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं
2: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें,
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
2: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
2: akashwaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
2: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
3: फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं फिल्म बॉर्डर टू का ये गीत विशाल मिश्रा और तुलसी कुमार की आवाज़ों में। विशाल मेहरा का संगीत है, गीतकार है मनोज मुंतशिर।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म बॉर्डर टू का ये गीत। फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं फिल्म धुरंधर का ये गीत। अरिजीत सिंह और अरमान खान की आवाज़ें हैं, शाश्वत सचदेव का संगीत है, गीतकार हैं इरशाद कामिल।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म धुरंधर का ये गीत अरिजीत सिंह और अरमान खान की आवाज़ों में। आइए अब सुनते हैं फिल्म तेरे इश्क में से ये गीत। ए आर रहमान की आवाज़ है और इरशाद कामिल के बोल हैं।

कार्यक्रम का आइए अब सुनते हैं ये अंतिम गीत फिल्म फिल्म है दम लगाकर हाइशा। इस गीत को आवाजें दी हैं कुमार सानू और साधना सरगम ने। अनु मलिक का संगीत है, गीतकार हैं वरुण ग्रोवर।

कुमार सानू और साधना सरगम के गाए इसी गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से अब यहीं संपन्न होता है। अभी आप फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से सुन रहे थे। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 3 बजे हैं। हमारी ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। संध्याकालीन सभा में शाम 5 बजे पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

0: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5 बज रहे हैं। हमारी सांध्यकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ हो रहे हैं। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष में आकाशवाणी से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित कार्यक्रम रिश्ता ये खास है। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में। श्रोताओं, 9 दशकों से आकाशवाणी भारतवर्ष को लगातार अपनी सेवाएं निर्बाध रूप से देता आ रहा है। 8 जून 2026 को भारत में रेडियो प्रसारण के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं और इसी उपलक्ष में आकाशवाणी से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित यह कार्यक्रम है और नाम है रिश्ता ये खास है। और आज के इस कार्यक्रम में हमारी खास मेहमान हैं प्रोफेसर संगीता मिश्रा, जो कि विभागाध्यक्ष हैं इतिहास विभाग की त्रिदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय में। तो आइए उनसे जानते हैं आकाशवाणी से जुड़ी उनकी यादों के बारे में। तो मैडम, आकाशवाणी के स्टूडियोज में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद सर।
0: आकाशवाणी अपने प्रसारण क्षेत्र के जो है 90 वर्ष पूर्ण करने जा रहे हैं मैडम इस बार, और अपने 90 वर्षों का जो ये सफर रहा है इसको हम 90 साल बेमिसाल के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्योंकि आप पिछले काफी समय से रेडियो से भी जुड़ी रही हैं, तो बहुत सारी खट्टी मीठी यादें आपकी आकाशवाणी से जुड़ी हुई रही होंगी। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप आकाशवाणी को कब से सुनती हुई आ रही हैं।
1: बचपन से ही मेरा लगभग देखा जाए तो रुझान रहा है
0: जी।
1: रेडियो में मैं ज्यादातर पसंद करती थी, घर में पढ़ाई वगैरह भी करती थी तो रेडियो रख के बैठती थी अपना, और उसमें कॉम्पिटिटिव चीजें बहुत चीजें सुनती रहती थी। और उसके बाद फिर मैं जब मैंने अयोध्या से अवध यूनिवर्सिटी से
0: जी
1: अपना यूजी और पीजी किया है, पीएचडी भी मेरी वहीं से हुई है, तो उसी दौरान मैंने जब मैं एमए कर रही थी
0: जी,
1: तो मैं वार्ता के लिए वॉइस टेस्ट के लिए फैजाबाद आकाशवाणी में गई, क्योंकि अयोध्या के नाम से प्रसिद्ध है
0: जी मैडम।
1: मुझे वहाँ बुला लिया गया वार्ता के लिए, मुझे 3-3 महीने में बुलाया जाता था। फिर उसी समय वहाँ

0: अनाउंसर की पोस्ट निकली 95-96 का दौर था
1: जी,
0: तो मैंने भर भी दिया था।
1: अच्छा, आप अनाउंसर भी रही हैं आकाशवाणी में?
0: जी जी मैं अयोध्या आकाशवाणी में अनाउंसर भी रही। तो फिर मैं कंपेयर हो गई क्योंकि मैं काफी लेट हो जाता था अनाउंसर में, रात के समय मुझे अयोध्या से फैजाबाद जाना पड़ता था। और फिर मेरी जॉब पब्लिक सर्विस कमीशन से लग गई। फिर जैसे कि मैं पहले वार्ताएं देती थी, वार्ता तो मैं एमएस से ही देने शुरुआत कर दिया था मैंने 92-93 से।
1: अच्छा, ऐसे कौन से विषय थे महत्वपूर्ण जिन विषयों पे आप ज्यादातर जो है वार्ता देना पसंद करती थी?
0: सर जैसे कि नारी के ऊपर हो गया, स्त्रियों के ऊपर हो गया, स्त्रियों की जो अधीनता, प्रारंभिक सोच या स्त्रियों की वर्तमान स्थिति।
1: अच्छा,
0: नारी को हम आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं, हम उनको किस तरीके से समझते हैं।
1: पहले पहल आप एक श्रोता के रूप में आकाशवाणी से जुड़ी रही हैं, तो एक
0: जी
1: श्रोता के रूप में जो आपके अनुभव रहे हैं आकाशवाणी के, वो क्या रहे हैं?
0: श्रोता के रूप में मेरे सर बहुत अच्छे अनुभव रहे हैं क्योंकि मेरे घर में शुरू से भी ये था कि जो है टीवी वगैरह से आंखों को बहुत नुकसान पहुंचता है, तो आप रेडियो सुनिए, रेडियो में कॉम्पिटिटिव बातें होती हैं जो आपके मतलब अंतर्तम को और आपके मन मस्तिष्क को जो है वो बहुत अच्छा वो करेंगी, ज्ञानवर्धक बनाएंगी। तो इसलिए मैं रेडियो की सभी प्रोग्राम, सभी जितने भी इसके आते थे, युवानी आता था, महिला जगत से आता था, यहाँ तक कि जो गीत गायन वगैरह होता है, वो सभी मैं सारे प्रोग्राम सुनती थी और काफी मेरे मुझे काफी इससे नॉलेज मिलती थी, काफी सार्गर्भित रहता था मेरा, काफी इससे ज्ञान, बहुत अच्छा ज्ञान होता था।
1: अच्छा, किस प्रकार के जो कार्यक्रम है आपको सबसे पहले जो सुनना आपको पसंद रहे हैं?
0: स्टूडेंट लाइफ से ही चूंकि मैं जुड़ी रही हूँ वार्ता में भी और सुनने में भी, तो मैं युवाणी को ज्यादा युवाणी से भी सुनती थी और नारी जगत भी सुनती थी।
1: जैसा कि आपने बताया कि आप एक वार्ताकार के रूप में भी आकाशवाणी से जुड़ी रही हैं और कई बार आपने वार्ता भी आकाशवाणी में दी है, आप फिर उसके बाद अनाउंसर भी वहां पर रही हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि एक वार्ताकार के रूप में जो है आपके अनुभव कैसे रहे आकाशवाणी से जुड़े हुए?
0: सर वार्ताकार के रूप में मेरे बहुत अच्छे अनुभव रहे हैं क्योंकि जब मैं जाती थी और उस समय की जो वैसी ज्वलंत समस्याएं रहती थी, बर्निंग टॉपिक्स रहते थे, उनको मुझे दिया जाता था, जब मैं बोलती थी जाकर के तो काफी लोगों के रिप्लाई भी आते थे और काफी मेरा अच्छा परिचय भी होता था और मुझे काफी अच्छा अनुभव वहां से मिलता था। तो ये था, मेरा ज्ञान का वर्धन भी होता था, मेरे सोशल कॉन्टेक्ट भी लोगों से होते थे, जो ज्ञानी लोग रहते थे, इंटेलेक्चुअल तबके के लोग रहते थे कि अच्छा बोला और कुछ परामर्श भी देते थे, इसमें ये भी जोड़ना चाहिए, ऐसे भी होना चाहिए, आगे इस तरीके से होना चाहिए, इसको श्रृंखला के रूप में करना चाहिए, तो मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा।
1: अच्छा, जब फर्स्ट टाइम आप आकाशवाणी में वार्ता देने के लिए गई होंगी तो उस समय आपको कैसा महसूस हुआ होगा?
0: सर जब पहली बार मैं वार्ता देने के लिए गई थी तो थोड़ा सा मुझे हेजिटेशन था क्योंकि मैं अनाउंसर तो बाद में हुई, वार्ता मैंने पहले दिया तो मुझे लगा था कि कैसा रहता होगा, कैसे बोलूंगी। और लेकिन यह है कि जो मैंने किया वहाँ जो थे भी, जो कंपेयरिंग वगैरह में थे, जो मेरा रिकॉर्ड कर रहे थे, उन्होंने मुझे प्रमोट किया, मेरा उत्साह वर्धन किया और एक ही उसमें रिकॉर्डिंग में मेरा अच्छा रहा। मेरी 10 मिनट की रिकॉर्डिंग थी, मुझे याद है कि स्त्रियों के ऊपर थी, तो बहुत अच्छा रहा मेरा जो है, मुझे मेरा मेरी सारी हेजिटेशन जो है खत्म हो गई थी।
1: जो हमारे श्रोता आजकल आकाशवाणी सुन रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं उनको यही संदेश देना चाहूंगी कि आकाशवाणी जो है, जैसे कि कहते हैं कि उसको तो हम टीवी को तो हम सिर्फ स्क्रीन से देखते हैं, लेकिन इसका तो इसको तो हम अपने अंतर्तम मन मस्तिष्क में पूरा ध्यान रखते हैं, पूरा इसको सुनते हैं, तो इससे हमारा बहुत ही ज्यादा ज्ञान वर्धन होता है और ये हमारे अंदर के नेत्रों को जो है खोलती है, जो हमारे अंतर्तम हमारी मानसिकता है उसको पूरा ज्ञान से जो है सराबोर कर देती है और बहुत ही इससे ज्ञानवर्धन होता है, जैसे कहते हैं अप दीप अनुभव।
1: जिस तरह से हम देखते हैं कि आजकल जो है सोशल मीडिया है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म आजकल मौजूद है सूचना ज्ञान मनोरंजन के, तो आज के इस दौर को देखते हुए और पुराने अपने आकाशवाणी को देखते हुए आप क्या डिफरेंस इनमें महसूस करती हैं?
0: सर हम आज के दौर को और पुराने दौर को देखते हुए ये डिफरेंस महसूस करते हैं कि आकाशवाणी जो है वो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा से प्रभावित है, इसमें सारे टॉपिक्स रहते हैं, सभी बिंदुओं को उजागर किया जाता है, ये उच्च वर्ग के लोग के लिए भी, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए भी, सारे वर्गों के लोगों के लिए भी एक ज्ञान की गंगा को प्रवाहित करता है और पूरा हमारी प्राचीन भारतीय जो ज्ञान परंपरा है उससे पूरा प्रभावित है।
1: तो जैसे कि आज इस कार्यक्रम में हमने आपसे बात की, तो आज जो गीत हम इस कार्यक्रम में प्ले करेंगे वो भी आप ही की पसंद का होगा, तो कौन सा गीत आज आप सुनना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से?
0: संत ज्ञानेश्वर फिल्म का एक बहुत ही अच्छा गीत है, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, गंगा बहाते चलो,
1: बहाते
0: बहुत
1: चलो।
0: अच्छा गीत है। हाँ, मैं वही सुनना चाहूंगी।
1: ठीक है, बहुत सुंदर गीत आपने चूज किया है, तो ठीक है मैडम, आप हमारे

आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में आकाशवाणी से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित कार्यक्रम रिश्ता ये खास है। अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। पहले नजर डाल लेते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। पब्लिक स्पीक रात 9:30 पर हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शाम 7:32 पर सुगम संगीत के अंतर्गत सुनिएगा अमिता अग्रवाल के गाए भजन। विविधाक्रम में शाम 6:45 पर डॉक्टर सुरेंद्र सिंह राजपूत से जसवंत सिंह की बातचीत का विषय होगा एड्स, कारण, लक्षण और बचाव। कृषिगत कार्यक्रम में शाम 6:05 पर आप सुनेंगे भेंटवार्ता, बीज वितरण एवं अनुदान योजनाएं। इसके अंतर्गत जिला कृषि अधिकारी जसवीर सिंह तेवतिया से बातचीत करेंगे हिमांशु रंजन। हमारे साथी युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 5:15 पर। फिल्म संगीत छाया गीत शाम 6:55 पर। रात 8:00 गीत संध्या। 8:30 पर एक ही फिल्म से और रात 10:00 आप सुनेंगे भूले बिसरे।

ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम, और अब एक नजर डाल लेते हैं हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। खेल दर्पण कार्यक्रम हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे कल रात 10 बजे। प्रस्तुति होगी आकाशवाणी मथुरा की। शेरी नशिस्त का प्रसारण होगा रात 9:30 पर। प्रतिभागी शायर होंगे इरफान आजमी, सैयद एजाजुद्दीन शाह उर्फ पॉपुलर मेरठी, राशिद रहमान, सरिता जैन और शगुफ्ता परवीन। शेरी नशिस्त का संचालन करेंगे अय्यर शकील। शाम 7:32 पर सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे निशा गौतम की गायी चंद गजलें। रेडियो प्रसारण के 90 साल बेमिसाल के क्रम के अंतर्गत शाम 5 आप सुनेंगे दीपक कुमार सरोहा से प्रमोद सिंह की बातचीत। कृषिगत कार्यक्रम पेश किया जाएगा कल शाम 6:05 पर। युवाणी कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 5:15। रिश्ता ये खास है, ये विशेष कार्यक्रम आप सुनेंगे कल शाम 5। लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा के अंतर्गत कल अपराहन 1:45 पर सुनिएगा सुमित्रा रावत और साथियों के गाए गढ़वाली लोकगीत। लोक संगीत के एक अन्य कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत कल प्रातः 9:25 पर हम आपको सुनवाएंगे सुनीता सिंह के गाए रुहेलखंडी लोकगीत। जिले की हलचल हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे कल प्रातः 9:15 पर। सूरज के साथ साथ ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा कल प्रातः 7:31 पर। बात आसपास की ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल प्रातः 9:50 पर। भारत में रेडियो प्रसारण के 90 वर्षों के उपलक्ष में विशेष कार्यक्रम सुहाना सफर की सजीव प्रस्तुति होगी कल प्रातः 10। दिन में 1:15 पर कार्यक्रम होगा महिला जगत। और फिल्म संगीत आप हमारे केंद्र से सुन सकते हैं गोल्डन हिट्स कार्यक्रम में कल प्रातः 8:45 पर। 10:30 पर गीत तुम्हारे, 11 चित्रपट संगीत, दिन में 12:05 पर सैनिकों के लिए, 12:30 पर मिड डे मेलोडी, दिन में 2:30 पर एक ही कलाकार, शाम 6:55 पर छाया गीत, 8 गीत संध्या, 8:30 पर एक ही फिल्म से और आपकी फरमाइश पेश की जाएगी कल रात 10:30 पर। श्रोताओं, ये थी संक्षिप्त रूपरेखा हमारे केंद्र से आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 यानी 954 kHz पर। संध्या के 5:15 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारे युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युवाणी।

0: हेलो हेलो हेलो दोस्तों, विश यू अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में, जिसमें आज आपके साथ जुड़ी हूँ मैं आपकी अपनी दोस्त और होस्ट अक्षी त्यागी।
1: रू बाबा का एक ही इलाज, ताली बजाओ और टेंशन भगाओ। और हमारे कार्यक्रम का एक ही इलाज, रेडियो उठाओ और नींद भगाओ अपनी रेडियो साथी अलीना और अक्षी के साथ।
0: वाह वाह वाह अलीना, क्या बात कही तुमने।
1: ऑफ कोर्स रू बाबा आए हैं, अब डर डर भी डरेगा।
0: ओ मीन्स क्या है इसका?
1: अरे अक्षी, रू बाबा का कॉन्फिडेंस देखकर ना भूत भी कंफ्यूज हो जाएगा।
0: तुम कहना क्या चाहती हो, मुझे कुछ समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है।
1: अक्षी देखो, कुछ रिलेशनशिप में ना रेड फ्लैग देखते हैं, जैसे कि यहाँ तो लोग सीधे मोंजली का देख लेते हैं।
0: यो तुम क्यों इतना कंफ्यूज कर रही हो?
1: अच्छा छोड़ो ये सब, ये बताओ मोंजली का किस फिल्म में है
0: ऑफ कोर्स भूल भुलैया में
1: और उस फिल्म में एक्टर कौन था,
0: अक्षय कुमार।
1: और ये फिल्म कॉमेडी हिट मूवी भूल भुलैया किस वर्ष रिलीज हुई,
0: बहन एक काम करोगी,
1: बताओ।
0: ये सवाल क्यों ना हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
1: चलो पूछ लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे सेगमेंट पूछो तो जाने के अंतर्गत आपसे आज का सवाल है,
0: कॉमेडी हिट मूवी भूल भुलैया किस वर्ष रिलीज हुई?
1: जिसका सही जवाब आपको लिख भेजना है हमारे फेस

0: पेज आकाशवाणी नजीबाबाद के कमेंट सेक्शन में।
1: अरे अरे अलीना, एक चीज और मुझे याद आ रही है।
0: अरे बताओ।
1: आज तो मंडे भी है, जिसमें हमारा सेगमेंट गपशप अड्डा भी होता है।
0: हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। तो दोस्तों जल्दी से हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 9457078288, और हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन जाइए।
1: और दोस्तों, जब तक आप हमें मिलाते हैं फोन, तब तक हम आपको सुनवाते हैं ये गीत।

है दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से कभी खुदा से कभी जमाने से लड़ा है इतना।

0: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
1: हो जाओगे हंस-हंस कर लोटपोट,
0: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
2: और डोज में क्या है?
1: डोज में है मजा।
3: जी हाँ, मजा आ गया।
4: अरे चिन्नी।
5: हाँ मिन्नी बोल।
4: अरे तुझे पता है?
5: क्या क्या पता है?
4: अरे यही कि गूगल से ना किसी ने पूछा, अगर अचानक से भगवान सामने आ जाए तो क्या करना चाहिए।
5: अच्छा, तो क्या आंसर दिया गूगल ने?
4: गूगल ने कहा कि अगर अचानक से भगवान सामने आ जाए तो तुरंत ऐसे खुश नहीं होना चाहिए।
5: अरे तो भगवान को देख के खुश ना हो तो कैसे खुश हो भाई?
4: अरे पहले कंफर्म करने का कि वो हमारे पास आए हैं कि हम उनके पास गए हैं।
3: जी हाँ, मजा आ गया।
6: तो दोस्तों, स्वागत है हमारे नेक्स्ट सेगमेंट कुछ खास है आज के पिटारे में, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं बेहद ही खास दिन की,
5: यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी इंटरनेशनल म्यूजियम डे की।
6: जी हाँ दोस्तों, हर साल 18 मई यानी आज ही के दिन ये दिवस मनाया जाता है, ताकि लोग संग्रहालयों मीन्स म्यूजियम के महत्व को समझ सकें।
5: क्योंकि दोस्तों, म्यूजियम सिर्फ पुरानी चीजों का ढेर नहीं होता, बल्कि ये हमारे इतिहास, संस्कृति, कला और सभ्यता की पहचान होते हैं।
6: दोस्तों जरा सोचिए, अगर म्यूजियम नहीं होते तो हमें कैसे पता चलता कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, राजा महाराजाओं के हथियार कैसे थे, या हजारों साल पुरानी सभ्यताएं कैसे दिखती थीं?
5: बिल्कुल अक्षी, म्यूजियम्स हमें अतीत से जोड़ते हैं और भविष्य के लिए सीख भी देते हैं। यहाँ रखी हर एक चीज अपने अंदर की एक कहानी छुपी होती है।
6: दोस्तों भारत में कई शानदार संग्रहालय हैं, जैसे दिल्ली का नेशनल म्यूजियम, कोलकाता का इंडियन म्यूजियम और हैदराबाद का सालार जंग म्यूजियम।
5: हाँ अक्षी, इन जगहों पर जाकर ऐसा लगता है जैसे हम इतिहास के किसी पुराने दौर में पहुंच गए हैं।
6: अलीना, तुम्हें पता है आज के टाइम में ना म्यूजियम भी बहुत चेंज होते जा रहे हैं। मींस अब वहां पे ना डिजिटल स्क्रीन हो गई है, 3D मॉडल हो गए हैं और वर्चुअल टूर जैसी सुविधाएं भी वहां पे मिलती हैं।
5: यानी कि दोस्तों, इतिहास अब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसे महसूस भी किया जा सकता है।
6: और सच कहे ना तो एक बार म्यूजियम में घूमना कई घंटों की पढ़ाई से ज्यादा याद रह जाता है।
5: बिल्कुल सही कहा अक्षय तुमने, क्योंकि जब हम किसी पुरानी मूर्ति, पेंटिंग या ऐतिहासिक चीज को अपनी आंखों से देखते हैं ना, तो इतिहास जीवित लगने लगता है।
6: दोस्तों संग्रहालय हमें ये भी सिखाते हैं कि अपनी संस्कृति और विरासत को संभाल कर रखना कितना जरूरी है,
5: क्योंकि जो लोग अपने इतिहास को भूल जाते हैं वो अपनी पहचान भी खो देते हैं।
6: तो आइए दोस्तों, इस अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर क्यों ना हम सब मिलकर एक संकल्प लें
5: कि हमें अपने इतिहास, कला और संस्कृति का सम्मान करना चाहिए
6: और आने वाली पीढ़ियों तक उसकी खूबसूरती पहुंचानी चाहिए।
5: बस हम इतना ही कहेंगे कि अगर आपको मौका मिले तो अपने शहर को किसी म्यूजियम में जरूर लेकर जाइएगा।
6: जी हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही हमारे सेगमेंट में, और अब लेकर चलते हैं आपको कुछ जरूरी संदेश की ओर।
7: बदलो बदलो, आदत बदलो।
8: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
7: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का DD फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवा

0: इसके बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
2: हो जाओगे हंस हंस कर लोट पोट,
1: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज। और डोज में क्या है?
2: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
3: अरे देवर जी, ये बंदूक लेके इतनी देर से दरवाजे पे क्यों खड़े हो? या तो अंदर आ जाओ या बाहर चले जाओ।
4: अरे भाभी, दरअसल बात यह है कि मैं शेर का शिकार करने जा रहा था।
3: अरे तो जाओ ना, जाते क्यों नहीं हो?
4: अरे जाऊँ तो तब ना, जब ये कुत्ता वहाँ से हटे।
2: जी हाँ, मजा आ गया।
3: तो दोस्तों, चलिए अब आपको ले चलते हैं कहानी के उस पार की ओर, जिसमें हमारी आज की कहानी रहेगी सिक्का बदल गया, जिसके राइटर हैं कृष्णा सोपती जी और इसको अपने वर्ड्स में प्रेजेंट किया है हमारी प्रेजेंटर अक्षी त्यागी ने। तो चलिए सुनते हैं ये खूबसूरत सी कहानी।
5: कहानियां सिर्फ शब्दों का मेल नहीं होती, वे समाज, समय और इंसानी भावनाओं का आईना होती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी के उस पार के इस खास सेगमेंट में, जहां हम किसी प्रसिद्ध लेखक की रचना को लेकर अपने शब्दों में नए एहसास और नई संवेदनाओं के साथ रूपांतरित करते हैं। आज मैं अक्षी त्यागी लेकर आई हूँ हिंदी साहित्य की सशक्त लेखिका कृष्णा सोपती की बेहद मार्मिक और संवेदनशील कहानी सिक्का बदल गया का रूपांतरण। समय बदलता है, लोग बदलते हैं और कभी कभी रिश्तों की कीमत भी बदल जाती है। ये कहानी केवल बंटवारे की त्रासदी नहीं, बल्कि इंसानी रिश्तों, टूटते विश्वास और बदलते दौर की कहानी है। एक ऐसा दौर जहां कभी अपने कहलाने वाले लोग अचानक पराए हो जाते हैं और जहां इंसानियत का चेहरा भी हालातों के साथ बदलने लगता है। जब वक्त करवट लेता है तो सिर्फ हालात नहीं बदलते, इंसान के भीतर का सच भी सामने आ जाता है। तो आइए महसूस करते हैं उस दर्द को, उस बदलाव को और उस दौर की खामोश चीखों को। मेरे शब्दों में रूपांतरित कृष्णा सोपती जी की कहानी सिक्का बदल गया, जिसकी शुरुआत हम करेंगे एपिसोड नंबर 1, दरिया किनारे बदलती हवा से। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है चनाब के शांत किनारे से, जहां खद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए शहानी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पो फट रही थी। दूर दूर आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। शहानी ने कपड़े उतार कर एक और रखे और श्री राम करती पानी में होली अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया, अपनी उनिंदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। चनाब का पानी आज भी पहले सा ही सर्द था, लहरें लहरों को चूम रही थीं, वहीं दूर सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल आते पानी के भंवरों से टकराकर कगारे गिर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। शहानी ने कपड़े पहने, इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक न थी, पर नीचे रेत में अगणित पांवों के निशान थे। वो कुछ सहम सी उठी, आज इस प्रभात की मीठी निर्वता में न जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा है। वो पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है, कितना लंबा अरसा है। शहानी सोचती है एक दिन इसी दरिया के किनारे वो दुल्हन बनकर उतरी थी और आज शहानी नहीं, उसका वो पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वो अकेली है। शाहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है, पर नहीं, ये क्या सोच रही है, ये सवेरे सवेरे, अभी भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। शानी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होती घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था, टन टन बैलों की घंटियां बज रही थी, फिर भी कुछ बंधा बंधा सा लग रहा है। जम्मी वाला कुआ भी आज नहीं चल रहा, ये शाहजी की ही असामियां हैं। शहानी ने नजर उठाई, ये मीलों पहले खेत अपने ही हैं। भरी भराई इस फसल को देखकर शहानी किसी अपनत्व के मोह में भीग गई।

0: ये सब शाहजी की बरकतें हैं। दूर दूर गांवों तक फैली हुई जमीनों जमीनों में कुएं सब अपने हैं। साल में 3 फसल जमीन तो सोना उगलती है। शाहनी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज दी, शेरे शेरे, हुसैना हुसैना। लेकिन शाहनी नहीं जानती थी कि आज की ये शांत सुबह उसकी जिंदगी की आखिरी शांत सुबह बनने वाली है, कि ये खामोशी आने वाले तूफान की शुरुआत है और बहुत जल्द उसे अपने ही लोगों की आंखों में अजनबीपन दिखाई देने वाला था। आखिर क्या होने वाला है शाहनी के साथ, जानिए अगले एपिसोड में।
1: तो दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट क्रैश कोर्स की ओर, जिसमें आज रहेगा टोल कलेक्शन, और जिसे बड़े ही फनी वे में सुनाया है, बताया है अलीना ने। तो आइए सुनते हैं क्रैश कोर्स।
2: दोस्तों, इंडिया में 2 जगह आदमी सबसे ज्यादा इमोशनल होता है, एक तो पेट्रोल पंप पे और दूसरा टोल प्लाजा पे। जब फास्टैग से पीप की आवाज आती है ना, तो दिल से बस एक ही आवाज निकलती है कि भाई अभी तो पीछे निकला था। और पता है सबसे फनी बात क्या है, हम रोड पे चलने के भी पैसे देते हैं, मतलब घर से निकलो तो टैक्स, गाड़ी लो तो टैक्स, पेट्रोल भरो तो टैक्स, हाईवे पे चढ़ो अरे सर टोल देना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्रैश कोर्स पैसा वसूल सेगमेंट में टोल कलेक्शन के बारे में। जैसे मैंने स्टार्टिंग की तो आप कुछ समझ ही गए होंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपको समझाती हूँ कि टोल कलेक्शन का असली सीन क्या है, कैसे कंपनीज करोड़ कमाती हैं और कैसे एक छोटा सा बैरियर पूरा बिजनेस एम्पायर बन गया। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि टोल कलेक्शन आखिर होता क्या है। सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनी रोड बनाती है। रोड बनाना मतलब शादी करने जैसा एक्सपेंसिव काम, और वही कंट्रीब्यूशन होता है टोल टैक्स, मतलब आप इसको हाईवे का नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन समझ लें, यूज करो मंथली, नहीं तो एंट्री वाइज पे करते रहो। दोस्तों, टोल बूथ का बिजनेस मॉडल होता क्या है ये भी जान लेते हैं। सपोज एक कंपनी ने 2000 करोड़ लगा के एक्सप्रेसवे बनाया, गवर्नमेंट उसको बोलती है ठीक है तुम 20 साल तक टोल कलेक्ट करो और अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर करो। इस मॉडल को कहते हैं BOT, यानी कि बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। बिल्ड करो, ऑपरेट करो, फिर गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दो। अब कंपनी का प्रॉफिट दोस्तों डिपेंड करता है ट्रैफिक पे, जितनी ज्यादा गाड़ियां उतना ज्यादा पैसा। दोस्तों पता है पहले टोल प्लाजा पे क्या होता था, एक अंकल एग्जैक्ट चेंज ढूंढ रहे हैं, एक ट्रक वाला हॉर्न बजा रहा है, एक आदमी रिसिप्ट पर बहस कर रहा है, और लाइन में पीछे खड़े लोग अपनी लाइफ के डिसीजंस के बारे में सोच रहे हैं। जी हाँ, हुई फास्ट चेक की एंट्री। अब गाड़ी निकली, पीप, और पैसे भाई ऑटोमेटिकली कट गए। कन्वीनियंट है ना? हाँ हाँ दोस्तों, कन्वीनियंट तो है ही, लेकिन थोड़ा सा पेनफुल भी है। सबसे डेंजरस मोमेंट होता है जब फास्टैग पे मैसेज आए लो बैलेंस। उस टाइम तो भाई ऐसा लगता है जैसे बैंक ने ऑफिशियली गरीब डिक्लेयर कर दिया हो। अब पब्लिक का फेवरेट क्वेश्चन है कि भाई रोड का पैसा रिकवर हो गया तो टोल बंद क्यों नहीं होता, और ये सवाल बिल्कुल वैलिड है। दोस्तों कभी कभी लगता है टोल प्लाजा परमानेंट फैमिली बिजनेस बन गया है। एक दिन तो ऐसा आएगा बच्चे अपने बड़ों से पूछेंगे कि ये टोल प्लाजा कितना पुराना है, तो उन्हें बताया जाएगा कि हमारे एंसेस्टर्स देकर गए थे, यानी कि हमारे पूर्वज देकर गए थे। वैसे दोस्तों लोगों का एक कंफ्यूजन होता है, रूट टैक्स भी देते हैं हम, टोल टैक्स भी देते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ, आपका कंफ्यूजन क्लियर कर देती हूँ, रूट टैक्स और टोल टैक्स सेम नहीं होता। रूट टैक्स मेनली कमर्शियल व्हीकल्स देते हैं, जैसे कि बस होती है, ट्रक, टूरिस्ट टैक्सीज, और जब वो किसी स्टेट या रूट पे बिजनेस पर्पस से चलती है ना, मतलब ये एक तरह का परमिशन टैक्स है। और टोल टैक्स वो होता है जो कि हाईवे या एक्सप्रेसवे यूज करने का चार्ज होता है, ये प्राइवेट कार से लेकर ट्रक तक सब दे सकते हैं। तो सिंपल सी लैंग्वेज में ये बात है, रूट टैक्स इज इक्वल टू बिजनेस करने की परमिशन, टोल टैक्स इज इक्वल टू रोड यूज करने की एंट्री फी, ठीक है। और मेन चीज दोस्तों, लोगों का एक फेवरेट सवाल ये भी होता है कि भाई अभी तो 10-15 किलोमीटर पहले टोल दिया था, अब फिर से क्यों देना पड़ रहा है। तो दोस्तों बात ये है, हर टोल प्लाजा अलग रोड स्ट्रेच या प्रोजेक्ट का होता है, मतलब आप एक हाईवे से दूसरे एक्सप्रेसवे या मेंटेन सेक्शन में एंटर करते हो

0: तो नया टोल लग सकता है। जैसे आप लोग मॉल में पार्किंग अलग पे करते हो, मूवी टिकट अलग, वैसे ही हर मेंटेन रोड सेक्शन का अलग चार्ज हो सकता है। हाँ, कभी कभी डिस्टेंस कम लगता है तब पब्लिक को गुस्सा भी आता है और वैलिड भी लगता है। आपकी भी बात बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम जब आप टोल क्रॉस करो तो सिर्फ 100 रुपए का डिडक्शन मत देखो, उसके पीछे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, टेक्नोलॉजी और पूरा करोड़ों का डेली रेवेन्यू छुपा होता है। दोस्तों, रोड सिर्फ ट्रेवल के लिए नहीं बनती, वो इकोनॉमी, फ्यूल एफिशिएंसी और बिजनेस ग्रोथ का बैकबोन होती है, और टोल कलेक्शन उस बैकबोन का रेवेन्यू इंजन है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज के इस क्रैश कोर्स पैसा वसूल सेगमेंट से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।
1: तो दोस्तों, अब आपका कराते हैं इंतजार खत्म और शुरू करते हैं हमारा आज का स्पेशल सेगमेंट गपशप अड्डा।
2: हेलो 9457078288।
3: कौन बोल रहा है?
4: ये है गपशप अड्डा।
3: ये है गपशप अड्डा।
1: तो अलीना, आप देखते हैं कि हमारे पहले कॉलर कौन है।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्कार, गुड
0: जी.
1: इवनिंग
0: नमस्कार, गुड इवनिंग. आपका नाम?
1: जी. मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से बोल रहा हूँ, अविनाश.
0: तो अविनाश जी, आपको कैसा लगा? आप हमारे पहले कॉलर बने हैं.
1: जी, बहुत अच्छा लगा. और जो टोल टैक्स के बारे में जो बताया गया विस्तार से, ये मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा. क्योंकि देखिए, ये सब छोटी छोटी जानकारी हमें कहीं से प्राप्त नहीं होता, ये सब हमें केवल आकाशवाणी के माध्यम से ही प्राप्त होता है. और आकाशवाणी का जो 90 साल का जो सफर रहा, उसमें भी हम सभी को ऐसे ऐसी जानकारी, छोटी छोटी जानकारी जो मिलती है हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, बहुत ही अच्छा फायदेमंद होता है.
0: जी सर. सर, हम हमारी जो कोशिश रहती है पूरी यही रहती है कि हम आप तक सही जानकारी पहुंचाएं.
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल. इसीलिए तो आकाशवाणी को लोग सुनते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जानकारी मिलता है वो सटीक मिलता है और सही मिलता है, और इसमें जोड़ने का काम भी करता है. इसलिए तो भोजन हिताय भोजन सुखाय, इसको एक मूल मंत्र भी है.
0: जी सर. तो जैसे आपकी हमारे कार्यक्रम में पहली कॉल लगी है, तो आज की शाम आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे?
1: आज की शाम मुझे सुना दीजिएगा, मूवी का नाम रहेगा डेंजरस. इसका गाने का बोले हैं, तू ही रब तू ही दुआ.
0: ठीक है सर, तो फिर आपके साथ सुनते हैं ये प्यारा सा गीत.
1: जी, धन्यवाद.

0: हेलो।
1: आपके एक मुस्कुराहट ने हमें बेहोश कर दिया। हम होश में आने वाले थे, फिर आपने मुस्कुरा दिया।
0: अरे अरे, बहुत अच्छा लगा कि हमारी मुस्कुराहट ने आप पे इतना असर किया। तो किस लिसनर से बात हो रही है हमारी?
1: मैं हसीना भी मंसूरी बोल रही, फालदाना का, इंदौर से।
0: हसीना जी, कैसी हैं आप?
1: हम अच्छे मैडम, आप कैसे हो?
0: हाँ, यहाँ पर भी सब अच्छा है, हम बहुत अच्छे हैं। तो जैसे आपकी कॉल आज यहाँ लग गई है, तो आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: इनका नाम है कुदरत का कानून, और लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में गाने के बोल रहे। तुझे कितना प्यार करे, तुझे कितना प्यार करे, आज कहे तू जितना हम तुझे उतना प्यार करे, तुझे कितना प्यार करे। ये सुना दीजिए।
0: हसीना जी, जैसे आपका नाम इतना हसीन है, आपकी आवाज भी उतनी ही हसीन है, तो चलिए सुन लेते हैं आपकी फरमाइश पे ये खूबसूरत सा गीत।
1: शुक्रिया मैडम।

0: हेलो
1: जी नमस्ते।
0: जी, नमस्कार सर। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आप कौन बात कर रहे हैं, आपका शुभ नाम।
1: जी प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ। मैं ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से।
0: जी सर, तो सर जैसे आपका हमारे प्रोग्राम में कॉल लगा है, तो आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: जन्नत फिल्म का सुनवा दीजिएगा गीत आप।
0: जी सर, ओके, तो फिर
1: तो
0: सुनते हैं आप। जी
1: जी
0: सर,
1: मैं जानना चाहूंगा आपके यहाँ पे मौसम कैसा है अभी।
0: सर गर्मी तो हर जगह है और यहाँ पे भी काफी गर्मी है।
1: हाँ बस यही जानना था मुझे, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो 45-46 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है अभी।
0: अच्छा, नहीं सर, यहाँ
1: मतलब
0: तो
1: दिन में
0: बहुत
1: तो
0: गर्मी
1: हम
0: है।
1: घर से बाहर ही नहीं निकल पाते, बस सुबह शाम का थोड़ा समय होता है
0: जी
1: जो समय बाहर निकलते हैं, बट तो घर में ही रहते हैं, आकाश में सुनते रहते हैं।
0: जी सर, सुनते रहिएगा और फिर सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, नमस्कार। किस दोस्त से बात हो रही है? हेलो हेलो,
1: हेलो
0: आपको आवाज आ रही है हमारी?
1: जी, मिल रही आवाज? अभी नहीं मिल रही थी।
0: जी, किस लिसनर से बात हो रही है हमारी?
1: मैं लाल मोहम्मद अंसारी, ग्राम करेली पुरानी मस्जिद, जिला बरेली से बोल रहा हूँ। मैम जी
0: जी, लाल मोहम्मद जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया हैं, आप लोग बताएं आप कैसे हैं।
0: हम भी बहुत अच्छे हैं, और आकाशवाणी परिवार में भी सब अच्छे हैं। तो लाल मोहम्मद जी, जैसे आपकी कॉल लगी है, तो आप ये बताइए कि आपका फरमाइशी गीत आज कौन सा रहेगा?
1: जी मेरा फरमाइशी गीत रहेगा, फिल्म का नाम है सनम बेवफा। इसका गीत है कि मुझे अल्लाह की कसम तुमसे प्यार हो गया, लेकिन गीत से पहले चंद लाइनें अर्ज करना चाहूंगा अगर आप इजाजत दे तो।
0: वैसे हमारे पास थोड़ी वक्त की कमी है, लेकिन आप कह दीजिए।
1: चले भी आओ हम तुम्हीं से प्यार करते हैं, चले भी आओ हम तुम्हीं से प्यार करते हैं, ये वो गुनाह है जो हम बार बार करते हैं, जलाकर इस दिल को मोहब्बत में तुम्हारे आने का इंतजार करते हैं।
0: क्या खूब कहा आपने। चलिए लाल मोहम्मद जी, सुनते हैं आपकी फरमाइश पे ये गीत।

तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हमने अपने सेगमेंट पूछो तो जाने के अंतर्गत आपसे किया था एक सवाल, और हमारा आपसे सवाल था कि कॉमेडी हिट मूवी भूल भुलैया किस वर्ष रिलीज हुई, जिसका सही जवाब है 2007। तो अब आइए देखते हैं कि कौन कौन हमारे दोस्त सही जवाब देने वाले शामिल हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं हमारे दोस्तों के नाम, तो जिनमें शामिल हैं अनिल विनोचा जी, आसिफ चौधरी, भागवत चौबे लाडला जी, रेहाना खान, राजकुमार डूडी, उत्तम कुमार भगत, सुदर्शन शाह, मोहम्मद हाफिजुर रहमान, दिनेश वर्मा, सुरेश गगनेजा, दिग्दर्शन गौर, रामकुमार रेवार।

रविकुमार रविकुमार राहुल मोहम्मद महेंद्र मोदी परवीन चौहान फागुन यादव लाल मोहम्मद अंसारी दुर्गाराम साहू और हमारे बहुत सारे दोस्त इसमें शामिल हैं।

0: तो दोस्तों ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम, हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम्स आपको कैसे लग रहे हैं आप हमें खत के जरिए बता सकते हैं। हमारा खत के लिए पता है कार्यक्रम युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड 246763।
1: इसी के साथ दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप नंबर को भी नोट कर सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, और अपडेटेड रहने के लिए हमारा फेसबुक अकाउंट है आकाशवाणी नजीबाबाद और इंस्टाग्राम आईडी है @आकाशवाणी नजीबाबाद। साथ ही हमारे पुराने प्ले, कहानियां, आने वाले प्रोग्राम्स हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी नजीबाबाद पर आप सुन सकते हैं। आप सभी लाइक, शेयर, कॉमेंट, फॉलो, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी साथ ही अक्षी त्यागी
0: और अलीना को दीजिए प्रोग्राम संपन्न करने की इजाजत। नमस्कार, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। संध्या के 6 बज रहे हैं। अब आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गौर स्टोर ने ओस्लो में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत नॉर्वे संबंधों को हरित रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की, जो स्वच्छ ऊर्जा, नीली अर्थव्यवस्था और हरित परिवर्तन के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: भारत और नॉर्वे की ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पूरे विश्व के लिए लाभदायक होगा। नॉर्वे आज इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ रहा है। दो बड़े मैरिटाइम देश होने के नाते हम साथ मिलकर मरीन इकोनॉमी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और कैपेसिटी बिल्डिंग में सहयोग को मजबूत करेंगे।
1: वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार तथा निवेश, चक्रीय अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष और आर्किटेक्ट क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई। दोनों नेताओं ने भारत EFTA व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते से उत्पन्न होने वाली विशाल अवसरों, विशेष रूप से व्यापार, प्रौद्योगिकी सहयोग और रोजगार सृजन के क्षेत्र में भी प्रकाश डाला। वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे को धन्यवाद दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वियतनाम की राजधानी हनोई पहुंचे। वे आज से वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि इस दौरान सामरिक सहयोग बढ़ाने, रक्षा औद्योगिक साझेदारी मजबूत करने, समुद्री सहयोग सुदृढ़ करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के दौरान आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस के पर्याप्त भंडार हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। विदेश मंत्रालय खाड़ी के अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास 2400 घंटे हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने अमेरिका के साथ बातचीत करने के अपने निर्णय को उचित ठहराया है और कहा है कि कूटनीति

0: में गरिमा जरूरी है, लेकिन ईरान अपने राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा करना जारी रखेगा। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरेनियम के भंडारों, प्रतिबंधों में राहत और पश्चिम एशिया में महीनों से जारी संघर्ष के लिए क्षतिपूर्ति को लेकर बातचीत में गतिरोध रहते हुए ईरान को नई चेतावनी जारी की है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 जगहों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। अब तक की जांच में परीक्षा से जारी हुए रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रश्न पत्रों के वास्तविक स्रोत का पता चला है। प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच करने वाले आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के दौरान महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों की जांच करने वाले आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अंक तालिका में तीसरे स्थान पर मौजूद हैदराबाद जीत दर्ज कर प्लेऑफ के और करीब आना चाहेगा, जबकि चेन्नई की नजर शीर्ष 4 में प्रवेश करने की होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारे किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया हिमांशु रंजन की राम राम। और सुनाइए किसान भाइयों, कैसे हाल चाल हैं आपके? भैया देखो, हाल चाल तो आपके ठीक होंगे, और भैया खेती किसानी भी अच्छी चल रही होगी। भाई देखो, अब मई का दूसरा पखवाड़ा भैया शुरू हो गया, तो भैया देखो गर्मी बड़ी कैड़ी पड़ रही है। तो भैया इस कैड़ी गर्मी में भैया हमें देखो कई सारे ऐसे काम हैं भैया जो करने पड़े हैं। हमें खुद का भी ध्यान रखना है, हमें अपनी खेती बाड़ी का भी ध्यान रखना है, और भैया हमें अपने पशु का भी ध्यान रखना। क्योंकि भैया देखो, अगर हम खुद का ध्यान नहीं रखेंगे और हम भैया बीमार पड़ जाएंगे तो हमारी खेती बाड़ी कैसी चलेगी? क्योंकि भैया देखो, किसान तो भैया देखो खेतों पर डटे ही रह में, और खेती बाड़ी का काम भैया कभी पूरा होता ना। तो हम तो अपने किसान भाइयों से यही कहेंगे कि भैया देखो, एक तो खेती बाड़ी का काम हमें सुबह और शाम को करना, क्योंकि भैया उस समय तेज धूप नहीं रहती और भैया ठंड ठंड में हमें अपना काम निपटा लेना है। अब भैया बात हम कर रहे हैं पशुओं की, तो देखो जब हम पशुओं की बात कर रहे हैं, क्योंकि भैया डेयरी व्यवसाय हमें उनसे चलाना, तो हमें अपने पशु का खास ख्याल रखने की आवश्यकता होती है। क्योंकि भैया देखो, हम तो बता देंगे कि हमें गर्मी लग रही है या सर्दी लग रही है या भैया कुछ और हो रहा, लेकिन हमारे पशु भैया कह नहीं पाते। तो हमें अपने पशु का खास ख्याल रखना है। सबसे पहले हमें पशुशाला प्रबंधन पर ध्यान देना, और भैया अगर हमारी पशुशाला स्वच्छ होगी, साफ होगी, हवादार होगी, तो भैया हमारे पशु को कोई भी परेशानी ना होनेगी। अब भैया बात आती है पशुओं की, तो भैया हमें पशु को स्वच्छ और ताज़ा पानी पिलाना है। साथ ही भैया हमें उनके जो खाने पीने की व्यवस्था है, यानी कि जो हम हरे चारे की बात करें, तो चारा हर पर्याप्त मात्रा में हमें देना है। और भैया एक काम अगर हम और कर पाएं कि पशुओं को सुबह और शाम जरूर नहलाएं, यो काम अगर हम करेंगे तो भैया हम पशुओं को इस गर्मी से भैया बचा सकते हैं। साथ ही पशुओं को परजीवी से भैया उपचार करावें, और भैया जो हमारे पशु रह गए हैं टीकाकरण से, भैया हमें उन पशुओं का टीकाकरण अवश्य कराना है। अब भाई बात आती है खेती किसानी की,

0: तो भैया हमारी जो भी फसलें खड़ी हैं खेतों में, चाहे भैया हमने गन्ने की फसल लगा रखी हो, कोई सब्जी की फसल है, तो भैया इस गर्मी के मौसम में हमें एक तो पर्याप्त नमी बनाकर रखनी, क्योंकि भैया देखो अगर पर्याप्त नमी नहीं होने की तो हमारी फसल की बढ़वा ठीक तरह से ना होने की। साथ ही भैया हमें खरपतवार नियंत्रण का भी विशेष ध्यान देना, क्योंकि खरपतवार भैया हमारी फसल से प्रतिस्पर्धा करते हैं, और भैया वो भी भूमि से भैया पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व हो गए, पानी है, और भैया कभी कभी तो ऐसा हो गया कि भैया हमारे जो खरपतवार हैं वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं और हमारी फसल धीमी पड़ जा। तो इसलिए हमें अपने खरपतवारों का नियंत्रण, वो भी भैया जैविक विधि से अगर हम करेंगे तो भैया बहुत अच्छा रहेगा। खैर भैया देखो बातें तो हम आज आपसे बहुत करेंगे और भैया करवाएंगे आपका मनोरंजन भी, लेकिन भैया कार्यक्रम में उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुन लेते हैं कुछ ही जरूरी संदेश।
1: आकाशवाणी नजीबाबाद से प्रत्येक मंगलवार को
2: शाम 6:05 पर कृषि जगत कार्यक्रम में सुनिए
1: गुणवत्ता युक्त बासमती धान उत्पादन हेतु
2: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा
1: साप्ताहिक आयोजित कार्यक्रम
2: बासमती

0: कम लागत समृद्ध किसान, यही आज का है अभियान।
1: पोषक तत्व बचाएं, मिट्टी को स्वस्थ बनाएं।
0: यूरिया और डीएपी का संतुलित उपयोग,
1: खुशहाली का नया प्रयोग।
2: किसान भाई अंधाधुंध उर्वरकों के प्रयोग से बचें और खेती की लागत कम करके प्राकृतिक संसाधनों को बचाएं। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोतीपुरम मेरठ और आकाशवाणी नजीबाबाद द्वारा जनहित में जारी।
3: अभी हमारे किसान भाइयों ने सुने कुछ ये जरूरी संदेश और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। चलते हैं किसान भाइयों फिर से खेती किसानी की ओर। किसान भाइयों, आप सब जानते ही हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त करना जरूरी है। किसान भाइयों, बीज शोधन एक ऐसा उपाय है जो कम खर्च में फसल को प्रारंभिक सुरक्षा प्रदान करता है। तो किसान भाइयों, आज हम भी चर्चा इसी बात पर करेंगे कि भैया बीज शोधन का महत्व क्या है और किसान भाई इसे किस प्रकार से कर सकते हैं। किसान भाइयों, बीज शोधन का महत्व किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि भैया खेती की सफलता का आधार अच्छा बीज ही माना जाता है। यदि भैया बीज स्वस्थ रहेगा, रोग मुक्त होगा और अच्छी गुणवत्ता वाला होगा तो भैया फसल का उत्पादन अधिक होगा और किसानों को आर्थिक लाभ मिलता रहेगा भैया इससे। लेकिन यदि बीज हमारा भैया रोगग्रस्त होगा, कीटग्रस्त होगा या कमजोर होगा तो खेत में अंकुरण कम हो जाता है, पौधे कमजोर बनते हैं और उत्पादन घट जाता है। इसलिए बुआई से पहले बीज शोधन करना भैया जरूरी माना जाता है। बीज शोधन करने से बीजों की अंकुरण क्षमता बढ़ती है, पौध जो है हमारे पौधे हैं भैया वो मजबूत बनते हैं और रोगों का प्रकोप भी कम होता है। इससे उत्पादन में वृद्धि होती है और फसल की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। किसान भाइयों, बीज शोधन फसल की शुरुआती अवस्था में कीटों और रोगों से बचाता है। पौधे की प्रारंभिक अवस्था भैया बहुत नाजुक होती है, इस समय यदि कोई रोग या कीट हमला कर दे तो पौधे मर सकते हैं, यानी कि जो हमारी फसल है उसके जो पौधे हैं भैया वो नष्ट हो सकते हैं। बीज उपचार के कारण पौधों को प्रारंभिक सुरक्षा मिलती है और वह सुरक्षा यानी कि भैया जब हम ये सुरक्षा देंगे तो हमारा पौधा स्वस्थ रहेगा, अच्छी तरह से विकसित होगा। इससे किसानों को बाद में जो है अधिक मात्रा में कीटनाशकों और दवाओं का उपयोग नहीं करना पड़ता। इसका भैया परिणाम ये होता है कि लागत कम होती है और पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। किसान भाइयों, आजकल कृषि वैज्ञानिक जो है जैविक तरीके से बीज शोधन पर जोर दे रहे हैं। जैसे भैया अगर हम बात करें जैविक बीज शोधन में ट्राइकोडर्मा आ गया, आपका एजोटोबैक्टर आ गया, राइजोबियम आ गया, पीएसबी आ गया, भैया ये सभी लाभकारी सूक्ष्म जीवों का उपयोग हम अपने जो बीज उपचार है यानी कि बीज शोधन है उसमें कर सकते हैं। ये सूक्ष्म जीव बीज को रोगों से बचाने के साथ साथ पौधों की वृद्धि में सहायता करते हैं। जैविक बीज उपचार पर्यावरण के लिए भी भैया सुरक्षित होता है और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में मदद करता है। विशेषकर भैया अगर हम बात करें तो दलहनी फसलों में राइजोबियम कल्चर का उपयोग करने से नाइट्रोजन स्थिरीकरण बढ़ता है और हमारा उत्पादन में वृद्धि होती है। और भैया देखो, जहाँ तक बात हम बीज शोधन की कर रहे हैं तो बीज शोधन करते समय भैया कुछ सावधानियाँ भी आवश्यक हैं। दवाओं का उपयोग हमेशा भैया वैज्ञानिक की सलाह के अनुसार करना चाहिए। अधिक मात्रा में दवा उपयोग करने से बीज की अंकुरण क्षमता प्रभावित होती है। उपचार करते समय हाथों में दस्ताने और भैया चेहरे पर मास्क का उपयोग करना चाहिए। साथ ही भैया देखो, हम यही कहेंगे कि बीज शोधन से पर्यावरण संरक्षण में भी सहायता मिलती है, क्योंकि इससे रोगों और कीटों का प्रारंभिक नियंत्रण हो जाता है, इसलिए खेत में बार बार रासायनिक दवाओं के छिड़काव की आवश्यकता कम पड़ती है। इससे मिट्टी, पानी और वायु प्रदूषण कम होता है तथा भैया लाभकारी कीटों और सूक्ष्म जीवों की सुरक्षा होती है। अब भैया देखो, बात यही निकल के सामने आई है कि भैया बीज शोधन जरूरी है, क्योंकि अगर हम बीज को उपचार करके यानी शोधित करके बोएंगे तो भैया हमारी फसल लहलाएगी, और भैया देखो जब हमारी फसल अच्छी होगी तो भैया हमें लाभ होगा, और देखो भैया जब लाभ की बात आती है ना तो भैया हमारा मन गीत संगीत को करता है, मन प्रसन्न होता है। तो किसान भाई ज्यादा देर ना करते हुए आइए सुनते हैं ये प्यारा सा लोकगीत।

0: खेत की तैयारी कर रहे होंगे, अपने जो खेत हैं उसमें गहरी जुताई कर रहे होंगे, जिससे वो अपनी जो आने वाली फसल है, अब आने वाला समय हमारा खरीफ का है और खरीफ की तैयारी में हमारे किसान भाई लगे हुए हैं। तो इस संबंध में आज हम जानकारी लेने के लिए आ पहुंचे हैं श्री जसवीर सिंह देवतिया जी के पास, जो कि जिला कृषि अधिकारी हैं बिजनौर। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार हिमांशु जी, सभी जनपद के किसान भाइयों को नमस्कार।
0: तो श्री जसवीर सिंह जी, आपसे आज हमारा बातचीत का जो विषय है वो है बीज वितरण एवं अनुदान योजनाएं। तो सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अब आने वाला समय खरीफ का है, हमारे किसान भाई खरीफ फसलों की तैयारी में लगे हैं, तो सर कौन कौन से बीज वो यहाँ से वो प्राप्त कर सकते हैं?
1: तो जनपद के सभी किसान भाइयों को मैं ये अवगत कराना चाहता हूँ कि जो खरीफ में हमारे यहाँ जो बीज उपलब्ध हैं, जो 50% अनुदान पर हैं
0: जी,
1: कुल मूल्य का, सबसे अच्छी धान की प्रजातियों के बीज, अच्छी वैरायटियों के बीज, जैसे धान का 900 क्विंटल हमारे पास अभी बीज उपलब्ध है।
0: जी
1: इसके अलावा हमारे पास मूंग और उड़द के बीज भी 50% अनुदान पर उपलब्ध है।
0: जी
1: और सबसे अच्छी बात यह है कि जो मिलेट्स है श्री अन्न योजना,
0: हाँ जी,
1: उनके निशुल्क बीज, फ्री के बीज जो मिनी किट्स हैं हमारे पास में 2-2 केजी के,
0: जी
1: वो किसानों के लिए उपलब्ध हैं। जैसे उसमें बाजरा है, सावा, कोंदो, मडवा, रागी, इस तरीके के बीज हमारे यहाँ उपलब्ध हैं।
0: बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा बताया कि जो मोटे अनाज वाली फसल है, चाहे वो बाजरा, सावा, कोंदो, मंडुवा, रागी, इनके बीज यहाँ पर निशुल्क उपलब्ध हैं।
1: ये उपलब्ध के लिए सबसे पहले किसान भाइयों को जो हमारा पोर्टल है कृषि विभाग का, उस पे पहले बुकिंग करानी होगी।
0: जी जी,
1: जिन किसान भाइयों का पंजीकरण है किसान पारदर्शी पोर्टल पर, दर्शन वन पोर्टल पर, वो किसान भाई कहीं से भी अपनी मोबाइल से भी बुकिंग कर सकते हैं। जो हमारे फील्ड के कर्मचारी हैं वर्क थर्ड के, तो उनसे संपर्क करते हुए अपनी बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग अभी खुली हुई है, चाहे वो धान के बीज के लिए हो, मूंग, अरड़, जितनी भी प्रजातियों के बीज हैं वो बुकिंग के आधार पर मिलेंगे। अगर हमारा टारगेट से अधिक हो जाते हैं तो हम उसमें लॉटरी करेंगे, पर मिलेट्स की जैसे बुकिंग अभी खुली हुई है और हमारे पास अच्छी खासा 275 पैकेट अभी हमारे पास हैं उपलब्ध।
0: जी
1: और कोई किसान भाई गन्ने के साथ भी करना चाहे, सह फसली में भी करना चाहे, मूंग और अरहर की खेती, वो तो वो कर सकता है, पर उसके लिए अनुरोध ये होगा कि वो अपनी बुकिंग पहले कराए किसान भाई।
0: बिल्कुल सर, जैसे हम अभी मोटे अनाजों की बात कर रहे हैं, आपने बताया कि बाजरा, सावा, कोंदो, मंडुआ का बीज अभी यहाँ पर उपलब्ध है, वो भी मुफ्त में। तो सर, अभी हमने इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर मनाया था और हमारा किसान जो है इस समय केवल 1-2 फसलों के पीछे लगा है, जिससे उसकी भूमि की उपजाऊ क्षमता भी कम हो रही है और हम मानव का स्वास्थ्य पर भी इसका कुप्रभाव पड़ रहा है। अगर हमें एक संतुलित भोजन की बात करें तो उसमें पहले के जमाने में हम देखते होंगे कि जो मंडुआ है, सावा है, कोंदो है, इन सब की बात करें तो हमारी प्लेट्स में होता था, अब वो हमारी प्लेट से गायब हो गया है। तो सरकार भी इस ओर बढ़ावा दे रही है कि किसान मिलेट्स पैदा करें,
1: जी।
0: तो इसके लिए सर, ये किसान बीज की प्राप्ति कैसे करें, कहाँ से उनको ये ऑनलाइन ऑफलाइन इसका रजिस्ट्रेशन करना होगा, और क्या इसके बीच में भी कोई एक निश्चित जो समय है उस समय सीमा का अंतर करना है, तो वो भी आप बताइए सर हमारे किसानों को।
1: ये सभी किसान भाई जो हमारे ब्लॉक स्तर पर बीज वितरण केंद्र हैं, ब्लॉक की ही परिसर में होता है
0: जी,
1: तो वहां पर ये सभी बीज मिलते हैं, चाहे रबी खरीफ के जो बीज हैं। इसके अलावा जैसे ढैचे का भी बीज हमारे पास अभी 500 क्विंटल हमने मंगाया है, तो ये भी है। और इस जो मिलेट्स के लाभ हैं, जो संतुलित पोषण आहार जो मिलता है, उसके लिए हम मेले, गोष्ठी, प्रचार प्रसार भी करते रहते हैं और बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि यहाँ 80% गन्ना बेल्ट है। तो मेरा किसान भाइयों से अनुरोध होगा तो किसान गन्ने के साथ साथ जो मिलेट्स के बीज हैं वो अपने लिए भी हैं और स्वास्थ्य के लिए भी हैं, क्योंकि उससे स्वावलंबी भी बनता है, आदमी का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तो उसका प्रचार प्रसार भी करते हैं। और सभी किसान भाइयों से अनुरोध होगा हमारा कि हमारे बीज गोदाम पे ही बीज उपलब्ध हैं, तो वहां बुकिंग करा के उन बीजों को प्राप्त कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सर, और सर जैसे आप अभी बता रहे थे कि अभी खरीफ का समय आने वाला है, खरीफ में हमारे किसान भाई धान की बुआई करेंगे,

0: धान का बीज वो कैसे प्राप्त करें और कब तक उनको ये बीज मिल सकता है?
1: अभी हमारे पास स्टोरों पर PBR 126 वैरायटी है, 1842 सभी 19 प्रजाति के बीज उपलब्ध हैं, चाहे तो किसान अपनी बुकिंग करा के ले सकता है। जी स्टोरों पर सभी बीज, जो चाहे मिलेट्स के बीज हो चाहे ढेंचा हो, जो भी कृषि निवेश है वो ब्लॉक परिसर में ही किसानों को मिलेगा, पर बुकिंग उसकी पहले करानी पड़ेगी और बुकिंग के आधार पे बीज मिलेगा।
0: बिल्कुल। अच्छा सर, आपने बताया कि ये बीज स्टोर जो ब्लॉक लेवल पे होते हैं इन सब पर ये बीज उपलब्ध हैं, तो इसके लिए किसान भाई क्या क्या दस्तावेज उनके पास होने चाहिए जो वो बीज लेना चाहते हैं? क्या इसमें कोई सब्सिडी भी मिलती है किसानों को? हाँ,
1: जैसे फ्री के बीज में तो सिर्फ किसानों को एक आधार कार्ड ले जाना होगा
0: जी।
1: बाकी भूमि के अभिलेख आज की डेट में फार्म रजिस्ट्री बन चुकी है किसानों की, जैसे अभी हमारे यहाँ 4.5 लाख किसान है तो हमारी लगभग 90% किसानों की फार्म रजिस्ट्री बन चुकी है, तो आजकल सभी अभिलेख उसी में हैं और हमारी खतौनी आधार से ही किसानों का पंजीकरण 100% सुनिश्चित है, तो एक आधार कार्ड ही काफी है, उसी से ही वो पंजीकरण देख के उसमें उसकी जमीन का उल्लेख मिल जाता है और वो वहां से बीज प्राप्त कर सकते हैं। आधार कार्ड मस्ट है,
0: आधार कार्ड जरूरी है। अच्छा सर, कितने दिन की ये प्रक्रिया है? अगर आज हमारे किसान भाई बीज वितरण केंद्र पर अपना आधार कार्ड लेकर जाते हैं तो कितने दिन की प्रक्रिया है या हाथों हाथ भी इनको बीज उपलब्ध हो रहा है?
1: बीज जैसे अभी बुकिंग चल रही है परंतु अभी बुवाई का सीजन अभी शुरू नहीं हुआ है, धान की रोपाई का है, तो उसके लिए बीज ले सकते हैं एक हफ्ते के बीच में। वैसे तो बीज आज भी उपलब्ध है हमारा, कुछ वैरायटियों का है और जैसे ढेंचे का बीज हमें 2-3 दिन में मिल जाएगा, तो जैसे बुकिंग हो गई है तो हम प्रचार प्रसार समाचार पत्रों में और बाकी सूचना दे देते हैं, बीज ले सकता है। बुकिंग हो गई उसकी और कंफर्म है तो उस बीज 100% मिलेगा।
0: बिल्कुल। तो इस तरह से हमारे किसान भाई बुआई के लिए वो बीज अपने निकट के कोई भी जो भी बीज वितरण केंद्र है वहां से वो प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा सर, अभी हम देख रहे हैं बासमती का रुझान हमारे क्षेत्र में थोड़ा अधिक हो रहा है, तो क्या बासमती की भी कोई प्रजाति हमारे क्षेत्र में उपलब्ध है?
1: हाँ, बासमती क्षेत्र है तो हमारे बासमती की प्रजाति उपलब्ध है, 1509 है, 126 है, ज्यादातर 100% हमारे में बासमती प्रजाति बीज उपलब्ध है।
0: जी सर,
1: यहाँ बासमती की खेती की जाती है।
0: जी जी जी, बिल्कुल सर। अच्छा सर, अभी हम बात कर रहे हैं कि किसान भाई अपने क्षेत्रों में जो मिलेट्स हैं उनकी खेती करें, सर आगे हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या फसल चक्र अपनाने से क्या उनको क्या लाभ मिल सकता है? सर
1: बिल्कुल, फसल चक्र जैसे हम भोजन में परिवर्तन करते हैं तो मेरा अनुरोध होगा गन्ने के साथ सह फसली मिश्रित खेती करें। फसल चक्र से भू परीक्षण की क्रियाएं संचालित होती हैं तो डेफिनेटली किसान अपने आप में वैज्ञानिक और डॉक्टर भी होते हैं, तो सब चीज उनको पता होता है, क्योंकि पश्चिम के किसान मेरा मानना है कि बहुत ही प्रगतिशील कृषक हैं और समय समय पर सभी जानकारी उनके पास रहती है, तो अनुरोध होगा कि वो थोड़ा सा उसमें फसल चक्र अपनाएं। एक ही फसल बोने से उर्वरकता शक्ति कम हो जाती है, जीवांश की मात्रा कम हो जाती है, किसान इस बात को समझते हैं, ये चीजें बिल्कुल डेफिनेटली फसल चक्र का बिल्कुल लाभ।
0: बिल्कुल, फसल चक्र का बहुत महत्व है क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा जो क्षेत्र है वो गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है और किसान के सिर्फ और सिर्फ गन्ने लगाने के चक्कर में ही, अभी आपने देखा होगा 0238 एक वैरायटी थी, अब तो उसको थी कहेंगे क्योंकि वो क्षेत्र से विलुप्त हो चुकी है, बहुत अधिक उसमें बीमारियां लगी और एक तो उसमें गन्ने का कैंसर जिसको बोलते हैं रेड रोट वो उसमें बहुत ज्यादा लगा। तो सर अगर हम आगे बात करें बीजों की तो बीज में सर जो संस्तुत प्रजातियां हमारी जो इम्प्रूव्ड वैरायटी है उनका कितना महत्व है सर?
1: डेफिनेटली 19 प्रजातियां लाभ देती हैं, जैसे हमारे यहाँ सभी गोदामों पर ब्रीडर बीज उपलब्ध मिलता है, अच्छी किस्मों का बीज हम कोशिश करते हैं कि अपने क्षेत्रों पर उसका उत्पादन करें और किसानों के बीच में उसी का ही वितरण कराएं, तो किसानों से अनुरोध होगा कि वो स्टोरों से जो हमारे कृषि निवेश केंद्र हैं उसके अलावा कृषि विभाग के अलावा जैसे गन्ने का बीज गन्ना विभाग देता है, उद्यान के जो फसल फल फूल साग सब्जी है उनका बीज भी उद्यान विभाग से मिलता है, जो संबंधित विभाग जिस क्षेत्र में उनके लिए उत्तरदायित्व निर्धारित है तो डेफिनेटली वहां से आप जो उनके सेंटर हैं जहाँ किसान का भूमि है और जहाँ किसान रहने वाला है उस क्षेत्र के ब्लॉक में ही कृषि निवेश केंद्र होते हैं, वहीं से बीज उपलब्ध होता है।
0: बिल्कुल सर, आपने बताया सर कि अनाज वाली फसल की बात करें वो बीज आपके पास उपलब्ध हैं, दलहनी फसलों के बीज उपलब्ध हैं। अच्छा सर, अगर हम तिलहनी फसलों की बात करें तो क्या तिलहन वाली फसलों के भी बीज आपके पास जो निकट के जो बीज गोदाम है उस पर उपलब्ध होते हैं सर?
1: हाँ बिल्कुल, जैसे हमने पिछले बार सरसों के बहुत मिनी किट्स लगभग 700 क्विंटल बीज हमने निःशुल्क सरसों का बीज किसानों के बीच में बांटा और वो बिल्कुल पूरा निःशुल्क था,

0: उसमें कोई पैसा किसानों से नहीं लिया गया। इसी तरीके से दलहनी फसल के उड़द और मूंग का जो गन्ने के साथ सह फसली खेती थी उसमें भी लगभग हमने 1500 कुंटल मूंग का बीज हमने किसानों को दिया, उड़द का लगभग 700 कुंटल बीज निशुल्क किसानों को दिया था सह फसली खेती के लिए, जिसमें
1: जी
0: कोई पैसा किसानों से नहीं लिया जाता निशुल्क। जैसे मिलेट्स हैं उसके लिए कोई नहीं है, बाकी जो और बीज 19 प्रजातियों के हैं, चाहे वो धान का बीज हो, मूंग हो, उड़द हो, अलग जो योजनाएं हैं उनमें 50% अनुदान पर जो मूल्य होता है उसका आधा मूल्य ही किसानों को देना होता है। पॉस मशीन के माध्यम से जो किसान होगा उसका अंगूठा लगेगा, उसके बाद उस बीज को प्राप्त करेगा। तो जरूरी है किसान का, मतलब किसान भूमि धारक हो और उसका आधार कार्ड हो, उसका पंजीकरण हो, उसी को बीज मिलेगा 50% अनुदान।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात बताई। अच्छा सर, कुछ अनुदान योजनाओं के बारे में अगर हम आपसे चर्चा करें, कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो जिनका किसान भाई लाभ कमा सकते हैं?
0: इसके अलावा हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट जो कृषि यंत्रीकरण योजनाएं हैं, जिसमें 50% जो किसान इक्विपमेंट होते हैं खेती बाड़ी में काम करते हैं, चाहे ट्रैक्टर से लेकर छोटे यंत्र हैं, उन पे सब पे अनुदान मिलता है। फार्म मशीनरी मिलती है, कस्टम हायरिंग सेंटर है उसके लिए बुकिंग होती है, प्रचार प्रसार किया जाता है। जैसे 31 मार्च के बाद अब नई सेशन आएगा तो उसमें बुकिंग खुलेगी, तो वो सब मीडियाओं के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से वो पता चल जाएगा कि पोर्टल खुला हुआ है। तो किसान अपनी बुकिंग करके जो एक टोकन कंफर्म होगा उसके बाद फार्म मशीनरी ले सकता है, कस्टम हायरिंग ले सकता है। इसमें 10 लाख तक की योजना होती है, इसमें ट्रैक्टर और ट्रैक्टर के साथ जो कृषि यंत्र हैं जो उनके उपयोगी जो कृषि कार्य में है, जैसे रोटावेटर है, कल्टीवेटर हैरो है, सीड ड्रिल है, ये कोई भी अपनी जो आवश्यकता के अनुसार जो उपयोगी है वो ट्रैक्टर के साथ 10 लाख तक के जो यंत्र लेगा उसमें 40% अनुदान किसानों को मिलता है। और इंडिविजुअल कोई किसान रोटावेटर या अन्य कोई कल्टीवेटर हैरो है, टिलर है, इन चीजों पे भी 50% जो कुल मूल्य होगा उस पर अनुदान मिलता है कृषि यंत्रीकरण योजना। उसके अलावा सोलर पंप है उस पर भी अनुदान मिलता है। तो अनेक योजनाएं संचालित होती रहती हैं समय समय
1: जी
0: पर।
1: बिल्कुल सर, अगर हम इससे आगे चलें थोड़ा सा, तो अगर सिंचाई की बात करें तो सिंचाई का केवल किसान भाई एक ही तरीका अपनाते हैं कि वो फरो मेथड से जो है बाढ़ सिंचाई विधि से सिंचाई करते हैं, तो सर सिंचाई की क्या कुछ योजनाएं हमारे किसान भाइयों को आप बता सकते हैं जिससे वो लाभ कमा सकते हैं?
0: सिंचाई के ड्रिप इरिगेशन योजना है, हॉर्टिकल्चर और कृषि विभाग से HD पाइप योजना है, और ध्यान विभाग उसमें ड्रिप इरिगेशन ऐसी योजनाएं संचालित होती हैं। उसमें 75% से 90% तक अनुदान मिलता है, पर सभी के क्रियाएं जो ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से ही संचालित होती हैं, पहले उनकी बुकिंग कराई जाती है, उसके बाद में जो टोकन कंफर्म होता है तो किसानों को उसी के आधार पर नियमानुसार अनुदान दिया जाता है।
1: बिल्कुल सर। अच्छा सर, आप ऑनलाइन की बात कर रहे हैं तो क्या किसान भाइयों को कोई वेबसाइट के बारे में बता सकते हैं जहां पर किसान अनुदान के लिए अपना ऑनलाइन प्रक्रिया कर सकते हैं?
0: पिछले 3-4 साल से तो सभी योजनाओं में अनुदान की प्रक्रिया ऑनलाइन ही है, और जो भी योजनाएं कृषि और कृषि से जुड़े LI डिपार्टमेंट में, सब में अब ऑनलाइन प्रक्रिया होती है। उसके टोकन खुलते हैं और उसमें फिर वो कंफर्म होते हैं। जैसे किसान पारदर्शी पोर्टल है, दर्शन वन पोर्टल है, उस पे सभी किसानों के पंजीकरण है। जैसे PM किसान सम्मान निधि जनपद में सभी को मिल रही है, तो ऑलरेडी सभी का रजिस्ट्रेशन है। ऐसे उद्यान विभाग में रजिस्ट्रेशन है, जो उद्यान विभाग के हैं तो वो प्रक्रिया आधार से उसका पंजीकरण वेरीफाई हो जाता है, तो पूरी डिटेल आ जाती है, किसान का नाम, पिता का नाम, गांव, उसकी भूमि, उसमें ऑनलाइन दिखाई दे जाते हैं, तो उस आधार पर उसकी बुकिंग हो जाती है।
1: बिल्कुल सर, आपने बताया किसान पारदर्शी पोर्टल पर किसान जाकर अपनी जो योजनाएं हैं उनको देख सकते हैं, उनका लाभ ले सकते हैं। तो सर चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों को कुछ ऐसा संदेश या कोई ऐसी बात बताना चाहेंगे जिससे वो लाभ कमा सकते हैं?
0: मेरा अनुरोध रहेगा कि गन्ना बाहुल क्षेत्र में किसान जो मिलेट्स योजना है हमारी और दलहनी तिलहनी योजनाएं हैं जिनके बीज हम उपलब्ध कराते हैं किसान भाइयों को, कि फसल चक्र अपनाएं और गन्ने के साथ सह फसली मिश्रित खेती जरूर करें। और गन्ना एक ऐसी फसल है, नकदी फसल है, नो डाउट, इसमें वनरोज का भी कम प्रकोप होता है, वर्षा से भी इसका नुकसान कम होता है, फिर भी ये है कि अपना टेंच विधि के द्वारा खेती करने में तो उनके बीच में कोई भी, चाहे साग सब्जी की फसलें हैं, दलहनी है, तिलहनी है, कोई भी फसल पैदा हो सकती है। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, गंगा जमुना का दबाव का क्षेत्र है, सबसे खुशहाल क्षेत्र है
1: जी।
0: तो मेरा किसान भाइयों से अनुरोध होगा कि वो अपनी खेती के डॉक्टर भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं।

0: अच्छी तरीके से समझते हैं। श्री परिवर्तन प्रकृति का नियम है, सिर्फ अपने आप को बाजार केंद्रित खेती की तरफ रुझान करते हुए आगे बढ़े, उनका उत्पादन भी बढ़ेगा, उनकी आय भी बढ़ेगी और स्वावलंबी बनेंगे।
1: बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात आज आपने बताई और आज आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: धन्यवाद सर।
2: किसान भाइयों, अभी आप बीज वितरण एवं अनुदान योजनाओं से संबंधित विषय पर जिला कृषि अधिकारी बिजनौर श्री जसवीर सिंह तेवतिया जी से इतनी अच्छी की गई बातचीत सुन रहे थे। और भैया देखिए, श्री जसवीर सिंह तेवतिया जी ने बताया कि हमें बीज कहाँ से मिल सकता है, कैसे मिल सकता है और कौन कौन सी अनुदान योजनाएं हैं जिनका हमारे किसान भाई लाभ कमा सकते हैं, और ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर हम अपना जो बीज है वो बुक कर सकते हैं। तो उम्मीद है भाई, जो जसवीर सिंह तेवतिया जी ने बात बताई, अब हमारे किसान भाई सुनकर लाभ कमाएंगे। और भैया देखो, शाम का समय हो रहा है और भैया लाभ एक और चीज़ से होता है, वो है भैया गीत संगीत। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आइए सुनते हैं सेठपाल सिंह की गाई ये प्यारी सी रागनी, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कुछ ये जरूरी संदेश।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

मन चंगे पे घूम लियो। और भैया देखो, ये रागनी गाई थी सेठपाल सिंह के साथियों ने, तो उम्मीद है भैया आपका मनोरंजन हो गया होगा। और भैया अब घड़ी भी इस ओर इशारा कर रही है कि भैया और बातचीत नहीं। तो किसान भाइयों, उठाइए कागज और कलम और लिखिए हमारे कार्यक्रम का पता। पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन है भैया 2467-63। और साथ में भैया एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वो है 9457-07-82-88। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप संदेश भेज सकते हैं कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है या आप हमारे कार्यक्रम में और क्या नया सुनना चाहते हैं। तो भैया अब हम अपने किसान भाइयों से कर लेते हैं राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:45 हो रहे हैं। विविधा क्रम में लीजिए अब सुनिए डॉक्टर सुरेंद्र सिंह राजपूत से जसवंत सिंह की भेंटवार्ता, जिसका विषय है एड्स, कारण, लक्षण और बचाव।
1: श्रोताओं, आज हमारे बीच में हैं आयुर्वेदाचारी डॉक्टर सुरेंद्र सिंह राजपूत। हमारी बातचीत का विषय है एड्स, कारण, लक्षण और बचाव। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
1: तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, एड्स ये आखिरकार है क्या?
2: एड्स जो है, इसको एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम भी कहते हैं, इसका पूरा नाम है।
1: अच्छा।
2: और ये HIV वायरस से होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है, यानी पूर्ण रूप होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस।
1: ये भी एक वायरस से चलने
2: वाली बीमारी है। विषाणु से।
1: आजकल हम देख रहे हैं कि वायरस ने बहुत ज्यादा मानवता को परेशान कर रखा है।
2: अरे साहब, विष जमा अणु, विष का जो अणु होता है वो विषाणु होता है।
1: जी बिल्कुल सही।
2: जो मानव के लिए नहीं, प्राणी मात्र के लिए घातक होता है।
1: हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि विषाणु यानी विष का अणु,
2: जी,
1: जो मानव ही नहीं बल्कि पूरे प्राणियों के लिए,
2: प्राणी मात्र के लिए।
1: जी,
2: एड्स का जो विषाणु, वो HIV, ये मानव की जो शारीरिक प्रतिरक्षा प्रणाली होती है उसको दुर्बल बना देता है, कमजोर बना देता है।
1: मनुष्य की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको कमजोर कर,
2: उसको कमजोर कर देता है।
1: जी बिल्कुल। तो आज ये विश्व में अपने पैर पसार चुका है। तो डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि ये एड्स कैसे फैलता है, इसके कारणों को जरा हमें विस्तार से बताइए।
2: जी जी जी, ये इसका पहला नंबर पर आता है असुरक्षित यौन संबंध, यानी जब जो व्यक्ति असुरक्षित यौन संबंध करते हैं तो उससे फैलता है। दूसरे नंबर पे रक्त का आदान प्रदान।
1: अच्छा।
2: हाँ, यानी किसी दूसरे व्यक्ति का, किसी रोगी व्यक्ति का रक्त किसी दूसरे को चढ़ जाए।
1: अच्छा अच्छा, जैसे हम ये ब्लड डोनेट सेंटर देखते हैं।
2: हाँ,
1: कोई व्यक्ति यदि एड्स से पीड़ित है और वो रक्त डोनेट कर देता है, वो जिसको भी चढ़ाया जाएगा, यानी वो व्यक्ति भी इससे संक्रमित
2: हो जाएगा।
1: अच्छा, और दूसरा एक कारण?
2: और दूसरा है वो माँ से शिशु में संक्रमण द्वारा, यानी किसी, कोई माँ पीड़ित है
1: जी
2: इस रोग से और उसके जो गर्भ फैल जाता है
1: जी,
2: तो जो बच्चा पैदा होगा उसको भी ये रोग होगा।
1: अच्छा, ये 100% संभावना है कि उसको भी रोग होगा।
2: हाँ, हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि नहीं हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि होगा ही।
1: अच्छा अच्छा अच्छा,
2: हो सकता है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ भ्रांतियां ऐसी हैं कि क्या मच्छर के काटने से या किसी और वजह से भी, मान लीजिए एक रोगी को मच्छर काट लेता है, एड्स के रोगी को, फिर वही मच्छर किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, तो क्या एड्स के फैलने की संभावना है?
2: उसमें तो नहीं है।
1: अच्छा अच्छा, चलिए डॉक्टर साहब, ये बात हुई। अब हम ये कैसे जाने कि किसी व्यक्ति को एड्स हो गया है, उसके शरीर में कुछ लक्षण दिखाई देंगे, तो डॉक्टर साहब क्या क्या वो लक्षण है?
2: देखिएगा, जब किसी को HIV का संक्रमण हो जाता है
1: जी,
2: तो उसमें सबसे पहले जो है कुछ हफ्तों के अंदर ही जो है व्यक्ति को, यानी बुखार आना शुरू हो जाता है।
1: अच्छा।
2: गले में खराश हो जाती है
1: जी,
2: और थकान होने लगती है, और जैसे कि फ्लू के लक्षण होते हैं वो लक्षण होने लगते हैं।
1: अच्छा।
2: और जब किसी व्यक्ति को एड्स हो जाता है तो उसमें जो है व्यक्ति के गले में निगलते समय दर्द होता है। अच्छा। सूखी खांसी होती है और पूरे शरीर में थकान का अनुभव होता है, पसीना आता है, बुखार रहता है और भूख नहीं लगती, या रात में पसीना अधिक आता है।
1: अच्छा, तो डॉक्टर साहब अब हम यहाँ ये जानना चाहेंगे, एक प्रश्न यहाँ बनता है कि इसके जो शुरुआती लक्षण है, यदि पता चल जाए शुरुआती लक्षणों का,
2: जी,
1: पता चल जाए कि एड्स होने जा रहा है,
2: हाँ,
1: तो क्या उस समय कोई रोकथाम है?
2: पहले तो इसका रक्त परीक्षण से ही पता लगेगा कि ये एड्स के लक्षण है, ये एड्स ही है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
2: जब तक रक्त परीक्षण नहीं होता तब तक हम कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि ये लक्षण बहुत बीमारियों में होते हैं।
1: अच्छा अच्छा, तो डॉक्टर साहब और क्या क्या लक्षण है एड्स के?
2: जैसे उल्टी आना, मितली आना, पतले दस्त, कभी कभी लगातार दस्त आना, श्रोणि, यानी ये जो कुल्हे होते हैं
1: जी, है,
2: इनमें जो है श्रोणि में
1: घाव होने
2: लगते हैं, सूजन होने लगती है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, जीभ सफेद हो जाती है, त्वचा में ददोरे पड़ जाते हैं, और बिना कारण के वजन घटना।
1: अच्छा अच्छा। हाँ। यानी जब ये सारे लक्षण होंगे, व्यक्ति को भूख भी कम लगेगी,
2: जी जी,
1: और नियमित उसको लूज मोशन हो रहे होंगे,
2: हाँ जी,
1: तो जाहिर सी बात है उसका वजन भी कम होगा।
2: जी जी।
1: अच्छा।
2: और निमोनिया होना, सर में दर्द होना, सांस लेने में कष्ट होना, और स्मृति हानि यानी याददाश्त कमजोर होना।
1: अच्छा, अच्छा,
2: ये भी इसका एक लक्षण है। और लसिका ग्रंथियों में सूजन यानी जो छोटी छोटी गांठें होती हैं उनमें सूजन हो जाती है।
1: ये बिल्कुल आपने सही बात बताई। लेकिन कई बार हम ये देखते हैं कि यदि एड्स के रोगी को ये शुरुआती लक्षण हो रहे हैं
2: जी,
1: तो अभी उसने अपने ब्लड की जांच नहीं कराई है, तो वो इन रोगों का इलाज करने के लिए भागता रहता है
2: जी जी,
1: और बाद में पता चलता है कि उसे तो कुछ और ही रोग है। तो क्या यदि वो बीच में, आपने जैसे बताया कि उसके गले में दर्द होगा या सूखी खांसी होगी, इसका उपचार करा लेता है तो उसको आराम मिलता है? डॉक्टर साहब
2: देखिएगा, आराम थोड़ा बहुत मिलता है।
1: अच्छा,
2: और उसमें कंडीशन ये होती है कि आराम मिला और जैसी दवाई बंद की वैसी फिर हो गया।
1: यानी जैसे शुरू में आपने बताया कि मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता को सबसे पहले ये क्षीण करता है
2: जी,
1: तो इसलिए यदि उसे कोई भी रोग होगा वो उसका उपचार लेगा तो
2: जी
1: उसे आराम नहीं होगा। तो एड्स के और कोई लक्षण जो इसके अतिरिक्त कुछ हो, डॉक्टर साहब उस पर थोड़ी सी चर्चा।
2: इसमें जैसे कि लक्षणों में तो वीकनेस है, कमजोरी है, ये सबसे बड़ा है। व्यक्ति के तेज हीन हो जाता है, उसके चेहरे पर रौनक नहीं रहती है
1: जी,
2: और इसे आयुर्वेद की भाषा में जो है ओझ क्षीण कहते हैं, ओझ क्षीणता
1: जी जी जी जी।
2: यानी कि कोई भी व्यक्ति जैसे उम्र का होता है उसके चेहरे पे एक चमक होती है, नमक होती है
1: जी,
2: तो एड्स के होने पर जो है उसमें वो नहीं होती है, इसका जो है एक लक्षण होता है। ये भी एक
1: उसके चेहरे का तेज जो है कम हो जाएगा,
2: कम हो जाएगा,
1: वो निढाल सा रहने
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: यानी उसको सूरत से ही पता चल जाएगा कि बीमार है,
2: ये बीमार है।
1: अच्छा, ये तो पता चला कि उसको कोई सामान्य बीमारी है, और असली पता तब चलता है जब इसकी
2: रक्त से परीक्षण हो जाता है, जांच हो जाती है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, तो क्या इस एड्स की जांच के लिए कोई विशेष सेंटर यहाँ आसपास में बने होते हैं?
2: देखिएगा, अब तो हमारे जिले में भी बहुत ही सेंटर बने हुए हैं, पैथोलॉजी के टेस्ट होते हैं और सरकारी स्तर पर भी जो इसके टेस्ट होते हैं।
1: अच्छा अच्छा,
2: हाँ,
1: यदि किसी को कोई शंका है तो सरकारी स्तर पर भी वो इसकी,
2: हाँ, सरकारी स्तर पर भी ज्यादा कराएं तो अच्छा रहेगा। हाँ,
1: चलो ये तो बात हुई डॉक्टर साहब के उस व्यक्ति को एड्स हो गया है
2: जी जी,
1: खून की जांच से पता चल गया
2: जी,
1: तो अब इसके क्या उपचार कुछ है?
2: ये एड्स जो है एक लाइलाज बीमारी है, इसका केवल बचाव ही उपचार है।
1: अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही बात।
2: आयुर्वेद में कुछ औषधियां ऐसी हैं,
1: अच्छा,
2: जैसे अश्वगंध है
1: जी,
2: तुलसी है
1: जी,
2: शतावरी वगैरह है, ये इस तरह की दवाइयां हैं, औषधियां हैं जो इसमें दी जाती हैं और भी मिल जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो पाता।
1: जैसा कि डॉक्टर साहब आप चूंकि आयुर्वेद से जुड़े हैं, हमने देखा कि अभी पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रहा, तो उसमें भी आयुर्वेद आगे आया
2: जी,
1: और आयुर्वेद ने ये तुलसी, शतावरी और जो आपने अभी औषधियां बताई, बड़ा लाभ उससे लोगों को मिला। तो डॉक्टर साहब अभी आप बात कर रहे थे कि एड्स का इलाज तो कोई नहीं, हाँ बचाव इसके लिए जरूरी है, तो क्या क्या बचाव रखे जा सकते हैं?
2: देखिए, बचाव के लिए पहले नंबर पर आता है जीवन साथी के अतिरिक्त किसी अन्य से यौन संबंध न रखें।
1: अच्छा चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात हुई।
2: हाँ, और दूसरा यौन संपर्क के समय निरोध का प्रयोग करें, कंडोम का।
1: हाँ, वो जो भी कोई जिस तरह के कंडोम्स आते हैं उनका प्रयोग,
2: उनका प्रयोग करें,
1: करें।
2: हाँ जी, और मादक औषधियों के आदि व्यक्ति के द्वारा उपयोग में लाएगी कोई चीज, कोई सिरिंज या सुई प्रयोग में ना लाए।
1: अच्छा अच्छा, जैसे हम देखते हैं कि आजकल एक ऐसी पीढ़ी भी है जो नशीले पदार्थों का सेवन कर रही
2: जी,
1: है
2: जी,
1: या इंजेक्शन लगा रही
2: जी,
1: है, तो ये तो बात बहुत पहले से चरित्रार्थ है कि हम एक सिरिंज को कभी भी दोबारा प्रयोग ना करें, चाहे वो एक ही व्यक्ति पे दो बार करनी पड़ रही हो। चलिए, ये तो बहुत अच्छा आपने बताया।
2: और एक नंबर है, एक आता है कि एड्स पीड़ित महिलाएं जो है वो गर्भ का धारण ना करें।
1: अच्छा, क्योंकि आपने बताया कि यदि कोई एड्स पीड़ित महिला है तो उसके बच्चे को एड्स
2: हो सकता है।
1: अच्छा,
2: और रक्त की आवश्यकता पड़ने पर

0: बचाओ डॉक्टर साहब।
1: बस इसके बाद में जो है ये डिस्पोजेबल सिरिंज वगैरह जो होती हैं, इनको चिकित्सा प्रयोग में लाने के लिए 20 मिनट तक पानी में उबाल कर ही, जीवाणु रहित करके ही इनको प्रयोग में लाना चाहिए।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, पहली बात तो यह है कि 20 मिनट तक कौन इसे जीवाणु रहित करे, तो दूसरी सिरिंज का ही प्रयोग किया जाए।
1: जी। और दूसरे व्यक्ति का, जैसे कि आजकल कभी कभी कर लेते हैं कि शेविंग करते हुए
0: अच्छा
1: रेजर का प्रयोग कर लेना,
0: जी,
1: यह किसी का रेजर प्रयोग नहीं करना चाहिए।
0: अच्छा, ये भी बिल्कुल आपने सही बात बताई डॉक्टर साहब, क्योंकि उससे भी खतरा
1: उससे भी
0: बराबर
1: खतरा हो
0: बना
1: सकता
0: रहता
1: है।
0: है।
1: हाँ, और साहब ये जो है कुछ पत्ती वगैरह होती हैं, ब्लेड या पत्ती कुछ किसी अपने काम में लाने के लिए, माना कोई ब्लेड या चिमटी कोई ऐसी नुकीली है बहुत
0: जी
1: और दूसरे को चुभ गई
0: जी
1: और फिर वो अपने भी चुभ गई, तो उससे अपने हो जाएगा।
0: अच्छा, बिल्कुल सही आपने छोटी छोटी बातों को बताने का ये प्रयास किया है। तो डॉक्टर साहब, अब ऐसे में यदि व्यक्ति शेविंग कराने कहीं जाता है,
1: हाँ
0: तो वो लेजर तो चेंज करा देता है, जो जिस बार्बर के यहाँ हम जा रहे हैं उसका लेजर चेंज करा दिया, लेकिन यदि उसके उस्तरे पर भी उसके खून के कुछ कण लगे हुए हैं, तो क्या ऐसे में भी संभावना बनी रहती है?
1: देखिएगा, जब वो रेजर शेविंग करता है, शेविंग करने के बाद में उसको साफ तो करता है वो।
0: जी
1: अब शेविंग जो होती है ब्लेड से होती है,
0: जी
1: रेजर से नहीं होती है,
0: जी हाँ
1: तो हमारे त्वचा जो में जो लगेगा वो ब्लेड लगेगा।
0: जी,
1: अगर ब्लेड संक्रमणहीन है तो नहीं होगा।
0: अच्छा, चलिए, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा डॉक्टर साहब, इन जो आपने अभी कारण बताए, क्या
1: जी,
0: इन कारणों के अतिरिक्त भी कुछ और कारण हैं जिनसे एड्स फैल सकता है?
1: इसके कारण और कोई विशेष कारण नहीं होते हैं इसके अतिरिक्त।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एड्स जैसी लाइलाज बीमारी के विषय में कारण, लक्षण और उपचार के विषय में थोड़ा सा बताया, तो डॉक्टर साहब चलते चलते और हमारे श्रोताओं को क्या आप संदेश देंगे कि वो एड्स ही नहीं बल्कि एड्स के जैसे और रोगों से भी बचे रहें?
1: देखिएगा, सबसे पहली बात तो ये है कि हम सब भारतीय आर्य हैं,
0: जी
1: अपने भारतीय संस्कृति के अनुसार ही अपने जीवन को यापन करेंगे तो हमें बहुत सारी बीमारियों से वे स्वयं ही बचे रहेंगे। जो हमारे संस्कार है, हमारी संस्कृति है, उसके अनुसार जो है पर नारी का सेवन ही नहीं होता है,
0: जी बिल्कुल सही कहा
1: तो जब उनसे बचे रहेंगे तो एड्स से स्वयं ही बचे रहेंगे।
0: जी
1: और दूसरे जो है जो ये भी यंत्र वाली बात बताई है तो उसको से बचे रहेंगे।
0: जी। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ राज्य ऐसे हैं हमारे देश में भी जहां एड्स के रोगी ज्यादा संख्या में मिलते हैं, तो वहां हम देखते हैं कि कुछ विवाह से पूर्व भी एक दूसरे का एड्स परीक्षण कराना उन्होंने शुरू कर दिया है।
1: हाँ, ये जरूरी है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये कहता हूँ कि एड्स ही नहीं और भी कई बीमारियां ऐसी हैं
0: जी
1: जिनके लिए रक्त परीक्षण होना जरूरी है। मैं अपने श्रोता से यही कहूंगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने आप को स्वस्थ रखें, अपनों को स्वस्थ रखें और जिंदगी का आनंद लें।
0: आपने इतनी अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: विविधा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सुरेंद्र सिंह राजपूत से जसवंत सिंह की भेंटवार्ता। विषय था एड्स, कारण, लक्षण और बचाव। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत। श्रोताओं, भागती दौड़ती इस जिंदगी में हम सब कितना आगे निकल गए हैं ना। सुबह की जल्दबाजी और शाम की थकान, और इन सब के बीच पीछे छूट गई है वो सुकून भरी जिंदगी, वो फुर्सत के पल जिन्हें आज भी दिल कहीं ढूंढता है। उस बीते हुए सुहाने वक्त को जीना चाहता है। जिंदगी की इसी कश्मकश को शब्दों में पिरोया है गुलजार साहब ने। लता जी और भूपेंद्र जी की आवाज के साथ इसे अमर बना दिया मदन मोहन के संगीत ने। गीत है फिल्म मौसम का। ढूंढता है दिल आज फिर वही शामे गजल, जहां ना कोई जल्दी थी ना कल की थी फिक्र, बस चाय की चुस्की थी, अपनों का साथ था और हवाओं में बहता था बस मोहब्बत का जिक्र।

श्रोताओं, फुर्सत के उन लम्हों में जब हम पुरानी यादों के पन्नों को पलटते हैं तो एक बात साफ नजर आती है। इस पूरी जिंदगी में अकेले चलना किसी को चाहे कितना भी आसान लगे, लेकिन सफर का असली मजा तो किसी हम सफर के साथ ही आता है। एक ऐसा साया जो धूप में छांव बन जाए, एक ऐसा हाथ जिसे थाम कर दुनिया का हर डर छोटा लगने लगे। जब वो साथ होते हैं तो लगता है जैसे कायनात की हर खुशी हमारी झोली में आ गिरी है। संतोष आनंद जी के लिखे इन जज्बातों को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने संगीत से सजाया है और इस एहसास को सुर कोकिला लता मंगेशकर जी अपनी मखमली आवाज देती हैं, तो दिल बस यही गुनगुना उठता है।

ये प्यारा सा गीत अभी आपने सुना फिल्म प्यासा सावन से, लता मंगेशकर की आवाज़, संतोष आनंद की शब्द रचना और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। और इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत अब संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर।

मीडियम वेव 314.4 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त संध्या के 7:15 हो रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। पहले एक नज़र डाल लेते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। पब्लिक स्पीक, ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे रात 9:30 पर। शाम 7:32 पर सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे अमिता अग्रवाल के गाए भजन। फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत आप सुनेंगे, क्षमा कीजिएगा, फिल्म संगीत गीत संध्या आप सुनेंगे रात 8:00। 8:30 पर एक ही फिल्म से और रात 10:00 भोले बिस्तरे गीत। ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम और अब एक नजर डाल लेते हैं कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। कल रात 10:00 खेल दर्पण कार्यक्रम हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। प्रस्तुति होगी आकाशवाणी मथुरा की। शेरी नशिस्त का प्रसारण होगा रात 9:30 पर। प्रतिभागी शायर होंगे इरफान आजमी, सैयद एजाजुद्दीन शाह उर्फ पॉपुलर मेरठी, राशिद रहमान, सरिता जैन और शगुफ्ता परवीन। श्री नशिस्त का संचालन करेंगे अय्यर शकील। सुगम संगीत के अंतर्गत कल शाम 7:32 पर हम आपको सुनवाएंगे निशा गौतम की गाई चंद गजलें।

रेडियो प्रसारण के 90 साल बेमिसाल। इस क्रम के अंतर्गत कल शाम 6:45 पर आप सुनेंगे दीपक कुमार सरोहा से प्रमोद सिंह की बातचीत। कृषिगत कार्यक्रम पेश किया जाएगा कल शाम 6:05 पर। हमारे युवा श्रोता सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी कल शाम 5:15 पर। रिश्ता ये खास है, ये विशेष कार्यक्रम आप सुनेंगे कल शाम 5:00। लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा के अंतर्गत कल अपराह्न 1:45 पर सुनिएगा सुमित्रा रावत और साथियों के गाए गढ़वाली लोकगीत धरती गाती है। लोक संगीत का यह कार्यक्रम पेश किया जाएगा कल प्रातः 9:25 पर और इसके अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे सुनीता सिंह के गाए रुहेलखंडी लोकगीत। जिले की हलचल हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे कल प्रातः 9:15 पर। सूचना ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम सूरज के साथ साथ आप सुनेंगे कल प्रातः 7:31 पर। बात आसपास की, यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा कल प्रातः 9:50 पर। भारत में रेडियो प्रसारण के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम सुहाना सफर आप सुनेंगे कल प्रातः 10:00। महिला जगत कार्यक्रम पेश किया जाएगा कल दिन में 1:15 पर। और फिल्म

0: गीत कल आप हमारे केंद्र से सुन सकते हैं प्रातः 8:45 पर कार्यक्रम गोल्डन हिट्स के अंतर्गत। प्रातः 10:30 पर गीत तुम्हारे कार्यक्रम में। पूर्वाह्न 11:00 चित्रपट संगीत, दिन में 12:05 पर सैनिकों के लिए, 12:30 पर मिड डे मेलोडी के अंतर्गत, 2:30 पर एक ही कला कार्यक्रम में, छाया गीत कार्यक्रम के अंतर्गत कल शाम 6:55 पर, रात 8:00 गीत संध्या, 8:30 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम में और 10:30 पर आपकी फरमाइश कार्यक्रम में। श्रोताओं, ये थी संक्षिप्त रूपरेखा हमारे केंद्र से आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:20 होने को है। कुछ ही क्षणों में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 12 प्रस्ताव पारित। पंचायत चुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और लखनऊ समेत आगरा मेट्रो के विस्तार को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में यूपी ट्रिपल एससी 2024 के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित 932 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र, कहा प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनाने में युवाओं की अहम भूमिका। लखीमपुर खीरी में सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने जताया शोक, मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी, मौसम विभाग ने 22 मई तक अधिकांश जिलों में लू चलने का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में ग्रामीण निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के निर्धारण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई। प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन समन्वय विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि ये आयोग पंचायत चुनावों में पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के लिए उनके सामाजिक और राजनीतिक पिछड़ेपन की जाँच करेगा।
2: माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। आप सब लोग जानते हैं बड़ा प्रदेश है, 59,000 से भी ज्यादा पंचायतें हैं, हमारे सैकड़ों विकास खंड हैं, 75 जनपद हैं। तो पंचायत चुनाव कराने से पहले हमें आरक्षण की व्यवस्था को लागू करना और भी चीजों को देखना है। उसके लिए अब आयोग अध्ययन करेगा और आयोग जैसा रिपोर्ट देगा उसके आधार पर पंचायत के चुनाव की कार्रवाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे।
1: वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 2 प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। इनमें आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है। श्री खन्ना ने कहा कि केंद्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से बसंत कुंज तक के पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृत
3: मंत्री परिषद की दिनांक 5/3/24 को संपन्न बैठक में लखनऊ मेट्रो परियोजना फेज 1B ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर DPR पर माननीय मंत्री परिषद द्वारा अनुमोदन पहले प्रदान किया गया। ये खास तौर से इसी सरकार संबंध में लखनऊ मेट्रो फेज 1B ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर चारबाग से बसंत कुंज परियोजना की अनुमोदित लागत 5,801.05 करोड़ रुपए पर सहमति प्रदान की गई। इसमें 50-50% हिस्सा है भारत सरकार, 50% राज्य सरकार।
1: बैठक में मंत्रिमंडल ने पशु चिकित्सा के छात्रों के इंटर्नशिप भत्ते को 4,000 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 12,000 रूपये प्रतिमाह किए जाने और मिर्जापुर में 2,799 करोड़ रूपये की लागत से बिजली ग्रिड उन्नयन के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित 932 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बीते 9 वर्षों में 9 लाख से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ प्रदेश को विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ाने में राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं ने भी अहम भूमिका निभाई है। परिणामस्वरूप आज प्रदेश देश के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी पहचान बना रहा है।
4: 9 वर्ष की शानदार यात्रा में चुनौतियां थी, लेकिन उन चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया गया। एक टीम भावना के साथ परिणाम लाया गया कि 9 वर्ष में हमने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी, प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी। उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं है, अब तो उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बन करके भारत के विकास में अग्रिम भूमिका के साथ अपने आप को खड़ा कर रहा है।
1: प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कल शाम मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिया गया। नवनियुक्त कैबिनेट मंत्रियों में भूपेंद्र चौधरी को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग सौंपा गया है। वहीं मनोज कुमार पांडे को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग आवंटित किया गया है। सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के रूप में पदोन्नत किए गए अजीत पाल सिंह को राजनीतिक पेंशन के साथ साथ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग दिया है, जबकि सोमेंद्र तोमर को सैनिक कल्याण एवं प्रांतीय रक्षा दल विभाग सौंपा गया है। 4 नवनियुक्त राज्य मंत्रियों में कृष्णा पासवान को पशुपालन और दुग्ध विकास विभाग, सुरेंद्र दिलेर को राजस्व विभाग, हंसराज विश्वकर्मा को लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय और कैलाश राजपूत को ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग सौंपा गया है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज वाराणसी में जिला विकास समन्वय और अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने जिले में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने देश में पेट्रोल, पीएनजी और एलपीजी की उपलब्धता को लेकर लोगों को आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक घरों तक पीएनजी सुविधा पहुंचाना है।
5: भारत एक ऐसा देश है विश्व भर में जिसमें ना कच्चे तेल की, ना पाइप नेचुरल गैस की, ना एलपीजी की कोई कमी हमने होने दी। एक हमने जो बहुत कोशिश की है काशी में, हम ये चाह रहे हैं जो एलपीजी कनेक्शन थे उसको ज्यादा तेजी से पाइप गैस में कन्वर्ट किया जाए। उससे सुविधा लाभार्थियों को भी होगी। एक तो पाइप गैस ज्यादा एफिशिएंट है, उस सस्ती भी है।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण आयात में बाधा के बावजूद देश में रिफाइनरियां सामान्य रूप से काम कर रही हैं। आज नई दिल्ली में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
6: हमारी रिफाइनरीज नॉर्मल ऑपरेशन पर है और हमारे पास सफिशिएंट क्रूड इन्वेंटरीज हैं। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के सफिशिएंट स्टॉक्स हैं और किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर या रिटेल आउटलेट पर ड्राई आउट नहीं है, लेकिन कई जगह पर अफवाहों के चलते पैनिक बाइंग देखी जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि जो बल्क सेल था वो पंप सेल पर भी शिफ्ट हो रहा है।
1: डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल ने अपने क्षेत्रवासियों से आग्रह किया है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के अनुसार डीजल, पेट्रोल के न्यूनतम प्रयोग के साथ साथ सोने की खरीद से बचें। देश भर में ईद उल अजहा यानी बकरीद 28 मई को मनाई जाएगी। कल देश में कहीं से भी चांद दिखने की पुष्टि नहीं हुई। इसके बाद लखनऊ स्थित मरकजी चांद कमेटी फरंगी महल के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद और शिया मरकजी चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास ने बताया कि बकरीद 28 मई को मनाई जाएगी। लखीमपुर खीरी में आज सुबह एक सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रक और सवारी वाहन की आमने सामने से टक्कर हो गई। ट्रक चालक हादसे के बाद घटनास्थल से फरार हो गया। घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया है। साथ ही दोनों ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी है। बीते 24 घंटों में 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बांदा देश में सर्वाधिक गर्म जनपद के रूप में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल से 22 मई तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जिलों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की

0: शंका है। मौसम के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
1: भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और राहत एजेंसियों को अलर्ट मोड में रहने को कहा है। साथ ही सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा है। श्री योगी ने सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल की व्यवस्था और बिजली आपूर्ति बाधित न होने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि अत्यधिक गर्मी और लू के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से बाहर निकले। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 12 प्रस्ताव पारित। पंचायत चुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और लखनऊ समेत आगरा मेट्रो के विस्तार को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में यूपी ट्रिपल एससी 2024 के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित 932 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनाने में युवाओं की अहम भूमिका। लखीमपुर खीरी में सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने जताया शोक। मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी। मौसम विभाग ने 22 मई तक अधिकांश जिलों में लू चलने का किया ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
2: पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
2: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
5: के लिए
6: दीप, तुम्हें नहीं इसे मोबाइल चार्ज करना,
5: दिमाग चार्ज कर अपना।
7: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
5: देखा
6: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
7: अब क्या करोगे?
6: फ्री वाईफाई है ना?
5: बुद्धू सुधर जा।
7: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
6: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
7: RBI कहता है
8: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
9: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
10: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
9: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
10: कहाँ से पता चलेगा?
9: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें।
11: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:32 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत, और इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अमिता अग्रवाल के गाए भजन। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम का ये पहला भजन।
12: घट घट में

कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीब आबाद केंद्र से, और इसके अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं अमिता अग्रवाल के गाए भजन।

सुगम संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे अमिता अग्रवाल के गाए भजन। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। रात के 8 बज चुके हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या, और कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है उदित नारायण और साधना सरगम की आवाजों में। मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा है गीत है और धुन है जतिन ललित की। फिल्म का नाम है जो जीता वही सिकंदर। वो पहली नजर का मिलना, वो धड़कनों का थम जाना, बिना कुछ कहे सब कुछ समझ जाना, यही तो है वो पहला नशा जिसे दुनिया कहती है प्यार, जिसके सामने फीका है इस जहां का हर इकरार।

जो जीता वही सिकंदर, इस फिल्म में भी आपने सुना उदित नारायण और साधना सरगम को। मजरूह का ये गीत और संगीत था जतिन ललित का। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और लीजिए पेश है कार्यक्रम का ये अगला गीत जिसको हमने लिया है फिल्म आशिकी से। अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाजें हैं, समीर का गीत है और नदीम श्रवण का संगीत। दोस्तों, कुछ लोग हमारी जिंदगी में किसी तूफान की तरह आते हैं और सब कुछ बदल देते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सुबह की पहली किरण या ओस की बूंद की तरह बेहद खामोशी से हमारी जिंदगी में कदम रखते हैं। हौले हौले, धीरे धीरे वो हमारी आदतों में, हमारी बातों में और फिर हमारे दिल की धड़कनों में इस कदर शामिल हो जाते हैं कि हमें खुद भी पता नहीं चलता। और एक दिन अचानक एहसास होता है कि उनके बिना तो अब जिंदगी की कल्पना करना भी नामुमकिन है। प्यार का ये धीमा और गहरा रंग बड़ा ही खूबसूरत होता है। तो आइए इन्हीं कुछ एहसासों को समेटे हुए आपको सुनवाते हैं फिल्म आशिकी का ये गीत।

अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू को भी आपने सुना फिल्म आशिकी में। समीर का लिखा ये गीत और इस गीत के लिए धुन तैयार की नदीम शर्मा ने। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ राजवीर सिंह। दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि दिल कहीं खो गया, किसी से प्यार हो गया और आपको खुद ही पता ना चला हो? हाँ भाई, जब प्यार चुपके से दस्तक देता है तो होश उड़ ही जाते हैं। कैसे, चलिए आपको बता रही हैं आशा भोसले और साथी। फिल्म का नाम है दिल तो पागल है, गीत आनंद बख्शी का है और संगीत है उत्तम सिंह का।

दिल तो पागल है, इस फिल्म में भी आपने सुना आशा भोसले और साथियों को। आनंद बख्शी के इस गीत को संगीतबद्ध किया उत्तम सिंह ने, और इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या। ताल, यह नाम है उस फिल्म का जिसका गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। श्रोताओं, वैसे इस फिल्म का हर एक गाना अपने आप में मास्टरपीस है, लेकिन एक गाना ऐसा है जिसे सुनते ही पैर अपने आप थिरकने लगते हैं और रूह झूम उठती है। सुखविंदर सिंह की आवाज और अलका याग्निक की सुरीली तान जब एक साथ मिलती हैं तो माहौल पूरी तरह से सूफियाना हो जाता है। ना होश की दीवारें ना दुनिया का पहरा हो, ना होश की दीवारें ना दुनिया का पहरा हो, जहां धुन हो सूफिया।

सुखविंदर सिंह और अलका याग्निक को भी आप सुन रहे थे फिल्म ताल में। आनंद बख्शी के इस गीत को संगीतबद्ध किया एआर रहमान ने। और अब कार्यक्रम की अंतिम पेशकश फिल्म रॉय से। आवाजें हैं मीत ब्रदर्स और कनिका कपूर की। कुमार का गीत है और संगीत है मीत ब्रदर्स का।

मीत ब्रदर और कनिका कपूर के गाए फिल्म रॉय के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम गीत संध्या अब संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। रात के 8:30 का समय है और ये समय है फिल्म संगीत के कार्यक्रम एक ही फिल्म से का। तो श्रोताओं, एक ही फिल्म से कार्यक्रम में हमारी आज की फिल्म है 1995 में डेविड धवन के डायरेक्शन में गोविंदा और करिश्मा कपूर पर फिल्माई गई ब्लॉकबस्टर फिल्म कूली नंबर वन। एक ऐसी फिल्म जब यह पर्दे पर आई थी तो इसने थिएटर्स में तहलका मचा दिया था। वैसे दोस्तों, इस फिल्म का एक गाना ऐसा है जिसने 90 के दशक में डिस्को और पार्टी में आग लगा दी थी। गोविंदा और करिश्मा कपूर के उस आइकॉनिक डांस मूव्स को भला कौन भूल सकता है, चमकीली पोशाक और धमाकेदार रिदम। तो चलिए, झूमने के लिए अब आप भी हो जाइए तैयार, क्योंकि अब बजने वाला है वही वाला गाना।

चंदना दीक्षित और अभिजीत की आवाज़ों में भी आप सुन रहे थे समीर का लिखा है गीत और आनंद मिलंद के संगीत निर्देशन में। श्रोताओं, चलिए अब थोड़ा माहौल को रोमांटिक बनाते हैं। आज के इस डिजिटल ज़माने में जब लोगों का दिल नहीं लगता तो वो रील्स स्क्रॉल करने लगते हैं या फिर फोन में डूब जाते हैं, लेकिन ये वो दौर था जब दिल बहलाने के लिए इंटरनेट नहीं बल्कि सीधे यार की गली का चक्कर लगाया जाता था। चलिए आपको सुनवाते हैं ऐसा ही खूबसूरत गीत अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में। फिल्म, आपको पता ही है कि आज हम किस फिल्म के गीत आपको सुनवा रहे हैं। एक ही फिल्म से कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कुली नंबर 1 के गीत।

सूचना, ज्ञान एवं मनोरंजन से भरपूर प्रसारण के 90 वर्षों से हम हैं आपके साथ, क्योंकि हम हैं आकाशवाणी।

एक ही फिल्म से कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुन रहे हैं फिल्म कुली नंबर वन के गीत। और अब वक्त हो चला है हमारे आज के शो के इस आखिरी गाने का। श्रोताओं, जब प्यार में दीवानगी हद से पार हो जाए तो आशिक दुनिया की परवाह नहीं करता। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, ना होश की परवाह ना जमाने का डर है, ना होश की परवाह ना जमाने का डर है, जब से तुमसे प्यार हुआ है दिल पूरी तरह बेअसर है।

0: अलका याग्निक और उदित नारायण के गाए इस गीत के साथ ही एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। रात्रि के 8:45 हो रहे हैं। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। पश्चिम बंगाल सरकार ने भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोग गठित किए। और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था लेकर हरित शिपिंग तक के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत की क्षमता, गति और प्रतिभा का उपयोग करते हुए नॉर्वे की प्रौद्योगिकी और पूंजी के सहयोग से भारतीय कंपनियां वैश्विक समाधान विकसित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
2: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
1: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई, ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।
2: रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
1: द्विपक्षीय बैठक में उच्च तकनीक, स्वास्थ्य समाधान, डिजिटल स्वास्थ्य, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने नियम आधारित विश्व व्यवस्था में अपने साझा विश्वास और संवाद तथा कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया।
2: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
1: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और किरेन रिजिजू सहित कई अन्य मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। गृहमंत्री ने कहा कि 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विस्तार का प्रतीक है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह सम्मान मोदी के सशक्त नेतृत्व और विश्वभर में भारत के बढ़ते सम्मान को दर्शाता है। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह सम्मान वसुधैव कुटुंबकम के चिरस्थायी सिद्धांतों के माध्यम से वैश्विक सद्भाव को मजबूत करने के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वीडन के उनके यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे।
3: माना जा रहा है ये 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्ष में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि यही आत्मनिर्भर भारत की सच्ची पहचान होगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और निर्यात भी बढ़ रहा है।
2: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बढ़ा छलांग लेने की सोच और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
1: भारत में परमाणु क्षेत्र में निजी

0: ने कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश में तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
1: कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 पीएनजी कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने पीएनजी कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
0: इस बीच सरकार ने YouTube के उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में केवल 9 दिन का तेल भंडार बचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को भ्रामक बताते हुए कहा कि देश में लगभग 60 दिन के कच्चे तेल का भंडार है और शोधन क्षमता भी पर्याप्त है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं पर अत्याचारों पर गठित आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चैटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नाशिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 स्थानों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है, ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। में छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गोर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Norwegian counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo. Agreed to elevate bilateral ties in green strategic partnership focusing on clean energy and blue economy. Prime Minister Modi awarded Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by King Harald V. Government targets $1 trillion exports this year. Union Minister Jitendra Singh holds talks with US industry delegation on nuclear energy and private investment opportunities in India. West Bengal government sets up 2 inquiry commissions to probe corruption and atrocities against women. And amid extreme heat conditions, Ministry of Ayush issues advisory to prevent heat-related illnesses. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi's first ever visit to Norway has seen a substantial outcome, with both the countries declaring the upgradation of India-Norway relation to green strategic partnership. In a joint statement today, after delegation-level talks with counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo, Prime Minister Modi highlighted that this partnership will ensure increased collaboration in sectors ranging from clean energy to climate resilience, blue economy to green shipping.
1: Aaj hum भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी, उससे लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनी ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी.
0: Prime Minister Modi said the India-EFTA Trade and Economic Partnership Agreement serves as a blueprint for shared progress and prosperity.
1: भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं. पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया. यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है. इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है.
0: द प्राइम मिनिस्टर होप दैट यूजिंग द स्केल, स्पीड एंड टैलेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद द टेक्नोलॉजी एंड द कैपिटल ऑफ नॉर्वे, इंडियन कंपनीज वुड डेवलप ग्लोबल सॉल्यूशंस. Norway will also be joining the Indo-Pacific initiative. Both the leaders reiterated their common belief in rules-based world order and commitment to dialogue and diplomacy. Prime Minister Modi thanked Norway for standing firmly with India against terrorism during that difficult period and described it as a reflection of true friendship.
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी. उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया. आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ.
0: Multiple MOUs were signed in this bilateral meeting in the sectors of high-tech health solutions, digital health and digital public infrastructure. An MOU between India's ISRO and Norway's space agency will ensure deepening of ties in the space sector. A triangular cooperation agreement was also signed today. In this, India and Norway will jointly provide human development solutions to the countries of Global South using India's digital public infrastructure. In a gesture towards closer relations, Prime Minister Modi was awarded the Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by His Majesty King Harald V of Norway. Meanwhile, the Norway-India Business and Research Summit began a short while ago in Oslo. The summit has brought together representatives from government, industry, academia and research institutions of both countries. Mr. Modi reached Norway this afternoon after concluding his visit to Sweden. He said in a social media

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इन दिनों अगर आपके घर में जनगणना कर्मी आकर आपके मकान के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनका सहयोग करें और पूरी जानकारी उन तक पहुंचाएं, क्योंकि देशव्यापी जनगणना 2027 के पहले चरण का काम तेजी से चल रहा है, जिसमें मकान सूचीकरण और मकानों की गणना की जा रही है। इस बार जनगणना कार्यों में पहली बार शुरू की गई है स्वगणना सुविधा, जिसे जनता से काफी उत्साहजनक रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। काफी राज्यों में स्वगणना का जो विकल्प है वो समाप्त हो चुका है और कुछ राज्य अभी बचे हैं। ये पहल जनगणना कार्यों के डिजिटलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और इसे कैसे भरना होगा, किस तरह के सवाल इसमें पूछे जा रहे हैं, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो तुरंत हमें कॉल कीजिए, क्योंकि आज के कार्यक्रम में हम मकान सूचीकरण और आवास गणना पर परिचर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूँ आपके साथ फरहत नाज, और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमने आमंत्रित किया है गृह मंत्रालय की महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप महापंजीयक रुशाली वराड़ी जी को। नमस्कार रुशाली जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
1: नमस्कार और धन्यवाद।
0: श्रोताओं, हमारी फोन लाइन्स खुल चुकी हैं, आप हमारे विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 01123174818, 01123717116, 01123717106 और 01123344 पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लें, 9289094044 पर आप सवाल भेजते रहिए। सोशल मीडिया एक्स पर #AskAIR का इस्तेमाल करके भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और रुशाली जी, सबसे पहला प्रश्न हमारा आपसे ही है कि पहले चरण का काम तेजी से शुरू हो गया है, मकान सूचीकरण और मकानों की गणना किस तरह की जा रही है इसमें, और किस तरह के सवाल इसमें जनता के लिए चुने गए हैं?
1: जी, जैसे अभी आपने कहा कि इस बार पहली बार हम स्वगणना की उपलब्ध फैसिलिटी उपलब्ध है पब्लिक के लिए, तो काफी राज्यों में स्वगणना का पीरियड खत्म हो चुका है, जो कि हमने 15 दिन के लिए रखा था, और एक महीने का समय है जो कि प्रगणक घर घर जाके सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। तो कुछ 7 या 8 स्टेट में हमारी स्वगणना कंप्लीट हो चुकी है और HLO का काम भी कंप्लीट हो चुका है। कुछ राज्यों में स्वगणना अभी चल रही है। तो क्वेश्चन के बारे में अगर हम कहें तो जैसे नाम है इस फेज का मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना, तो इसमें हम सिर्फ मकानों की गणना करेंगे और मकान की हालत कैसी है, घर कैसा है और घर में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे पीने का पानी कहाँ से आता है, पीने का पानी कैसे है, टॉयलेट की सुविधा है या नहीं, बाथरूम की सुविधा है या नहीं, घर में कितने लोग रहते हैं, कितने कपल्स रहते हैं, रूम्स कितने हैं घर पे, और घर में एसेट्स क्या है, जैसे कि रेडियो है या नहीं, टेलीविजन है या नहीं, 2-व्हीलर 4-व्हीलर है या नहीं, तो इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे।
0: जी रुशाली जी, और सबसे पहले हमारे लिसनर हमसे जुड़ गए हैं दिल्ली से, धर्मवीर जी। जी धर्मवीर जी।
2: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार।
2: एक्सपर्ट को भी नमस्कार। मैं धर्मवीर गाने का दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरे सवाल में मैं ये पूछना चाहूंगा कि घर घर जाके आप इसके लिए इंक्वायरी करेंगे, जानकारी लेंगे, और कुछ घरों में जाने का मतलब ये है कि घरों में महिलाओं का होना, क्या जो आपके जाएंगे वर्कर तो उसमें एक महिला भी होगी साथ, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये, जो अगर कोई दिव्यांग है, दिव्यांग का मतलब ये है कि वो अगर उसके पास स्मार्टफोन नहीं है तो कैसे अपने जो पहले आपने कहा था कि इसमें खुद भी ये दर्ज कर सकता है, और इसके लिए हमें क्या क्या, हमें अगर कोई फ्रॉड आ जाता है इंक्वायरी करने के लिए तो ऐसे में हम क्या पहचान करें कि ये आदमी फ्रॉड है कि ये सरकार के भेजा गया ये आपका वर्कर है। धन्यवाद।
0: धर्मवीर जी ने 3 सवाल पूछे हैं रुशाली जी। सबसे पहला सवाल उनका ये है कि अगर महिलाएं घर में मौजूद हैं तो क्या कोई महिला कर्मी भी जनगणना कर्मी के साथ मौजूद रहेंगी?
1: जी, तो पहला जो क्वेश्चन है आपका,

0: अलग से तो नहीं होगी, क्योंकि हमारे जो प्रगणक होंगे वो जनरली होते हैं जो स्कूल के टीचर्स होते हैं या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। हम लोग इंस्ट्रक्शन जरूर देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इसमें अपॉइंट करें, क्योंकि
1: जी
0: उनको इन्फॉर्मेशन, एक फेथफुली अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है।
1: जी
0: बट ये कंपलसरी नहीं है और हर घर में एक ही आदमी जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें पूरे इंडिया के लिए 31 लाख प्रगणकों की जरूरत है। तो इतने सारे लोगों के साथ मतलब और एक महिला जाना
1: जी
0: मतलब संभव नहीं है। लेकिन जो तीसरा सवाल है, मैं इसी के साथ जोड़ देती हूँ, जो फ्रॉड वाली बात इन्होंने
1: जी
0: पूछी है धर्मवीर जी ने, तो फ्रॉड की कोई ये नहीं है, क्योंकि प्रगणक के पास अपना आई कार्ड होगा, उसके पास चार्ज ऑफिसर का सिग्नेचर होगा, उस पे स्टैम्प होगा, प्लस क्यूआर कोड होगा आई कार्ड पे, और अपॉइंटमेंट लेटर पे भी क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं। तो क्यूआर कोड स्कैन होने के बाद हमारी वेबसाइट उस पे आ जाएगी और वेबसाइट पे उसकी डिटेल्स आपको दिख जाएंगे। तो फ्रॉड की बिल्कुल दिक्कत नहीं है, हालांकि हो सकता है,
1: जी
0: लेकिन उसके लिए आप अपने चार्ज ऑफिसर को या लोकल ऑफिसर से बात कर सकते
1: ठीक है।
0: हैं।
1: और दूसरा सवाल इन्होंने पूछा है कि दिव्यांग व्यक्ति फॉर्म कैसे भर सकते हैं।
0: जी, तो दिव्यांग व्यक्ति के लिए जैसे पहले ही बताया मैंने, स्वगणना एक अतिरिक्त फैसिलिटी हम दे रहे हैं, ये कंपलसरी नहीं है। प्रगणक हर घर जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, अगर आपने स्वगणना की है तो भी प्रगणक घर घर जाके फिर से वो वेरीफाई करेगा। तो अगर दिव्यांग कोई है वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, प्रगणक वहां पे जरूर जाएगा और इन्फॉर्मेशन लेके आएगा।
1: और अब हमारे दूसरे लिसनर हरियाणा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेंद्र जी। जी राजेंद्र जी
2: नमस्कार जी, जागृति जी को और विशेषज्ञ जी को नमस्कार। ये
1: नमस्कार, मैं फरहत नाज
2: सारे
1: बात कर रही हूँ राजेंद्र जी।
2: अच्छा
1: जी,
2: सॉरी जी,
1: लेकिन मैं
2: फरहत नाज जी।
1: आपका नमस्कार जागृति जी को भी पहुंचा दूंगी।
2: जी, और मैं ये जानना चाहता है अगर कोई गलत जानकारी देता है या तो कोई उसपे कोई कार्रवाई होगी, या जैसे कोई नोटिस दिया जाएगा जनगणना के बारे में, मकान के बारे में, उसपे क्या कार्रवाई हो सकती है? और जो 33 सवाल पूछे जाते हैं उसमें कुछ ही मेरे से कुछ 2-3 ही सवाल पूछे गए थे, और मुझसे ये पूछा गया था कि आप टीवी देखते हो, तो मैंने उनसे मेरे को ये पूछ लिया था कि आप रेडियो सुनते हो, तो मैंने कहा रेडियो मैं पहला ऐसा शख्स कह रहे मिला है इसके बारे में भी।
1: इनका सवाल था कि रेडियो सुनते हैं कि नहीं, इस तरह के जो सवाल हैं वो पूछे गए थे
0: जी
1: इस
0: जी
1: कल में।
0: एक तो पहला मुझे लगता है इनका सवाल था गलत जानकारी के बारे में। तो पहले मैं बता दूं कि गलत जानकारी अगर कोई देता हो तो सेंसस एक्ट में ये प्रोविजन है कि उसे कोई पनिशमेंट मिलती है। बट उससे ऊपर जो इम्पोर्टेंट बात है कि सेंसस की इन्फॉर्मेशन बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, सेंसस एक्ट में ये मेंशन है कि उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन गोपनीय रखी जाएगी। तो जनरली लोग सही जानकारी देते हैं, और सेंसस एक्ट में ये भी प्रोविजन है कि लोग अपने बिलीफ से, अपने नॉलेज से सही जानकारी दे। जो डेटा रिलीज होता है वो एक एग्रीगेट लेवल पे रिलीज होता है, तो आपके इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक होने की कोई भी संभवता नहीं है। तीसरा जो है, जो हमारे 33 सवाल है वो नोटिफाई हो चुके हैं, गवर्नमेंट के गैजेट में नोटिफाई हो चुके हैं। तो उसमें जो भी सवाल है वो सारे उतने ही एनुमरेटर को पूछने हैं और उनका ही जवाब रिस्पोंडेंट को देना है। ये बिल्कुल सही कहा कि टीवी का सवाल उसमें है, रेडियो का सवाल उसमें है, रेडियो आप किस पे सुनते हैं ये भी उसमें पूछा गया है कि आप मोबाइल पे सुनते हैं या आपके पास रेडियो सेट है या फिर आप कार में सुनते हो। उसी तरह टीवी का भी अलग अलग आप कैसे देखते हो, मतलब दूरदर्शन है आपके पास, फ्री डिश या डीटीएच है या फायर स्टिक है, केबल कनेक्शन है, तो अलग अलग सवाल उसमें है।
1: और अगर किसी भी तरह की हमारे श्रोता दिक्कत उठा रहे हैं, तो आप मकान सूचीकरण और मकान गणना अनुसूची के लिए वेबसाइट को, जो पोर्टल दिया हुआ है, SE.census.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं, और आप सारे सवाल जो है वो इसमें आपको शो हो जाएंगे, किस तरीके के सवाल जो है जनगणना कर्मी पूछ रहे हैं, ताकि आपको आसानी होगी उस समय आपका सवालों का जवाब देने में। और रोशाली जी, एक और प्रश्न हमारे पास आया है कि क्या जनगणना में सभी के लिए शामिल होना आवश्यक है?
0: बिल्कुल, जैसे जनगणना का पहला ही जो मोटो है कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं या किसी को दोबारा गिनती करेंगे नहीं, तो हर एक को इंक्लूड होना है जनगणना में। और जो बार बार मैं जिक्र कर रही हूँ, जनगणना अधिनियम की सेंसस एक्ट 1948, उसके हिसाब से हर एक व्यक्ति को या हर एक परिवार के मुखिया को ये कंपलसरी है कि सही सही जानकारी प्रगणक को दे। और ये प्रगणक की भी जिम्मेदारी है कि जितने सवाल गैजेट में पब्लिश हुए हैं उतने ही सवाल पूछे, उसके बिना और कोई भी सवाल

0: ना पूछे और जो भी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रहा है वो उसको गोपनीय रखे।
1: जी। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति मतलब जॉब की वजह से यहाँ पर रह रहा है, दिल्ली शहर में रह रहा है, लेकिन वो बिलोंग करता है किसी दूसरे राज्य से, तो वो क्या दोनों जगह का जो है उसके लिए भरना जरूरी होगा सेल्फ एनुमरेशन?
0: बिल्कुल नहीं, जैसे मैंने कहा सबको जैसे हम इंक्लूड करते हैं तो डुप्लीकेट भी नहीं करते हैं। तो जहाँ पे जनगणना की ये कंसेप्ट है, जो जहाँ पे नॉर्मली रिसाइड करता है, यानी
1: जी
0: जहाँ पे मैक्सिमम टाइम रहता है, अगर काम के सिलसिले में वो दिल्ली में रहता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन दिल्ली में कलेक्ट होगी। उसके अदर फैमिली मेंबर्स अगर गांव में रहते हैं तो अदर फैमिली मेंबर्स की गिनती गांव में होगी, लेकिन जो जहां पे रहता है वहीं पे उसका काउंटिंग होता है।
1: जी और अब दिल्ली से ब्रह्मदत्त जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी ब्रह्मदत्त जी
2: जी नमस्कार मैडम जी,
1: नमस्कार।
2: हमारे विषय विशेषज्ञ जी को प्रणाम।
0: नमस्ते, प्रणाम।
2: ना मेरे दो जिज्ञासाएं हैं। पहली है कि जो हमारे दस्तावेज हैं दूसरे शहर के बने हुए हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के, और हम दिल्ली में निवास कर रहे हैं, तो क्या हम दिल्ली की जनगणना में सम्मिलित हो सकते हैं? प्रथम प्रश्न। दूसरी है मैडम ये है कि अगर हम घर पर नहीं मिलते हैं तो क्या जनगणना स्टाफ को हम अपने समय के हिसाब से बुला सकते हैं? भाई छुट्टी वाले दिन आ जाना आप, तो क्या ऐसा संभव है? एक अन्य प्रश्न है मैम, जो लोग जनगणना में शामिल नहीं होना चाहते क्या उन लोगों के लिए कोई दंडात्मक कार्यवाही का भी प्रावधान है? धन्यवाद मैडम जी।
0: धन्यवाद ब्रह्मदत्त जी। तो तीनों सवाल आपके बड़े ही अच्छे थे। पहला तो ये है कि जनगणना में कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। आप जो भी इंफॉर्मेशन देंगे वो प्रगणक को नोट डाउन करनी है। इसीलिए हालांकि हम लोग सबसे अपील करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन सही है वही इन्फॉर्मेशन दे दे, और आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गोपनीय रहेगी, किसी के साथ वो साझा नहीं की जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बताती हूँ कि आरटीआई में भी हम इन्फॉर्मेशन देते नहीं है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। कोई कोर्ट में अगर सबूत के तौर पर देने के लिए मांगता है तो उसको भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती एज पर सेंसस एक्ट। दूसरा जो सवाल था आपका, अगर आप घर पर नहीं मिलेंगे तो इसके लिए भी हमारे प्रगणक को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि अगर घर लॉक मिलता है तो 2 या 3 बार वहां पे जाए, छुट्टी के दिन जाए या सुबह जल्दी जाए या शाम को देर से जाए, ताकि घर पे कोई ना कोई मिलेगा। तीसरा जो आपका सवाल था दंडात्मक कार्रवाई का, तो सेंसस एक्ट में ये प्रोविजन है सेक्शन 11 में कि अगर कोई गलत जानकारी देता है तो उसको पनिशमेंट दी जा सकती है।
1: तो यानी कि पूरा सहयोग आपको जनगणना कर्मी के साथ करना है और सही
0: बिल्कुल
1: सही और सटीक जानकारी उन तक उपलब्ध करवानी है। और अब त्रिपुरा से अविनाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अविनाश जी।
3: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
3: जी, मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश चली बोल रहा हूँ, और मेरा सवाल है कि जब जनगणना टाइम पे सरकारी कर्मचारी हमारे घर पे आते हैं तो हम अपना जानकारी उनको प्रदान करेंगे, तो लेकिन हम उनको पहचानेंगे कैसे कि वो सही व्यक्ति आए हैं मेरे घर पे? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई ठगी व्यक्ति भी आ सकते हैं हमारे डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो हम उनको पहचानेंगे कैसे?
0: जी धन्यवाद अविनाश जी। और उसको पहचानेंगे कैसे, तो उनके पास आई कार्ड होगा और अपॉइंटमेंट लेटर होगा, जो कि लोकल चार्ज ऑफिसर, हमारे जो चार्ज ऑफिसर होते हैं वो तहसीलदार या मामलतदार होता है आपके एरिया का, या कोई बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो ये इनका स्टैम्प और सिग्नेचर के साथ प्रगणक के पास एक आई कार्ड होगा, अपॉइंटमेंट लेटर होगा, वो आप चेक कर सकते हैं। उसके ऊपर क्यूआर कोड होगा, क्यूआर कोड स्कैन करके आप देख सकते हैं, उसमें आपको हमारी वेबसाइट से सारे डिटेल मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कोई फ्रॉड हो रहा है तो आप अपने चार्ज ऑफिसर से या एरिया के कोई भी ऑफिसर से उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं।
1: रुशाली जी, एक और प्रश्न मेरे पास आया है कि खाली मकान, बंद मकान या फिर निर्माणाधीन मकान की गिनती किस श्रेणी में होगी और इन्हें कैसे चिन्हित किया जाता है?
0: जी तो हमारे जो मैंने कहा हर एक क्वेश्चन के अलग अलग कोड है, तो जो हमारा जनगणना मकान के कोड है उसमें कुछ कोड है वैकेंट के लिए, कुछ कोड है अंडर कंस्ट्रक्शन के लिए, कोड तो नहीं है बट अगर अंडर कंस्ट्रक्शन कोई बिल्डिंग है उसका छत डाला हुआ है तो उसको हम मानते हैं, क्योंकि मेन जो हमारा है सेकंड फेज जो फरवरी 2027 में होगा, तो हो सकता है अभी जो घर आपका अंडर कंस्ट्रक्शन हो फरवरी 27 तक वहां पे कोई रहने के लिए आ जाए, तो ऐसे इसीलिए उसको हम गिनती अभी कर लेते हैं, उसको नंबर देते हैं और उसको इन्फॉर्मेशन एज अ वैकेंट कर देते हैं और एक रिमार्क डाल देते हैं कि इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, और जो खाली है उसको एक वैकेंट हम मानते ही है। कुछ ऐसे घर भी मिलते हैं कि घर लिया हुआ है लेकिन लॉक है, रहते कहीं और है, तो उसको भी लॉक के कैटेगरी में हम इंक्लूड करते हैं ताकि सेकंड फेज में वो छूटे नहीं।
1: अच्छा

0: में जनगणना मकान नंबर कौन देता है और दीवार पर लिखने का क्या नियम है?
1: ये प्रगणक देता है और नियम है कि एक प्रगणक को एक जो एरिया देते हैं, एनुमरेशन ब्लॉक हम जिसको कहते हैं, छोटा सा एरिया होता है 700 से 800 पॉपुलेशन या 150 घरों का, तो वो पूरे अपने एरिया में सीरियली जनगणना मकान नंबर देता है, एक से लेकर जो भी लास्ट उसके एरिया में होगा तो वो खुद लिखता है। उसके लिए हमने कुछ स्टेशनरी उसको प्रोवाइड की है, मार्कर पेन्स वगैरह दिए।
0: ठीक है, और अब शिमला से हमारे साथ राकेश जी जुड़ गए हैं। जी राकेश जी।
2: जी नमस्कार।
0: नमस्कार
2: जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो घर में रहते तो उनकी तो होती है, जो किराए के मकान पे रहते हैं क्या वो भी जनगणना में आता है? उनको क्या जनगणना करानी पड़ती है जो किराए पे रहते हैं?
1: जी बिल्कुल, जैसे फिर से मैं कह रही हूँ कि जनगणना में किसी को छोड़ा नहीं जाता, किसी को दोबारा गिना नहीं जाता। तो अगर आप किराए के भी घर में रह रहे हैं तो जनगणना का पहला जो रूल है कि जो जहाँ पे रहता है वहाँ पे उसकी गिनती होती है। तो आपका घर खुद का हो, किराए का हो या और किसी का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जहाँ पे रह रहे वहीं पे आपकी गिनती होगी। आपका घर किराए का है या खुद का है ये जानने के लिए हमारा क्वेश्चन है कि घर आपका खुद का है या किराए का है। किराए का है तो उसके लिए भी आपका कोड है कि आपका घर किराए का है, लेकिन आपका खुद का घर कहीं और है तो उससे हमारे पास ये एक नंबर्स आ जाएंगे कि कितने मतलब पूरे कंट्री में या पूरे देश में कितने लोगों के पास खुद के घर है या कितने लोग किराए पे रह रहे हैं।
0: और अब रवि जी जुड़ गए हैं हमारे साथ हरिद्वार से। जी रवि जी।
3: हाँ जी नमस्कार मैम जी, मेरा वीर जवालिया गढ़मीरपुर हरिद्वार से हूँ जी।
0: जी नमस्कार।
3: हाँ जी माँ जी, विशेषज्ञ को भी मेरा नमस्कार जी।
1: नमस्ते
3: जी मैम, मैं जानना चाहता हूँ जी जो हम जनगणना है हमें सहयोग करेंगे, अपनी जानकारी देंगे, वो कितनी गोपनीय रखी जाएगी मैम?
1: जी बिल्कुल, ये पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और कितनी रखी जाएगी इसके लिए मैं एक ही जवाब दे सकती हूँ कि आप भी मांगेंगे बाद में तो आपको भी नहीं दी जाएगी, इतनी गोपनीय रखी जाएगी। क्योंकि पूरी जानकारी एज पर सेंसस एक्ट या सेंसस अधिनियम जो है उसके हिसाब से किसी को दी नहीं जाती, आरटीए में भी दी नहीं जाती, कोर्ट में भी दी नहीं जाती और इंडिविजुअल भी को भी दी नहीं जाती। एक बार फिल होने के बाद वो कॉन्फिडेंशियल रह जाती है और हम सिर्फ एग्रीगेट लेवल पे डेटा रिलीज करते हैं।
0: और अब एक और लिस्नर हमारे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से, महेंद्र जी। जी महेंद्र जी।
4: जी नमस्कार।
0: नमस्कार
4: मैम, मेरा सवाल ये है कि अगर पुत्र या पुत्र वधू अगर माता पिता के साथ जीवन यापन करते और उनका भोजन एक ही रसोई में तैयार होता है तो वो अलग परिवार माना जाएगा या उसी में जॉइंटर किया जाएगा?
1: जी देखिए, जनगणना के लिए एक ही कंसेप्ट है, अगर एक परिवार मानने के लिए कि वो एक ही चूल्हे पे खाना पकाते हैं या नहीं, या एक ही किचन में खाना पकाते हैं या नहीं, तो इसमें कोई भी हो अगर वो एक ही किचन से खाना खा रहे हो, खाना पका रहे हो, तो उसको एक ही परिवार माना जाएगा, चाहे वो अनरिलेटेड हो, उनका कोई आपस में रिलेशन भी ना हो। जैसे आजकल हम देखते हैं 3-4 दोस्त मिलके एक छोटा सा फ्लैट लेके रहते हैं और अपना अपना खाना बनाते हैं या मेड को रख के खाना बनाते हैं, तो ऐसे में भी उनको हम एक ही परिवार मानते हैं।
0: अच्छा, इसी से जुड़ा एक और प्रश्न मेरे पास आया था कि अगर मेरी बेटी की शादी हो गई और वो किराए पर रहती है तो क्या वो अपने घर में उसको सदस्य के रूप में शामिल कर सकते हैं?
1: नहीं बिल्कुल नहीं, वो जहाँ पे रहती है वहाँ पे उसका उसको गिना जाएगा।
0: अच्छा, और अब गुरुग्राम से सुभाष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सुभाष जी।
5: नमस्ते मैम।
0: जी नमस्कार।
5: आमंत्रित विशेषज्ञ महोदय आपको नमस्कार।
1: जी नमस्ते।
5: मेरा सवाल ये है मैम कि जो स्वगणना का जो भूमिका है, जैसे व्यक्ति अगर स्वगणना आपने जिक्र किया था अभी, तो उस स्वगणना में उसकी कैसी भूमिका को सत्यापन के रूप में जाना जाएगा, उसको मतलब कौन सा ऐसा प्रमुख बिंदु रहेगा जो उसके व्यक्ति के प्रमुख कार्यों को बताकर वह स्वीकृत स्वीकारा जाए, उसका सत्यापन करने के क्या तरीके हैं, यही मैं पूछना चाहता था। धन्यवाद जी।
1: जी तो जैसे मैंने कहा, स्वगणना इस बार पहली बार हम लोग ये फैसिलिटी दे रहे हैं, 2011 तक ये फैसिलिटी नहीं थी। ये इस बार इसलिए इंट्रोड्यूस की कि काफी लिटरेसी भी बढ़ी है, प्लस आजकल बड़े बड़े शहरों में ये देखा जाता है कि घर के सारे सदस्य कहीं ना कहीं काम पे जाते हैं, सुबह से लेकर रात तक वो बाहर आते हैं रहते हैं, तो प्रगणक को देने के लिए उतना टाइम उनके पास नहीं होता। लेकिन उसकी वो जो इन्फॉर्मेशन भरेगा वो सत्यापित करने भी बहुत

0: जरूरी है, क्योंकि कुछ हमारे कॉन्सेप्ट्स है जैसे पानी कहाँ से मिलता है या घर में टॉयलेट की फैसिलिटी क्या है, इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है कभी कभी रिस्पोंडेंट को खुद पता ना चले, क्योंकि प्रगनक को काफी अच्छे से हम ट्रेन करते हैं, 3-4 दिन का उसका ट्रेनिंग होता है, उसको वीडियोस दिए जाते हैं, ट्रेनिंग मटेरियल दिया जाता है, तो इस तरह के इंफॉर्मेशन अगर कभी रिस्पोंडेंट या जो खुद भर रहा है स्वगणना की इंफॉर्मेशन कुछ गलत अगर करे तो वो प्रगणक एक बार देख के उसको बता के उसको सही करके सत्यापित कर सकता है।
1: अच्छा, एक और प्रश्न हमारे पास आया है रुशाली जी की, स्लम और जे जे कलस्टर बेघर आबादी की गिनती मकान जनगणना में कैसे सुनिश्चित की जाती है?
0: जी, स्लम के एरिया के लिए तो हम जैसे मैंने कहा एक प्रगणक के लिए छोटा सा एक एरिया होता है, तो स्लम के हम अलग से एरिया बनाते हैं, उसको अलग से कोडिंग करते हैं ताकि हमारे पास स्लम का डेटा भी आ जाए, क्योंकि उनके घर होते हैं कच्चे हो चाहे पक्के हो, घर होते हैं उसकी गणना की जाती है, घर नंबर भी दिया जाता है
1: जी।
0: जो बेघर होते हैं बेघरों की गणना पहले फेज में नहीं होती, उनको सेकंड फेज में गिना जाता है, जो कि सेकंड फेज हमारा कंप्लीट होने के बाद लास्ट डेट में जो 28 फरवरी का दिन होता है उसको रात को हम उनकी गणना करते हैं, क्योंकि जनरली ये लोग रात को ही मिलते हैं अपने किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पे या किसी ब्रिज के नीचे या इस तरह के जगह पे, तो बेघरों को सिर्फ सेकंड फेज में गिना जाता है।
1: जी, तो श्रोताओं अब आपके सवाल जो है वो कुछ कम हो रहे हैं, तो हम आपका इंतजार कर रहे हैं कॉल का। आप परिचर्चा सुन रहे हैं और मकान सूचीकरण आवास गणना पर विषय आज हमने रखा है, क्योंकि जनगणना 2027 जारी है और बहुत तेजी से ये काम चल रहा है। जनगणना कर्मी जो है दिन भर लगे हुए हैं आपके सवाल का जवाब जो है आप दे रहे हैं, और इसी पर आप कॉल कर सकते हैं 0112331 0481 और प्रश्न पूछ सकते हैं हमारे विशेषज्ञ से। किसी भी तरह का डाउट अगर आपके मन में है और आप इससे रिलेटेड कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 0112371717 पर। हम कर रहे हैं आपके कॉल का इंतजार। त्रिशाली जी, एक और प्रश्न मेरे पास है कि भाषाई और क्षेत्रीय विविधता वाले राज्यों में प्रश्नावली को समझाने की सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है?
0: सबसे बड़ी चुनौती तो है उनको अपनी भाषा में समझाना, उनको अपनी भाषा में सारा मटेरियल उपलब्ध कराना और प्रश्न भी उनके भाषा में होने चाहिए। तो ये बहुत अच्छा एक ट्रेडिशन है जनगणना का कि जनगणना के सारे मटेरियल 16 भाषाओं में उपलब्ध है, जो सारे हमारे मोबाइल ऐप है या पोर्टल है या स्वगणना का वेब पोर्टल है ये भी 16 भाषा में उपलब्ध है, जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स है ये तो 19 भाषा में उपलब्ध है, क्योंकि हर एक स्टेट की या हर एक रीजन की अपनी अपनी एक लैंग्वेज होती है, तो उन सारे लैंग्वेज में ये सारा अवेलेबल है।
1: जी, अच्छा, 2011 में जो है अगर बात की जाए तो डेटा की एंट्रिंग, स्कैनिंग और वेरिफिकेशन में लगभग बताया जा रहा है कि 2 साल लग गए थे, लेकिन 2026 में रियल टाइम डेटा अपलोड से रिजल्ट कितनी जल्दी आने की उम्मीद है?
0: बहुत अच्छा सवाल है। जैसे 2011 में पहला हमारा पब्लिकेशन आने में 2 साल लगे
1: जी।
0: लेकिन आप देख सकते बहुत सारे क्वेश्चन पे हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं जो सेकंड फेज में आती है, तो एक एक सीरीज या एक एक पैरामीटर पे डेटा रिलीज करने में 6 से 8 साल लगे थे। जो हमारा लास्ट टेबल रिलीज हुआ था माइग्रेशन पे वो हमारा 2019 में रिलीज हुआ था, क्योंकि हमारे जो पेपर पे होता था तो देश के हर कोने से पेपर कलेक्ट करना, मतलब इन्फॉर्मेशन भरने के बाद वो कलेक्ट करना, वो स्कैन करना, इसी में हमारे पूरे 2 साल निकल जाते थे। अब हालांकि हमारा डिजिटल हो रहा है, रियल टाइम डेटा आ रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट पहला जो हमारा पब्लिकेशन है वो 8 से 9 महीने में रिलीज हो जाए और बाकी सारी डेटा 2 से 3 साल के अंदर अंदर डेटा पब्लिश हो जाए।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि जनगणना केवल जनसंख्या की गिनती नहीं है बल्कि राष्ट्र निर्माण की आधारशिला भी है, तो मुझे लगता है कि इसमें अगर सब लोग मिलकर भागीदार बनेंगे तो देश प्रगति की राह पर बढ़ेगा। और अब दिल्ली से विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विकास जी।
2: हाँ जी, हमारे 2 मकान है, एक तो गाँव में है राजस्थान में और एक दिल्ली में है, तो हमारी जनगणना कहाँ होगी?
0: जहाँ पे आप रहते हैं हमेशा के लिए या ज्यादा वक्त जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आपकी जनगणना होगी, और यहाँ पे बिल्कुल डरने की बात नहीं है कि अगर आपकी जनगणना यहाँ पे होगी तो गांव के मकान का क्या होगा, जनगणना का उससे कोई भी संबंध नहीं है, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे आपकी गणना होगी।
1: अनुशा, ये प्रश्न वैसे देखा जाए तो बहुत लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो है रोजगार के लिए बाहर आते हैं और गांव का जो घर है उनका या तो

0: इन्फॉर्मेशन से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आपका गांव में भी घर है, गांव में दो घर है, यहाँ पे एक घर है, तो इससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप जहाँ पे रहते वहां पे आपकी गिनती होगी
1: जी। और अब एक और प्रश्न हमारे साथ जुड़ गए हैं, एमपी से राजेश नीमा जी ने प्रश्न ले रहे हैं उनका। जी राजेश जी।
2: जी मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नीमा बोल रहा हूँ, और मेरा सवाल ये है कि यदि एक घर में एक मकान, आधा मकान कच्चा है और एक कमरा पक्का है, तो वो जनगणना की कौन सी श्रेणी में आएगा?
0: जी, तो जनगणना में अगर सारे सवालों के बारे में एक जिस्ट में बताऊं तो प्रीडोमिनेंटली यानी मुख्यतः जो यूज होता है उसका इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं। जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर सोर्स की अगर मैं बात करूं कि आपके पास कुआं भी है और नल से भी पानी आ रहा है, लेकिन आप नल का पानी ज़्यादा यूज करते हैं तो नल आपको लिखना है। उसी तरह आपका अगर आधा मकान कच्चा है आधा पक्का है, या ज्यादा मकान पक्का है और थोड़ा सा मकान कच्चा है तो पक्का लिखना है। तो ये डिपेंड है आपका कितना पोर्शन पक्का है कितना पोर्शन कच्चा है।
1: और अभी कॉल इसमें हमारे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से पप्पू सिंह जी। जी पप्पू जी
3: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार
3: सर। जैसे मकान के अलावा जैसे हमारा प्लॉट है और उसमें हमारे पशु बनते हैं और ईंधन खंडा रखे रहता है और वहाँ पे कुछ भी बना नहीं है, वैसे ही है, उसमें पेड़ वगैरह खड़े हैं, तो उसकी गणना भी होगी क्या?
0: जी नहीं, जैसे हमारे इस फेज का नाम है मकान सूचीकरण, तो वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए, खाली प्लॉट को गिनते नहीं है। लेकिन वहाँ पे अगर कोई कच्चा सा शेड भी है जिसमें पशु रखे हुए है, तो उसको एक नंबर दिया जाएगा और उसको नॉन रेसिडेंशियल करके उसको गिना जाएगा।
1: तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न था इस तरीके से, क्योंकि अक्सर लोग गांव में जो होता है पशु वगैरह बांध देते हैं और पूरा एक शेड प्रॉपर ताकि बारिश से उनको बचाया जा सके वो रखते हैं। अच्छा रुशाली जी, एक और ये सवाल है कि 2011 में बैंकिंग सेवा का उपयोग नहीं पूछा गया था, लेकिन इस बार जो है जनधन डीबीटी के बाद इसे जोड़ने का क्या मकसद है?
0: मकसद यही है क्योंकि एक स्कीम शुरू की गवर्नमेंट ने जनधन योजना, तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, कितने लोगों के पास या कितने परिवारों के पास बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध है, ये देखने के लिए ये प्रश्न नए से जोड़ा गया है।
1: जी, और अंत में चलते चलते हम रुशाली जी आपसे चाहेंगे कि जनता से क्या अपील हम करना चाहेंगे ताकि वो इसमें सहयोग दे सकें पूरी तरीके से।
0: जी, जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि पूरा कोऑपरेट करें इस जनगणना के लिए, क्योंकि जनगणना से जो भी आंकड़े आते हैं, फिर से एक बार दोहराती हूँ मैं, पूरी तरह से गोपनीय रखे जाते हैं। इससे कोई भी आपके ऊपर ना कोई टैक्स लगेगा, लेकिन जो भी आंकड़े आप सही आंकड़े देंगे उससे सरकार की नीतियाँ बनेगी, पॉलिसीज बनेगी, जैसे किस गांव में स्कूल बनाने हैं या किस गांव में पानी की सुविधा देनी है, अच्छे पानी देनी है या टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो इस तरह की जो भी वेलफेयर स्कीम्स सरकार बनाती है उसके लिए सही सही जानकारी देना बिल्कुल जरूरी है। तो यही एक अपील है कि सही जानकारी दे और कोऑपरेट करे, और जो प्रगणक है हमारे वो अपना काम संभाल के पूरा एक्स्ट्रा काम ये कर रहे हैं, तो उनको अच्छे से कोऑपरेट तो करे ही, प्लस अच्छे से उनसे उनके साथ बिहेव करे, अच्छे से बात करे।
1: जी बिल्कुल रुशाली जी, क्योंकि 10 साल में एक बार ये मौका आता है कि जब आपके घर की गिनती, आपके सपनों की गिनती जो है वो की जाती है। जनगणना कोई डर की बात नहीं है, ये आपके हक की बात है, और आपका मकान न गिना जाएगा तभी मकान तक सुविधा पहुंचेगी। भारत की पहली डिजिटल जनगणना में भागीदार बनिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद रुशाली जी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आज आप हमारे समक्ष मौजूद रही और हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का आपने जवाब दिया।
0: धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं मुझे दीजिए इजाजत कार्यक्रम यही समाप्त करने की। नमस्कार।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात के 10 बज रहे हैं और श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में। और ये कार्यक्रम लेकर आज आपके बीच उपस्थित हूँ मैं, राजवीर सिंह। श्रोताओं

किस खामोशी में जब दुनिया सो रही होती है, तब यादों का एक कारवां चुपके से हमारे दिल के दरवाजे पर दस्तक देता है। कुछ पुराने चेहरे, कुछ गुजरे हुए लम्हे और वो नगमे जो वक्त की धूल के पीछे कहीं छिप गए थे। आज की इस खास महफिल में हम उन्हीं भूली बिसरी यादों को सुरों से सजाने आए हैं। श्रोतों, वैसे तो गुजरा हुआ जमाना कभी लौट कर नहीं आता, लेकिन उस दौर की सुरीली यादें जब गीतों के रूप में हमारे कानों में गूंजती हैं तो वक्त जैसे ठहर सा जाता है। नासिर हुसैन साहब के निर्देशन में फिल्म बनी थी 1963 में, फिर वही दिल लाया हूँ। इस फिल्म का संगीत तैयार किया था धुनों के सौदागर ओपी नैयर साहब ने। उसी का गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की। मजरूह सुल्तानपुरी का ये गीत है और संगीत है ओपी नैयर का। नजरें चुरा कर हमसे वो शर्माना आपका, और इस बिखरी हुई जुल्फों को संवारना आपका। जी चाहता है डूब जाएं इन्हीं घने सायों में, बस यही तो है इस दिल का आशियाना आपका।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा भोसले जी की आवाज़ में सजाए बेहद खूबसूरत सा नगमा। चलिए अब यादों के इस कारवां को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं साल 1985 यानी 1985 के उस दौर में, जहां संगीत में मस्ती भी थी और एक अलग ही खनक भी थी। अब आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और संत की आवाज़ में संतोष आनंद का लिखा ये गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में फिल्म पत्थर दिल से। उनकी एक नजर क्या पड़ी हम पर, दिल का सारा सुकून खो गया। वो मुस्कुराकर सामने से क्या गुजरे, कम वक्त दिल कहता है कि जुल्म हो गया।

अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में फिल्म पत्थर दिल का ये शरारत भरा नगमा। और फिल्म संगीत का कार्यक्रम भोले बिसरे गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नजीबाबाद से। तो श्रोताओं, चलिए यादों के इस झरोके को थोड़ा और खोलते हैं और अब सीधे चलते हैं साल 1972 के उस हसीन दौर में, जहां एक गाने ने पूरे हिंदुस्तान के पैर थिरकने पर मजबूर कर दिए थे। मजरूह सुल्तानपुरी साहब के लिखे इस चुलबुले गीत में जितनी तेज धुन है उतनी ही मजेदार इसकी कहानी भी है। आवाज लता मंगेशकर की है, मजरूह सुल्तानपुरी का जो है शब्द हैं और संगीत है आर डी बर्मन साहब का। दिल तो आ ही जाता है किसी ना किसी बहाने से, पर डर लगता है इस कमबख्त जमाने से। जब छुप छुप कर मिलने की जिद हो दिल की, तो राहें गुजरती हैं पिया के आशियाने से।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म समाधि का ये गीत। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। चलिए यादों के पन्नों को थोड़ा और पीछे पलटते हैं और चलते हैं साल 1976 के उस दौर में, जहां सादगी और मीठी शरारतों से सजे गीतों का राज हुआ करता था। आर डी बर्मन साहब का वो ठेठ देसी अंदाज और आनंद बख्शी साहब के लिखे चुलबुले बोल जब रेडियो पर गूंजते तो पुरानी यादें ताज़ा हो ही जाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म बालिका वधू की, जिसमें सचिन पिलगांवकर और रजनी शर्मा की उस प्यारी सी जोड़ी ने सबका मन मोह लिया था। और जो गीत हम आपको सुनाने वाले हैं वो है किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में। आनंद बख्शी का ये गीत है और संगीत है आर डी बर्मन साहब का।

0: वो झुमके वाली। ओ झुमके वाली, ओ ठुमके वाली,
1: बोलो

अभी आपने सुना बालिका वधू का ये चुलबुला सा गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में। चलिए अब यादों के इस कारवां को अब एक ऐसे मोड़ पर ले चलते हैं जहां संगीत प्रेमियों के लिए एक बेहद अनमोल और नायाब तोहफा छुपा हुआ है। आपको सुनवाते हैं फिल्म अधूरा आदमी का ये गीत जो लिखा योगेश ने और आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में अपनी मधुर आवाज दी आशा भोसले ने। हुस्न का नूर जब सादगी में ढल जाता है, उसे देखकर तो कमबख्त आईना भी पिघल जाता है। इस कातिल नथनी के पहरे को जरा गौर से देखो, इसकी एक चमक से पूरा जमाना बहल जाता है।

अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज़ में वो बेहद दुर्लभ नगमा। चलिए यादों के इस सुरीले गुलदस्ते में अब एक ऐसा फूल सजाते हैं जिसकी खुशबू से आज भी हमारा दिल महक उठता है, और यह है कार्यक्रम का अंतिम नगमा जिसको हमने लिया है फिल्म सावन को आने दो। यशोदास की आवाज़ है, पी पंकज का जो है ये गीत है, और संगीत है राजकमल का।

सावन को आने दो। इस फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का यह कार्यक्रम भोले बिसरे गीत अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। इस समय रात के 10:30 हो रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है आपके द्वारा भेजे गए फरमाइशी पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। और आज इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूं मैं, राजवीर सिंह। तो श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का फरमाइशी गीतों के इस कार्यक्रम में। हमारे जो भी श्रोता साथी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपनी पसंद के गीत सुनना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से,

तो वो हमें व्हाट्सएप पर अपना अपनी फरमाइश लिख करके भेज सकते हैं अपने नाम और पते के साथ में, और सुन सकते हैं अपनी पसंद का गीत। व्हाट्सएप मैसेज के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। तो अब कार्यक्रम का जो पहला गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं वो गीत हमने लिया है फिल्म अमीर गरीब से। किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत है, शब्द रचना है आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता है गांव और डाकघर निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से, जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। ये फरमाइश हमें मिली है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय की ओर से, दुबीहा नेवादा जिला गाजीपुर से हैं प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय, गांव और पोस्ट राहु नंगली जनपद बिजनौर से आचार्य सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, भूमिका चौहान, कशिश चौहान, प्रिंस राजपूत और कनिष्का चौहान। फरमाइश कर रहे हैं सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा। ये फरमाइश हमें मिली है वर्ली मुंबई से। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं नवाब खान, इशरत जहां, मास्टर अजहर खान और अजीम खान। इसी गीत को सुनना चाहा है गांव नजीमपुर, पोस्ट जलालाबाद, तहसील नजीबाबाद, जनपद बिजनौर से योगेश कुमार और उमेश कुमारी ने। फरमाइश की है गंज डुंडवारा से शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अन्नू खान, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी ने। ये मैसेज हमें मिला है बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूनुस खान और सोफिया खान की ओर से। दौलतबाग मुरादाबाद से फरमाइश की है अंसार हुसैन और समीर मलिक ने। इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। और ये मैसेज हमें मिला है चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा की ओर से। तो लीजिए पेश है आप सभी श्रोताओं की पसंद पर फिल्म अमीर गरीब का ये गीत।

अमीर गरीब, इस फिल्म में भी आप सुन रहे थे किशोर कुमार को। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं, वो गीत हमने लिया है फिल्म सरस्वती चंद से। आवाज़ लता मंगेशकर की है, इंदिवर का ये गीत है और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। और इस गीत को सुनने वाले हमारे श्रोता हैं, फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं ग्राम नंगला उबन नजीबाबाद जनपद बिजनौर से, ठाकुर जयपाल सिंह, जबर सिंह, जयपाल सिंह, राहुल, सचिन, सविता, नोनी, लालू, नमन, केजल, अजीत, रघुवीर और परिवार के सदस्य। ये फरमाइश हमारे पास आई है मोहल्ला नादे हिंद नजीबाबाद जनपद बिजनौर से गीता रानी वर्मा, अनीता वर्मा, मेघा वर्मा, नैना वर्मा, सुरेंद्र वर्मा, वीरेंद्र वर्मा और अमित वर्मा की ओर से। नई बस्ती गंज डुंडवारा से फरमाइश की है मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी ने। कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से हैं रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशबद। फरमाइश कर रहे हैं अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी और जयपाल यादव। फरमाइश कर रहे हैं फौजी अंसारी जिला मुजफ्फरनगर से। ये मैसेज हमें मिला है नाज पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज, सलमा, असद, अरहाम और मोहम्मद आलम हाशमी की ओर से। गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से हैं सुभाष गोदरा, बिमला गोदरा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदरा। इसी गीत को सुनना चाहा है शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी ने। जसपुर उत्तराखंड से फरमाइश की है रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर ने। और ये अगला मैसेज हमारे पास आया है परीमहल कासगंज से आबाद खान, नवील खान, आरफा खान, एम असलम सैफी, इल्मा खान और मास्टर जाहिद अली की ओर से। कृष्ण की नगरी मथुरा से हैं सबा अंसारी, शकील अंसारी, बुशरा अंसारी, हिना अंसारी, गुलिश्ता रानी, नंदिनी और अंजलि। यह फरमाइश हमें मिली है बटिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लक्की नारंग, तानिया नारंग की ओर से। और फरमाइश कर रहे हैं कोटली कला से युद्धविंदर सिंह, सुखविंदर सिंह, रविंदर सिंह, मंजीत सिंह और गुरजोत सिंह। तो लीजिए पेश है आप सभी श्रोताओं की पसंद पर लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म सरस्वती चंद्र का ये गीत।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म सरस्वती चंद्र का यह खूबसूरत सा नगमा। शब्द रचना इंदिवर की थी और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। और अब जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं वो गीत हमने लिया है फिल्म दिल से। आवाज़ अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की है, समीर का गीत है और संगीत आनंद मिलंद का है। इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता है मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, रसीद वारसी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम अब्बासी और यशफ अब्बासी। सिकंदरा राव से हैं मुबीन अब्बासी और इशरत परवीन। ये मैसेज हमें मिला है नौहर ज़िला हनुमानगढ़ राजस्थान से नरेंद्र सुथार और मनोज सुथार की ओर से। ये फरमाइश आई है गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाज शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी और राधा नामदेव की ओर से। इस गीत को सुनने वाले हमारे श्रोता है नांगल सोती ज़िला बिजनौर से मोहम्मद असलम पेंटर और मोहम्मद उजैफ खान। फरमाइश कर रहे हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, सायना शर्मा और निवान शर्मा आदर्श नगर मलोट पंजाब से। इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं बागपत उत्तर प्रदेश से ममता ढींगिया और कुणाल ढींगिया। ये फरमाइश हमारे पास आई है ये फरमाइश हमें मिली है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडा ने, अर्चनाताई गोंडा ने, हीरामन शेंडे जी, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने की ओर से।

गांव उगाला, जिला अंबाला, हरियाणा से हमारे श्रोता हैं राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के अन्य सभी सदस्य। ये मैसेज हमें मिला है पोस्ट राजा का ताजपुर ग्राम पंडिया से रामदयाल सिंह, शशिबाला, खुशबू, प्रभा, कार्तिक और सत्यम की ओर से। इसी गीत की फरमाइश हमें कर भेजी है फौजी अंसारी ने जिला मुजफ्फरनगर से। जसपुर रोड दुल्हापुर जिला मुरादाबाद से हैं महबूब दुकानदार, बेगम साहिबा महबूब, मोहम्मद समीर अंसारी, मोहम्मद वारिस अंसारी और अलशिफा परवीन। ये फरमाइश हमारे पास आई है गांव गोविंदगढ़ माझीवाला, श्री करणपुर, राजस्थान से। श्रोता हैं राजू टूटेजा, खुशदिल उर्मिला टूटेजा, गुड्डू, जीनू, मनु, शिव, सेठी, करणपुरी, इस्माइल टूटेजा और पाल मिस्त्री करणपुरी। तो लीजिए पेश है आप सभी श्रोताओं की पसंद पर अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ों में फिल्म दिल का ये गीत।

अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ों में फिल्म दिल का ये गीत। समीर की शब्द रचना थी और संगीत आनंद मिलंद का। फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और अब कार्यक्रम की अंतिम पेशकश फिल्म प्रेम रोग से। फरमाइश करता है ज़िला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हमज़ा सकलैनी और गुलशन साहिबा। शाही मार्केट स्योहारा जनपद बिजनौर से आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अराफात अदीब और कादिर चौधरी। ये मैसेज हमारे पास आया है एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोथ, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोथ और अंकित कांगड़ा की ओर से। माल्यान सरधना से फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन और मास्टर जीवीएम जैन। मोहल्ला बारादरी महमूद खां रामपुर से हैं भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई बहन, फिरोज़ा मुस्कान और अफसर अली। साथ में हैं नगमा नाज मंसूरी। ये मैसेज हमें मिला है लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा की ओर से। मुजफ्फरपुर बिहार से फरमाइश की है आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार ने। करूला मुरादाबाद से हैं अयूब खान, इरम गुड़िया और शोएब खान। सिंधौली बरेली से फरमाइश की है जिशान वारसी ने। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। ये मैसेज आया है झारखंड सुपाही शाही गांव से देवेंद्र, राकेश तांती, प्रकाश, निशा, प्रकाश, निशा कुमारी, रेशमा कुमारी, दीपाली कुमारी और देवेंद की ओर से। ग्राम जुझेला थाना शिवाला कला जनपद बिजनौर से हैं राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात आयसा, सायना महविश, मोहम्मद अफ़ान और अदीना नूर। इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश की है गांव फरासी ज़िला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी ने। यह फरमाइश हमें मिली है धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आन बाबू की ओर से। अगला मैसेज आया है गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी और मोहम्मद उस्मान अंसारी की ओर से। MLB रोड ग्वालियर से हैं सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव, मेघा, साक्षी, आशीष, अनुज, विशु, छोटू, SK, पप्पी। और ये मैसेज है कस्बा उगहती बदायूं से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज गुप्ता, पंकज बजाज, प्रिंस कुमार, प्रशांत गुप्ता और कार्तिक गुप्ता की ओर से। आदर्श नगर मलोट पंजाब से फरमाइश की है राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, सायना शर्मा और निवान शर्मा ने। और इसी गीत को सुनना चाहा है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। गांव नथाना पंजाब से हैं हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। ये मैसेज हमें मिला है मंडी गोविंदगढ़ पंजाब से भूपेंद्र सिंह हंस, अमरजीत कौर हंस और अगमवीर सिंह हंस की ओर से। एकता कॉलोनी रोहतक से हैं सीताराम कांगड़ा और बबीता बोध।

0: अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। रात के 11 बजने को हैं, कुछ ही क्षणों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था से लेकर शिपिंग तक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
2: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज

0: जब मैं नॉर्वे आया हूं तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
1: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए, विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। द्विपक्षीय बैठक में एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते सहित कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेले से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया। ये पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% अधिक है। उन्होंने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात में वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जज जांच समिति ने आज अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 181 रनों का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 15वें ओवर में 2 विकेट पर 131 रन बना लिए थे। चेन्नई की ओर से कार्तिक शर्मा ने 44 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।